एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई सन 2026। सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी खंडवा से लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

ये दुआ अभी आपने सुनी आकिब फरीद की आवाज में। लीजिए अब सुनिए यशवीन अजमल शेख की आवाज में अगला कलाम।

0: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब प्रस्तुत है चिंतन, आलेख एवं स्वर रमाकांत पांडे का।
1: प्रेम, प्रेम अपने आप में बहुत बड़ी अद्भुत शक्ति है जो ईश्वर को भी अपने वश में कर लेता है। प्रेम समर्पण का जो भाव से परिपूर्ण है। प्रेम जाति, बड़ा छोटा, अपना पराया, रिश्ते नाते सबसे ऊपर है। मित्रता भी एक प्रेम है जिसमें सारे बंधन बिना रिश्तों के बंधे होते हैं। भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, ये सब रिश्तों को प्रेम की भावनात्मक अदृश्य डोर बांध कर रखती है। प्रत्येक मनुष्य के मन, बुद्धि, चित, अहंकार भिन्न होते हैं, परंतु प्रेम रूपी अदृश्य डोर हमें रिश्तों व बंधनों में बांधे रखती है। राधा कृष्ण का प्रेम जग जाहिर है। कृष्ण द्वारकाधीश हुए और उन्होंने धर्म युद्ध का सहयोग करते हुए बड़े बड़े दुराचारियों को मारा, परंतु गीता, भागवत आदि कथा के साथ ज्यादा प्रचलित व आज भी नवीन है तो राधा कृष्ण का प्रेम, जो प्रत्येक मानव समाज में विश्वास व प्रेम का प्रतीक कथा सर्वव्यापी है। प्रेम में दोस्त, प्रेमिका, पति, पत्नी, संसार के सभी बंधन होते हैं। उनका मूल स्वरूप केवल बिंदु प्रेम होता है। प्रेम की कोई पाठशाला नहीं होती, वह कुदरती है, ईश्वर प्रदत्त है। जाने कब कहां किससे निश्चल प्रेम हो जाए। प्रेम अदृश्य शक्ति है जो अनेक कार्य इस प्रकार करती है कि धन देकर भी जो कार्य नहीं होता वह प्रेम तुरंत कर देता है। प्रभु को भी प्रेम ही पसंद है। ईश्वर की आराधना सच्चे प्रेम अनुराग से की जाए तो वह तुरंत प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देता है, परंतु अनुपम कृपा बनाए रखता है। अर्थात प्रेम बहुत बड़ा पावर है, प्रत्येक प्राणी में विद्यमान, निश्चल भाव से प्रकट हो रहा है। प्रेम ही जीवन की आधारशिला है। प्रेम बिना जीवन अधूरा है एवं सूना है। तभी तो तुलसी बाबा ने रामायण में चौपाई में कहा है, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना है, वहीं भगवान का वास है। प्रेम से ही भगवान कृष्ण गोपियां छाछ और दही खिलाकर अपने वश में उनसे बांसुरी धुन सुनती थी। प्रेम के कारण ही वह उनकी कृपा की पात्र थी। गोपियां उन्हें जब भी प्रेम से याद करती थी भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते थे। रामायण में भी इसका उदाहरण देखने को मिलता है। भगवान राम की प्रतीक्षा में शबरी भी प्रतिदिन द्वार पर फूल बिछाकर उनका इंतजार करती थी और इसी भाव से भजन किया करती थी कि एक दिन मेरे राम जरूर आएंगे। एक दिन शबरी का इंतजार खत्म हुआ और भगवान राम उनकी कुटिया में आए और प्रेम के वशीभूत होकर उनके झूठे बैर खाए। यही प्रेम का उदाहरण है कि स्वयं परमात्मा भी उस सबरी भक्त के अधीन होकर उनके द्वारा

0: चखे गए फल का भोग लगाया। फल को चखना अर्थात झूठा होना, अपवित्र होना, परंतु सबरी के प्रेम की गहराई ने उसे पवित्र कर दिया और भगवान राम भाव विहोर होकर उसे ग्रहण कर रहे हैं। यह है प्रेम का प्रभाव। प्रेम निर्मल है और मानव समाज की आधारशिला है, अतः सभी से प्रेम करें।
1: प्रेम, आलेख एवं स्वर रमाकांत पांडे का। ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

सीता स्वयंवर वाले दिवस की प्रातवेला में राजा जनक ने राजपुरोहित शतानंद को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को राजा जनक की विनती कह सुनाई। बोले, यज्ञशाला चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए कि ईश्वर किसे ये गौरव प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य का उदय होते ही कुमुदिनी सकुचा जाती है और तारागण का प्रकाश फीका होकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्री राम तथा लक्ष्मण के धनुष यज्ञ स्थल पर आते ही जानकी के स्वयंवर में आए राजाओं के मुखमंडल श्रीहीन हो गए। राजाओं के समूह में श्री राम और लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे आकाश पर तारामंडल के बीच दो पूर्ण चंद्र निकल आए हों।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, गायक स्वर ए हरिहरन का। हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। सुबह के 6:46 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा, वाचक स्वर जगदीप सिंह फरेगा।
1: सब किसान भाई बहनों का राम राम। किसान भाई बहनों, कृषि चर्चा में आज हम बात करेंगे समग्र खेती अंतर्गत मछली पालन आज की आवश्यकता विषय पर। जानकारी दे रहा है आज ग्राम दीपला का जैविक प्रगतिशील कृषक भाई अश्विनी कुमार बख्शी, नवाचक स्वर छे जगदीप सिंह फरे को। किसान भाई बहनों, मछली पालन कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक प्रमुख अंग छे। यो कम लागत न और छोटा स्थान में भारी मुनाफो कमाने वालों एक आदर्श व्यवसाय बनी गयो छे, जी की खाद्य सुरक्षा और संतुलित पोषण प्रदान करने का साथ साथ किसान न की आयु बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभावे। किसान भाई बहनों, पिछला 2-3 से मौसम अनुकूल नहीं होने का कारण हमका हमारी मेहनत का अनुरूप फसल न को उत्पादन नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति का देखता हुआ हमका समग्र खेती का अंतर्गत कृषि का साथ साथ अन्य छोटा छोटा व्यवसाय जैसा कि मछली पालन, भेड़ बकरी पालन, गाय भैंस पालन, मुर्गी पालन न मधुमक्खी पालन जैसा छोटा मोटा व्यवसाय भी करता रहना चाहिए, जेका से हमारी अन्य फसल की भरपाई भी हुई सकज न हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरी सकज न यो एक प्रकार से नगद आय को साधन भी तैयार हो जाए, जेका से काफी हद तक हमको राहत मिली सकज। किसान भाई, मछली पालन की व्यवस्था की बात करा तो सबसे पहले हमको पानी की पर्याप्त व्यवस्था देखना पड़ेगा। मतलब मछली पालन का लेना सबसे पहले हमारा पास पानी की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि 12 पानी मिलतो रहे। एका साथ एकासी एक लाभ यो भी छे कि जब हमारा तालाब को पानी बदलनो आवे तो उज पानी का हमारा खेत नम सिंचाई का रूप में हम काम में ली सकान, जेका से सिंचाई का साथ साथ वो पानी खाद को भी काम करी दे। न एका साथ अगर किसी कारणवश आखिरी में हमारा बोर बटी जाए तो उना तालाब का पानी से भी सिंचाई हुई सकज, न आखिरी सिंचाई करी न हम हमारी फसल का भी संभाली सकाज, न फसल उत्पादन भरपूर ले सकाज। किसान भाई बहनों, मछली पालन हम 2-3 प्रकार से करी सकाज। एक तो तालाब खुदाड़ी न ओमा पोंड लाइनर डाली न हम मछली पालन करी सकाज। पोंड लाइनर एक 500 GSM को प्लास्टिक अवज जेखा तालाब का पेंदा में बिछायो जाए, जेखा से पानी जमीन में जिरातो नहीं वो जरूरी भी छे। न दूसरो प्रकार छे बरसात को पानी जिधर से आपका खेत में अवज उधर का क्षेत्र का खोदी न गहरो करी लेओ, न ओका पेंदा में काली मिट्टी बिछे देओ, न एमा पोंड लाइनर नी डलतो है एमा भी हम मछली न पाली सकाए। न तीसरो प्रकार होज आजकल एक बायोफ्लाक्स चली रहे, एमा एक टैंक रह जेमा पानी भरी न मछली पाली जाए, एमा मछली न का लेना ऑक्सीजन की व्यवस्था करनु पड़े। एका रखरखाव की सारी जानकारी उच कंपनी बते दे कि हमका एमा मछली न का लेना कसी कसी न काई काई व्यवस्था न करनु पड़ेगा। तो इना प्रकार से हम मछली पालन 2-3 प्रकार से करी सका। किसान भाई बहनों, मछली पालन में सावधानी न की बात करा तो हम जब भी मछली पालन करा किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना करा। मछली पालन विभाग में बहुत विशेषज्ञ छे जो आपका समय समय से अच्छी जानकारी न देता रहे। न अब तो खुला बाजार में भी बहुत सा लोग मछली पालन का व्यवसाय से जुड़ी गया, आप उनका से भी सलाह ले सको। किसान भाई बहनों, अगर आप मछली पालन का बारे में सोची रहा हो ना, अगर आपने उसकी पूंजी की व्यवस्था भी करी ली तो जितनी पूंजी आपने एका लेना रखी सबसे पहला आपने एका लेना आधी खर्च करना चाहिए, ताकि बाद में अन्य जरूरी व्यवस्था ना जैसे कि उनका भोजन पानी आदि पर खर्च करने का लेना आपका पास वो बचत राशि होनी चाहिए। क्योंकि भोजन न पानी ये दुई मछली पालन की मूलभूत आवश्यकता ना छे। न भोजन उनका आपको सुबह शाम खिलाऊनु पड़े तब जाए न वो 6 में तैयार हुई जाए बेचने लायक हुई जाए। और एका खरीदार भाई बहनों खुद घर चली ना आवाज न एमक एका बेचने के भी झंझट नहीं होती है। तो एका से आपको जरूर

0: फायदो हो। और किसान भाई बहनों, अब बात अवज मछली बीज की, न कौन सी किस्म की मछली का बीज लेनु चाहिए, तो यो सारो उचित मार्गदर्शन आपको मछली पालन विभाग द्वारा बताई दियो जाए। तो किसान भाई बहनों, एक महत्व की बात करा तो इमा प्रोटीन भरपूर मात्रा में रहे, न यो मानव दृष्टि याददाश्त दिमाग को विकास, विटामिन डी, विटामिन B12, ओमेगा 3, आयोडीन न हड्डी नख मजबूत बनावना में बहुत फायदामंद रहे। एकासे मांसाहारी लोग एक बहुत पसंद करज, न ताजी मछली देना पर ओको उचित दाम भी देज, न एको व्यवसाय बाहर 12 ही महीना चलतो रज, एकासी एका व्यवसाय में छूट घाटो आवने की संभावना नहीं रहती है, बशर्ते कि आप समय समय से मछली नका खान पान और उनका स्वास्थ्य को बराबर ध्यान रखो। तो भाई बहनों, आज की कृषि चर्चा में आपसे योज कहना छे, राम राम।
1: समग्र खेती अंतर्गत मछली पालन आज की आवश्यकता, इस विषय पर अभी आपने सुनी जगदीप सिंह फरे से कृषि चर्चा। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद विशेष कार्यक्रम में आज सुबह 7 बजे सुनिए विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस पर डॉक्टर चिरंजीव ओझा से फिरदौस की बातचीत। सुबह 7:20 पर होगा कार्यक्रम सुनहरे पल। निमाड़ी लोक संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 8:15 और शाम 5:30 पर।

आप अपने फरमाइशी फिल्मी नगमे सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर। कार्यक्रम रहेगा आपकी उम्मीद ये गीत। 9 से राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। 10 हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे जिले की चिट्ठी। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय होगा सुबह 10:05।

सुबह 10:35 पर कार्यक्रम होगा नारी जगत। इसके अंतर्गत होगी चर्चा जल की बचत पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक विश्व तंबाकू दिवस। इसी के अंतर्गत सुनिएगा भेंट वार्ता तंबाकू एवं धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभाव नशा मुक्त हो भारत। समाज सेविका नमिता काले से रंजना जोशी की बातचीत।

11 बजे से आप सुन सकेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। शाम 6 बजे युवावाणी में आज का क्रम रहेगा युगल फिल्मी गीत। फिल्म संगीत का लुत्फ लीजिएगा शाम 6:30 बजे से। 7:21 पर खेती गृहस्थी के अंतर्गत आज होगी वार्ता जल संरक्षण। वार्ताकार लव जोशी। आज की बात का विषय होगा राष्ट्रीय कृषि बाजार और इनके अलावा होगा कृषि समाचार, मौसम की जानकारी और मंडी के भाव।

रात 9:15 पर स्पॉटलाइट हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे और इसके बाद 9:30 से विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थी जानकारी आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ।

0: आज की ताजा खबर।
1: आज की ताजा खबर में लीजिए सुनिए आज प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियां।

कल देश सहित जिले में गुरुवार को ईद उल अजहा का त्यौहार उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल ने टेंडर जारी कर दिया है, जिससे बीड़ चारखेड़ा सहित जिले के चार स्टेशनों पर टिकट निजी एजेंट काटेंगे। रेलवे 3 साल के ठेके पर टिकट काउंटर देगा। खंडवा शहर संभाग के अंतर्गत 11 केवी चीरा खदान फीडर पर आज शुक्रवार को मेंटेनेंस का कार्य आवश्यक कार्य किया जाएगा। इस दौरान सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक संबंधित क्षेत्र वार्डों में बिजली बंद रहेगी। शासकीय आईटीआई नर्मदानगर में इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर एवं चौपट बांध विस्थापित परिवारों के बच्चों के लिए 1 और 2 वर्षीय ट्रेड्स के प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। पंजीयन की तिथि 26 मई से 30 जून नियत की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्रीष्मकाल के दौरान प्रदेश में बढ़े हुए तापमान और अधिक गर्मी से होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए प्रदेशवासियों से अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने और बचाव के आवश्यक उपाय अपनाने का आह्वान किया है। खबर खेल जगत से, आईपीएल 2026 के क्वालिफायर 2 का मुकाबला शुक्रवार गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। एक नजर मौसम पर, कल दिन का अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 7 बजने वाले हैं। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिए विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस पर डॉक्टर चिरंजीव ओझा से फिरदौस की बातचीत।

0: विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस को मना रहे हैं हम आज, और इसी बारे में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर चिरंजीवी ओझा। आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।
0: डॉक्टर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि स्वस्थ रहने के लिए पाचन या हाजमा कितना जरूरी होता है?
1: हाजमा और पाचन की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरी स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है इसका। इसीलिए जो वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे है वो मनाया जाता है 29 मई को, जो कि वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है WGO की, है ना। उन्होंने एक ग्लोबल इनिशिएटिव किया है इसके लिए, जो अवेयरनेस कॉज करता है, अवेयरनेस अबाउट जो आपकी जो डाइजेस्टिव डिसीजेज होती हैं, है ना। आजकल डाइजेशन के कारण बहुत सारी डिसीजेज होने लगी हैं लोगों को, क्या होता है एसिडिटी वगैरह होती है, सब होता है, तो उसके कारण से बहुत सारी डिसीजेज जो हैं अल्सर्स होने लगते हैं, ड्यूओडेनल अल्सर्स हैं, फिर जो

0: करता है अवेयरनेस अबाउट जो आपकी जो डाइजेस्टिव डिसीजेज होती हैं, है ना। आजकल डाइजेशन के कारण बहुत सारी डिसीजेज होने लग गई लोगों को, क्या होता है एसिडिटी वगैरह होती है, सब होता है, तो उसके कारण से बहुत सारी डिसीजेज जो हैं अल्सर्स होने लगते हैं, डिओडेनल अल्सर्स हैं, फिर जो आहार नली में हमारे यहाँ छाले होने लगते हैं, वो सब चीजें बहुत कॉमन हो गई, क्योंकि लोगों की जो रोजमर्रा का जीवन है, लाइफ स्टाइल है, बहुत अलग टाइप की हो गई है पुराने टाइम से। तो अभी जो है उसके कारण से अब जो इनिशिएटिव लिया गया है वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन जो WGO बोलते हैं, तो 29 मई को इसके कारण से वो मनाया जाता है वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे।
1: जी, और
0: जी
1: हाजमा ठीक रखने के लिए बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं। जिनका हाजमा अच्छा होता
0: जी
1: है उनके तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे इंसान ऐसे भी होते हैं जिनका हाजमा ठीक नहीं होता है।
0: जी
1: तो एज अ डॉक्टर, हाजमे की वजह से कौन कौन सी
0: जी
1: ऐसी सामान्य डिसीजें हैं जिनको हम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बोल सकते हैं?
0: सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हाजमा होता जो है वो जो हमारा जो हम खाना खाते हैं, बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स जो हम लेते हैं उसको छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है वो, जिसके कारण कि जब वो जो कन्वर्ट करता है उसके कारण से क्या होता है, जो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है तो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है वो, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है एक्चुअली में, वो हमारे लिए मान लीजिए कि जैसे कोई भी गाड़ी को चलाना है तो उसके लिए हमारे लिए पेट्रोल या फ्यूल कितना इंपॉर्टेंट होता है ना, वैसे वो ही फ्यूल है हमारे लिए, वो जो ग्लूकोज है वो बॉडी का फ्यूल है जो कि हमको खाने से प्राप्त हो रहा है। अब वो उसको हेल्प करता है, जो अमीनो एसिड्स रहते हैं, डाइट्री प्रोटीन्स हैं, वो सब चीजें होती हैं वो जो इसके हेल्प करती हैं डाइजेशन में, और उसके कारण से हमारी जो इम्यूनिटी है बिल्टअप, जो माइक्रोब्स होते हैं और सब इम्यूनिटी बिल्टअप करते हैं जो ये बैक्टीरियाज, और ये तो ये बहुत जरूरी होता है, इसलिए डाइजेस्टिव हेल्थ हमारे पूरे शरीर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम।
1: डाइजेस्ट सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हाजमे की वजह से जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिनको हम रोजमर्रा में देखते हैं, ये कौन कौन सी
0: जी
1: छोटी प्रॉब्लम्स हैं?
0: सबसे पहला तो हम आते हैं कि लोग आजकल क्या होता है, कई बार हमको ध्यान भी नहीं रहता, या मैं हमेशा पेशेंट्स को समझाता हूँ वाटर इंटेक, जो पानी का कम जो पीते हैं लोग, सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन, जो पाचन समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल होने लग गया है। उसका रीजन यही है कि हमको भाई गर्मी हमारे यहाँ जैसे बहुत काफी ज्यादा होती है, तो डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, जिसके कारण कि पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता, है ना, और वो कारण से जो होता है कि कॉन्स्टिपेशन कॉज करने लगता है बॉडी में, और उसका रीजन ये रहता है कि कम पानी पीते हैं तो जो हमारे आते हैं जो होती हैं उनका जो मूवमेंट होता है संकुचन वो गड़बड़ा जाता है थोड़ा सा, तो जिसके कारण कि एसिडिटी होती है, पेट फूलने की जो प्रॉब्लम होती है कई बार बहुत टाइम तक, तो वो इस कारण से होती है पाचन समस्या, जो गर्मी में और बढ़ जाती है, क्योंकि माइक्रोब्स वगैरह हमको पहले भी हम लोग सब जानते हैं कि माइक्रोब्स वगैरह जो होते हैं ना गर्मी में ज्यादा ग्रोथ करते हैं वो, तो वो उस कारण से दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती हैं गर्मी के टाइम में।
1: कुछ लोगों का देखा गया है कि वो खाना अगर टाइम पर नहीं खाते हैं तो भी उनको गैस हो जाती है।
0: जो खाना हम खाते हैं तो बहुत कई लोगों का ऐसा होता है ना कि हैबिचुअल हंगर होता है कि भाई आपको 10 बजे खाना है, एक सुबह नाश्ता, आठ से दस के बीच में
1: टाइमिंग
0: टाइमिंग्स रहते हैं कि 8 से 10 के बीच में नाश्ता करते हैं, 1 से 2 बजे भले ही बॉडी को भूख नहीं लग रही है कुछ, या 2 बजे का उनका लंच का टाइम है, फिर डिनर का टाइम भी फिक्स होता है, तो वैसा बिल्कुल ना करें कि एक टाइम में मील बहुत सारा ना लें। मैं सभी श्रोताओं से एक आह्वान करना चाहूंगा कि एक टाइम में बहुत सारा कुछ ना खाते हुए जो हम खाना ले रहे हैं उसी को हम थोड़े थोड़े पोर्शंस में बांटें, जिसके कारण कि डाइजेशन बहुत प्रॉपर होगा। हम बहुत सारा खाना एक साथ खा लेते हैं तो बॉडी के लिए उसको पचाने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं,
1: जी
0: एकदम से कुछ चीज हो जाएगी तो दिक्कत आती है बॉडी को, तो आप थोड़ा
1: बिल्कुल
0: थोड़ा
1: बिल्कुल
0: करके खाएं जिससे कि पाचन समस्या बिल्कुल नहीं होगी, और उसके साथ में पानी खूब पिए, और गर्मी का टाइम जैसे चल रहा है तो अभी हम छाछ है या कुछ भी पेय पदार्थ को अच्छे से लें, कैरी का पना कई लोगों घर में हम लोग बनाना प्रेफर करते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहता है अभी गर्मी के टाइम में,
1: जी
0: जो कि
1: बिल्कुल
0: मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देगा, आपकी मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखेगा, तो वो ठीक रहेगा थोड़ा सा।
1: आपने जैसा बताया कि अपन थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं खाना, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों का टाइमिंग होता है, मतलब उनको भूख भी लगती है और वो उतना ही खाते हैं जितना उनको खाना है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा खाने के बाद भी भारी सा महसूस होता है, जैसे बहुत सारा खा लिया हो। ये कुछ रीजन समझ में नहीं आता है कभी
0: रीजन
1: कभी।
0: इसका रीजन ये यही होता है कि कई बार तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं कई लोगों को, इसके कारण क्या होता है बहुत टाइम तक एसिडिटी वगैरह बनी रहती है, तो अल्सर्स, गैस्ट्रिक अल्सर्स, डियोडेनल अल्सर्स, ईसोफेजियल वेराइसिस, जो कि जो ब्लीड भी कर जाते हैं कई बार लोगों को इस कारण से, तो वो काफी टाइम तक जैसे भूखे पेट भी रहते हैं ना, तो वो भी एक कॉज होता है बीमारी का, तो थोड़े थोड़े पोर्शंस में खाने का इसलिए बोला जाता है।

0: आप थोड़ा सा, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारा खाना खाना खाएं, आप हो सके तो आप थोड़े से फ्रूट्स बढ़ा दें अपनी डाइट में, जैसे मखाने हैं वो ले सकते हैं, काजू बादाम है थोड़े से, मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं कह रहा हूँ, पर थोड़े थोड़े आप क्वांटिटी में पोर्शंस में खाएंगे ना तो बिल्कुल वो डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत अच्छा रखेगा, जिसके कारण कि जो पेट में लोगों को बहुत एसिडिटी होती है और ब्लोटिंग होती है, पेट फूलने की समस्या आती है, तो ये सब चीजें नहीं होगी। इसके साथ में आपको प्रोबायोटिक्स बहुत लेना चाहिए, जैसे दही है, छाछ है, हम लोगों के, अब इंडियंस के हम लोगों के घर में तो बनता ही है, तो ये सब
1: बिल्कुल
0: चीजें गर्मी के टाइम में काफी बढ़ा देनी चाहिए। इसके साथ में फल है, जैसे खीरा बहुत अच्छा होता है ना, तरबूज अभी बहुत मौसम में अच्छा आ रहा है, तो फल हम बहुत अच्छे से अच्छा कंज्यूम करेंगे, क्योंकि चूंकि उसमें फाइबर्स की जो मात्रा होती है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो
1: जी
0: फाइबर्स क्या होता है, वो पाचन समस्या को होने नहीं देता ज्यादा, और
1: ओके
0: डाइजेशन ठीक रखता है फाइबर, तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहता है बॉडी के लिए।
1: जी। और कुछ लोगों को खाना खा रहे हैं या ना खा रहे हैं, लेकिन अगर वो उस टाइम पर कोई ट्रेवलिंग कर रहे हैं, बस में हो, ट्रेन में हो, कुछ भी, तो उनको
0: जी
1: डायरिया या फिर वॉमिटिंग ऐसी कुछ परेशानी आ जाती है, इससे
0: जी
1: बचने के लिए कुछ कर सकते हैं?
0: डायरिया वॉमिटिंग से बचने के लिए यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा, जैसे अब हम तो बोलते हैं कि भाई ORS का ड्रिंक्स लें, और आप बाहर के खाने से बचें। मैं सबसे पहले तो लोगों को कहना चाहूंगा कि हम ट्रेवलिंग में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि लोग बाहर का खाना है, कुछ होटल्स में खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो वो हमको उसका जिस तरीके से बन रहा है वो शुद्ध है या नहीं है वो मालूम नहीं होता, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो
1: जी
0: वो भी खाने से बचें, और ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फ्रूट्स अगर कंज्यूम कर पाए तो वो ज्यादा अच्छा है, घर का बना हुआ खाना खाएं, वो सबसे अच्छा बेटर हेल्प करेगा आप लोगों के लिए।
1: जी डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। अब ऐसा कुछ जो शायद छूट गया हो पूछना, अगर आप बताना चाहें श्रोताओं को तो?
0: मैं यही कहूंगा कि अपने पाचन समस्या सबसे ज्यादा आजकल बढ़ती जा रही है लोगों में, और ये सब चीजें किस कारण से, मेंटल जो मतलब हेडेक होता है, इसमें क्या होता है, कई लोगों को मैं देखता हूँ कि गैस्ट्रिक हेडेक एक बोलते हैं जिनको सर दुखने की प्रॉब्लम होती है, लोग समझ नहीं पाते, उनको लगता है माइग्रेन का प्रॉब्लम है या कुछ है, पर गैस्ट्रिक हेडेक भी होता है, गैसेस बनती हैं तो उसके कारण से होता है, और दूसरी बात ये कि एक जो मानसिक चिंताएं हैं वो भी ना करें, क्योंकि मानसिक चिंताओं के कारण भी आजकल क्या हो गया ना, लोगों को बहुत छोटे छोटे से बच्चों को पढ़ाई का है, कुछ प्रेशर है, सब लोगों को है आजकल, तो उसके
1: बिल्कुल
0: कारण भी डाइजेशन का प्रॉब्लम थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, जो आंतों का संकुचन भी गड़बड़ाता है, जिसके कारण से लोगों को प्रॉब्लम होती है, और वो कारण से क्या, एसिड वगैरह ज्यादा सिक्रीट होने लगता है बॉडी में, तो वो बॉडी में एसिड सिक्रीट होगा, तो यही चीजें अभी शुरुआती स्टेज में तो ठीक रहती हैं, थोड़ा सा लोग अवॉइड कर जाते हैं, पर वो बाद में गैस्ट्रिक अल्सर है, डियोडेनल अल्सर है, ये सब अल्सर्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो बाद में जाके आपको प्रॉब्लम दे, इससे पहले हम उसको ठीक कर लें तो वो ज्यादा अच्छा है। लोगों से मैं ये आह्वान करना चाहूंगा कि आप ठीक से लें, शॉर्ट मील्स, थोड़ी थोड़ी मील्स लें अपने खाने में, हम सलाद वगैरह का यूज करें, दूसरी बात ये है कि दही का उपयोग करें दिन के टाइम पे, वो खाएं, है ना, और पानी खूब बढ़ाएं, और दूसरी बात सब्जियां, हरी सब्जियां अच्छी लें, खीरा है अभी अच्छा आता है, तो ये सब अच्छे से लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: और टोटली ये कहा
0: और
1: जाए कि स्ट्रेस से बचे रहें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेस से तो बचना फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग है, क्योंकि आप सब करेंगे ना, और मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहना और सब कर पाएंगे, अगर ये सब हम ठीक हैं तो बाकी चीजें तो अपने आप हम कर सकते हैं,
1: जी, आपने
0: है
1: इतनी
0: ना।
1: अच्छी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं हमारे श्रोताओं को भी हमारी बातचीत पसंद आई होगी और वो भी इसका फायदा जरूर उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।
2: विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस पर अभी आपने सुनी डॉक्टर चिरंजीव ओझा से फिरदौस की बातचीत। विशेष कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजाति समुदाय के विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही सरकार। गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड, जल संरक्षण में भी देश में पहला स्थान। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ स्थानों पर आंधी बारिश का दौर, कई जिलों के लिए चेतावनी जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजाति समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के दा नांग में आयोजित 2026 अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्रीस्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते। उन्होंने बताया कि पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती टीम ने 4 स्वर्ण पदकों सहित 9 पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया है, जो कि चैंपियनशिप के इतिहास में देश के अब तक के सर्वाधिक पदक हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि महिला कुश्ती दल ने भी 6 स्वर्ण पदकों के सहित 10 पदक जीतकर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मास्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के साथ हैं या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जल डबरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। मध्य प्रदेश ने देश भर में किसानों से सर्वाधिक गेहूं खरीदने का नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य सरकार द्वारा अब तक 13,46,000 से अधिक पंजीकृत किसानों से 1,03,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। इसके साथ ही राज्य ने जल संरक्षण में भी देश में पहला स्थान हासिल किया है। जलगंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्रदेश में 2,00,000 से अधिक जल संरचनाओं पर काम किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने गेहूं खरीदी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि
1: देश भर में सर्वाधिक गेहूं खरीदी का कार्ड किसी सरकार के द्वारा बनाया गया तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है। 13,46,000 से ज्यादा किसानों ने जिनका पंजीयन हुआ था उनके माध्यम से 1,03,000 मेट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदी हमारे द्वारा की गई। ये पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य द्वारा किसानों से सर्वाधिक खरीदी का हमारा अपना रिकॉर्ड है, जो पिछली बार के रिकॉर्ड को हमने तोड़कर बनाया।
0: भोपाल में त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरबाला सिंह को कल गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई की मुख्य सूचना अधिकारी ने बताया कि भोपाल स्थित घर में 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ और जांच के बाद सीबीआई ने गिरबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत बुधवार 27 मई को रद्द कर दी थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और जांच की स्थिति को देखते हुए उन्हें राहत देना उचित नहीं था। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सादगी, मितव्ययिता और सुशासन के मंत्र को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव प्रदेश में एक नई कार्य संस्कृति स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव द्वारा प्रशासनिक खर्चों में संयम और संसाधनों के संतुलित उपयोग को लगातार प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कल अपने काफिले में वाहनों की संख्या को सीमित करते हुए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एक ही बस में सवार होकर इंदौर से उज्जैन तक की यात्रा की। इस दौरान सुरक्षा और आवश्यक व्यवस्था के लिए केवल 3

शिवपुरी जिले में 7 दिवसीय कृत्रिम अंग निर्माण एवं वितरण शिविर का आयोजन 31 मई तक किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले में रात्रिकालीन कैंप लगाकर वन पट्टाधारी किसानों को ई विकास प्रणाली में पंजीयन किया जा रहा है। धार जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत ऐतिहासिक मुंज सागर तालाब में सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। SDERF, होमगार्ड और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने तालाब परिसर से कचरा और खरपतवार हटाकर स्वच्छता का संकल्प लिया। डिंडौरी जिले में किसानों को अल्पकालीन फसल ऋण देने के लिए 30 जून तक किसान क्रेडिट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर जिले में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने NHAI के निर्माणाधीन इंदौर राघवगढ़ सड़क का निरीक्षण किया। भोपाल में नगर निगम के द्वारा स्वच्छ जलापूर्ति के लिए 91 स्थानों से पानी के नमूने लेकर जांच करवाई जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो आज और कल मंडला जिले के दौरे पर रहेंगे। नीमच जिले में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। और पन्ना जिले के देवेंद्र नगर रेंज के अंतर्गत जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गई मां और बेटी भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गईं। वन विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही सरकार। गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड, जल संरक्षण में भी देश में पहला स्थान। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ स्थानों पर आंधी बारिश का दौर, कई जिलों के लिए चेतावनी जारी। और IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

परिसर से कचरा और खरपतवार हटाकर स्वच्छता का संकल्प लिया। डिंडौरी जिले में किसानों को अल्पकालीन फसल ऋण देने के लिए 30 जून तक किसान क्रेडिट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर जिले में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने NHAI के निर्माणाधीन इंदौर राघवगढ़ सड़क का निरीक्षण किया। भोपाल में नगर निगम के द्वारा स्वच्छ जलापूर्ति के लिए 91 स्थानों से पानी के नमूने लेकर जांच करवाई जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो आज और कल मंडला जिले के दौरे पर रहेंगे। नीमच जिले में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। और पन्ना जिले के देवेंद्र नगर रेंज के अंतर्गत जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गई मां और बेटी भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई। वन विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही सरकार। गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड, जल संरक्षण में भी देश में पहला स्थान। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ स्थानों पर आंधी बारिश का दौर, कई जिलों के लिए चेतावनी जारी। और IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में ये खूबसूरत नगमा भी आपने सुना आदमी और इंसान फिल्म से। पर्वतों की सुंदरता प्रकृति का सबसे भव्य और मनमोहक रूप है। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े ऊंचे ऊंचे शिखर, और जब उन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वे सोने और चांदी की तरह चमकने लगते हैं। यह नजारा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। पहाड़ों की बर्फीली चोटियां सूरज की सुनहरी किरणें पड़ते ही बेहद आकर्षक हो जाती हैं। पर्वतों से सूर्योदय और सूर्यास्त का देखना एक जादुई और करिश्माई अनुभव है, जब आसमान में लाल, गुलाबी और नारंगी रंग बिखर जाते हैं और इन पहाड़ों के बीच से निकलते हुए छोटे बड़े झरने और नदियां इनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। कल कल बहते झरने और नदियों की आवाज और इनका ठंडा ठंडा पानी दिल को बहुत ही सुकून देता है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में वासना फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। ताजा हवा और शांत वातावरण किसी के भी तनाव को दूर करने के लिए काफी है। पर्वतों पर ठंडा ठंडा पानी, ठंडी ठंडी हवाओं से मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है। बर्फीली चादर से ढके पहाड़ों की तलछटी में मौजूद हरी भरी घाटियां, रंग बिरंगे फूल और घने घने जंगल कोहरे और बादलों के साथ मिलकर एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं, मानो हम किसी जन्नत में आ गए हों।

श्रेया घोषाल की आवाज में बहुत ही खूबसूरत फिल्माया गया अभी आपने ये गाना सुना। आज हम आपको ऐसे गाने सुनवा रहे हैं जिनमें पहाड़ों का जिक्र है, उनकी खूबसूरती को बेहद

दोस्तों, आज हम आपसे बात कर रहे हैं पहाड़ों पर्वतों की, उनकी खूबसूरत वादियों की, वहां के मौसम की। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज है 29 मई इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित है। आज का यह दिन 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेनजिंग नोर्गे शेरपा द्वारा माउंट एवरेस्ट की पहली सफल चढ़ाई की ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में मनाया जाता है। ये दोनों सबसे पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे थे। नेपाल सरकार ने 2008 में 29 मई को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। इस दिन विशेष रूप से नेपाल के काठमांडू और एवरेस्ट क्षेत्र में पर्वतारोहियों, पर्यटकों और अधिकारियों द्वारा जुलूस निकालकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह दिन साहसी पर्वतारोहियों को सम्मानित करने, एवरेस्ट के इतिहास को याद करने और नेपाल में पर्वतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। आइए अब सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सगनगमा।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल स्वर में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अभी आपने सुना हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से। मीटर की ऊंचाई वाला माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पर्वत और इसकी सुंदरता मानवीय कल्पनाओं को मोहित करता है, मानव के साहस को चुनौती देता है और साथ ही उसके दृढ़ संकल्प की परीक्षा भी लेता है। यह क्षेत्र अपने उभड़ खाबड़ भूभाग, भव्य चोटियों और मनमोहक दृश्यों के लिए जाना जाता है, जो इसे ट्रेकर्स और पर्वतारोहियों के लिए एक आकर्षक स्थान बनाता है। हर साल दुनिया भर से पर्वतारोही चरम मौसम की स्थितियों, ऊंचाई पर होने वाली कठिनाइयों और शारीरिक थकावट का सामना करते हुए इसके शिखर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस उन सभी लोगों के साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन का जश्न मनाने का दिन है जिन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना देखा और खुद को चुनौती दी। आज आप सभी सुन रहे हैं पर्वतों पहाड़ों की खूबसूरती, अपनी मन की आंखों से उन्हें देख भी रहे हैं।

दोस्तों, इन सदाबहार फिल्मी नगमों में बहुत ही खूबसूरती से पर्वतों पहाड़ों के मनोरम दृश्यों को दर्शाया गया है। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आज का ये सफर आपने तय किया आपकी अपनी रेडियो दोस्त फिरदौस के साथ। अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। कुछ ही समय में हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्यघर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस।

से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर

0: लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामीनाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच न्यू चंडीगढ़

0: शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 8:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है निमाड़ी लोक संगीत। निमाड़ी लोक संगीत के आज के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए ओम प्रकाश बामने और साथियों के गाए ये निमाड़ी लोकगीत।

0: आप सुनी रहा नी माड की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: और आकाशवाणी खंडवा से इस वक्त आप सुन रहे हैं निमाड़ी लोकगीत। आज के कलाकार ओम प्रकाश पामने और साथी।

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।

आपके मीत ये गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती है आपकी रेडियो दोस्त फिरदोस। सभी को सलाम नमस्ते। श्रोताओ, आज का पहला गाना सुनने की अनुरोध हमसे करने वाले श्रोता हैं सूरी नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, शिवकोटी ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के राकेश पप्पू सेन, निशा सेन, सपना ओम, द्वारकाबाई, किशनगंज बिहार के रविंद्र मोहन, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, अनारकली बाजार जागराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या, सुच्चा सिंह पाठक, पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार, सोनम वर्मा, शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया, साईराज, विशाल सपकाल, राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, नोमान, तनवीर मसर्रत, रामभाऊ तांदले, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तन, पूरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेश पूरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार, गांव जाखोत से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, पूजा खटक, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, ये हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार के, धार धर्मपुरी से मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री, खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जिक्रा और बेबी आयशा खत्री, राठौर मोहल्ला ग्राम जामली कला से माणक चंद राठौर, पुष्पाबाई राठौर, प्रियांशी और दिव्यांश राठौर, ग्राम छेगांव देवी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से अशोक वाघे, वंदना वाघे और कान्हा वाघे, डेढ़ पाटन गुजरात से धीरज वीरबारी, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सभिया, अनस और रेहान, कोटवा नारायणपुर बाबा बट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, जर्निया रतनपुर से जितेंद्र सिंह गौड़, नरेंद्र, सचिन, प्रीति, भावना, अंतिम, पलक, श्रुति, यशराज सिंह गौड़, देवराज, साबी और रिद्धिमा, आप सभी अपनी पसंद पर लीजिए, सुनिए ये गीत।

शान फिल्म का ये खूबसूरत गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज़ में। लक्ष्मीकांत आर डी बर्मन ने इसकी तर्ज बनाई थी और आनंद बख्शी ने गीत लिखा था।

पहली धड़कन FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी खंडवा। आप सुनते रहें, हम सुनाते रहेंगे।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले?
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया,
3: जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
8: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
7: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
8: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
9: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जी हाँ श्रोताओं, पद्मश्री से नवाजे गए उर्दू के मशहूर शायर बशीर बद्र जी का कल यानी 28 मई को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया और आज 29 मई आज की तारीख महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर की पुण्यतिथि है। 29 मई 1972 को एक ऐसा अभिनेता जो अपने चेहरे की भावभंगिमाओं से अभिनय को अंजाम तक पहुंचाता था।

मगरे आजम। इस फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। अल्फाज शकील बदायूनी के और तर्ज नौशाद की थी, और इसे सुनना चाहा आप सभी ने। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार बुढ़ाना। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित रितु, मुकेश जगताप। बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त और चेतन नाहटा। राजपेलेश मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक, आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, सौरव मेंडी, शाइना और निवान शर्मा। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप येमेकर। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वद देशमुख और सानवी शमू।

0: पंडित डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी खंडवा से इस वक्त आप सुन रहे हैं अपने फरमाइशी फिल्मी गीत कार्यक्रम है आपके मीत ये गीत। अगले गाने को सुनना चाहते हैं हमारे आप सभी श्रोता। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका गजभिये अनिष्का और तन्मय, जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी, बुरहानपुर सा मोहन मुदलियार आर्शिया आरुष राजेश कुमार, दंतरेगी के भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा रुद्र वर्मा, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े करुणा मीना अश्विनी और विपुल कांबड़े, किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास आशा देवी राघव कुमार, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा मधु बालूजा सागर और सतना मध्य प्रदेश से उमंग आकांक्षा मलिक माही मलिक, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हारपुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी प्रतीक कुमार, आकर हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवहाड़कर प्रिंस एकांश सुमित गवहाड़कर कुमारी ध्वनि गवहाड़कर परी प्रणीता सिद्धांत गवहाड़कर लाडला टुकटुक गवहाड़कर, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के मुकेश गोस्वामी मधु गोस्वामी छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल राजदीप राजेश राशि, परवट वकाल बुल्ढाणा से नारायण हागे कमल हागे, ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया आदर्श सार्थक आलोकिक चंसोलिया, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की सेन, पद्म टॉकीज निपानगर से सुदर्शन शाह पल्लवी शाह, सहारनपुर से जोन डिकेस्ट्रा रोजी डिकेस्ट्रा, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी तनुजा जोशी ध्रुवी जोशी फाल्गुनी जोशी, बटिंडा रोड मरडी डबवाली से राजेंद्र नार गौजू नारंग मोहित नारंग तानिया नारंग, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नभालकर निर्मला विशाल नारायण इंगले, कलनगंज खंडवा से कौसर बी पवार हसीना बी पवार, बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन वीना मस्कीन, ग्राम पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा पूनम वर्मा, मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल कमला पटेल अंतिम ज्योति शुभम देवी किशन भावना मनमानस और कनिका, भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल दिवांगन कौशल्या दिवांगन हेमलता, अहमदपुर खेगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली दीपक और समल फूलमाली, ग्राम सिलोदा जिला खंडवा से सिवकराम राठौर राजा राठौर, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार साकी पवार मोइन छोटू पवार मोहम्मद हसनैन, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकर लाल गंगराडे वनीता और वामिका गंगराडे, जामनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल उर्मिला जायसवाल दीपक और स्वाति जायसवाल। आप सभी सुनना चाहते हैं शैलेंद्र की आवाज में ये गाना।

लीजिए सुनिए। आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज में राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया योगेश का लिखा ये गीत फिल्म है बातों बातों में।

0: आशा भोसले अमित कुमार के युगल स्वर में ये गीत अभी आपने सुना बातों बातों में फिल्म से। इसी गीत को सुनना चाहा था घंटागढ़ चौखंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सरमती पंचोलिया ने भी, और साथ ही मलकापुर से संजय पाटिल, सौभाग्यवती उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति झीरनगर सागर से संजय कुमार चौहान ने भी। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके मीत ये गीत को समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त फिरदौस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आपके मीत ये गीत।
0: अभी आपके मीत ये गीत कार्यक्रम प्रसारित किया गया एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी खंडवा है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अरिजीत सिंह की आवाज में सुन रहे हैं आप गाना डियर जिंदगी, फिल्म से कौसर मुनीर के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

उर्दू गजल को आसान और आम बोलचाल की भाषा में लोगों तक पहुंचाने वाले मशहूर शायर बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में भोपाल में निधन हो गया। उनकी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली गजलों का इस्तेमाल जुनून, मसान, जीरो और हमारी अधूरी कहानी जैसी फिल्मों में किया गया है। हमारी अधूरी कहानी के टाइटल ट्रैक की शुरुआत उनकी बेहद खूबसूरत गजल की पंक्तियों से शुरू होती है। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे चेहरे को पड़ जाएगा।

अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे हमारी अधूरी कहानी फिल्म से ये गाना, रश्मि विराग के बोल, जीत गांगुली का संगीत। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार में उनकी चर्चा जिनके बुलंद आवाज और रोबदार अभिनय की दुनिया कायल है।
1: मालूम होता है बदहवासी ने तुझे अंधा कर दिया है, हमारे इंसाफ और कानून को नहीं पहचानती।
2: अपनी दी गई इस निशानी को पहचानिए जिल्लेदाई, याद कीजिए आपने मुझसे वादा किया था कि अकबर से जिंदगी में एक बार जो जी चाहे मांग लेना। आज मैं आपसे अनारकली की जिंदगी मांगती हूँ।
1: लो देखो
2: अनारकली।
1: देखो ये सुरंग तुम्हें मुगल सल्तनत की सरहदों के पार ले जाएगी, और ये राज कि अनारकली जिंदा है तुम्हें राज रखना होगा, ताकि सलीम जिंदगी भर ये समझता रहे कि उसकी अनारकली मर चुकी।
2: ऐसा ही होगा, इसे जिंदगी देकर शहीशाह ने अपने इंसाफ को जिंदगी दी।
1: अनारकली बखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने उसूलों के गुलाम है। एक गुलाम की बेबसी पर गौर करोगी तो शायद तुम हमें माफ कर सको।
0: जिन्होंने भारतीय सिनेमा और रंगमंच को अपने उत्कृष्ट अभिनय से समृद्ध किया। रंगमंच और अभिनय के इतिहास पुरुष कहे जाने वाले एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, वो हैं आज के फनकार पृथ्वीराज कपूर।

राज कपूर एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी कड़क आवाज, रौबदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर लगभग 4 दशकों तक सिनेमा के दर्शकों पर राज किया।

0: सन 1960 में बनी फिल्म मुगले आजम में अकबर के किरदार को कालजयी बनाने वाले पृथ्वीराज कपूर आज भी फिल्मी दीवानों के दिलों पर राज करने वाले शहंशाह हैं। रोबीले शहंशाह का मुगले आजम फिल्म का ये संवाद भला किसे नहीं याद होगा।
1: सुबह होने से पहले बेहोशी की दवा में बसा हुआ ये फूल तुझे सलीम को सुंघाना होगा ताकि वो तेरी मौत से नाशना हो जाए, तुझे भूल जाए और हमारे पहरेदार तुझे बेहोश आशिक के पहलू से उठाकर मौत की आगोश में गुम कर दें।
2: मौत मोहब्बत से करीब हो गई, ऐसा ही होगा।
1: अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम मनारकली तुझे जीने नहीं देंगे।
2: कनीज तो कब की मर्जू

पंजाब के लायलपुर में एक जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्हें रंगमंच का चस्का पेशावर के एडवर्ड कॉलेज में पढ़ते समय ही लग गया था। 18 बरस में ही उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन अपने 3 बच्चों को अपनी पत्नी के सुपुर्द कर वे पेशावर से सपनों की नगरी मुंबई आ गए और यहाँ वे इम्पीरियल फिल्म कंपनी से जुड़ गए। 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में पृथ्वीराज कपूर ने सह अभिनेता का किरदार निभाया। सन 1933 में पृथ्वीराज कपूर कोलकाता के मशहूर न्यू थिएटर से जुड़ गए। 1933 में ही प्रदर्शित फिल्म राज रानी और 1934 में देवकी बोस की फिल्म सीता की कामयाबी के बाद पृथ्वीराज कपूर ने बतौर अभिनेता अपनी पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने न्यू थिएटर की कई फिल्मों में अभिनय किया, मिसाल के तौर पर 1936 की फिल्म मंजिल और 1937 की फिल्म प्रेसिडेंट। सन 1937 में आई फिल्म विद्यापति, जिसमें पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। रंजीत मूवी टोन के बैनर तले निर्मित 1940 में आई फिल्म पागल में उन्होंने एंटी हीरो की भूमिका निभाई। सन 1941 में सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर के बाद पृथ्वीराज कपूर अभिनय की बुलंदी पर पहुंच गए।

1968 की एसएस वासन की फिल्म तीन बहुरानियां पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की वजह से यादगार मानी जाती हैं। फिल्म तीन बहुरानियां में बच्चों के साथ डांस और मौज मस्ती करते नजर आते हैं पृथ्वीराज कपूर।

0: मुगले आजम में इस कलाकार ने शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के किरदार को अमर कर दिया। कितनी भी बार देखी ये फिल्म, हर बार उसी तन्मयता से देखी जाती है।
1: क्या जिद लेला ही एक बागी का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाए?
2: ये बदनसीब बाप जिसे दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है।
1: बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहते हैं आप। शहंशाह बाप का भेस बदल कर आया।
2: शहंशाह रोया नहीं करते शेखू, बाप की आंखों में आंसू है। शेखू यह गरीब बाप शहंशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है।
1: और सलीम अपनी मोहब्बत से।
2: शेखू शेखू मोहब्बत दिलों को फर्क कर सकती है, फौजों को नहीं। तुम्हारे जज्बात शहंशाह की बेपनाह ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते।
1: इसका फैसला जंग करेगा।
2: सलीम, शहंशाह के फैसले को जंग का इंतजार नहीं, जंग के नकारे की पहली चोग अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी।

मंच पृथ्वीराज कपूर का पहला प्यार था, इसीलिए वे 1931 में शेक्सपियर के नाटक पेश करने वाली ग्रांट एंडरसन थिएटर कंपनी से जुड़ गए। 1944 में उन्होंने अपनी लागत से खुद की ही थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। दीवार, पठान, गदर, दहेज, पैसा उनके प्रमुख नाटक थे। उनके अभिनय को उनके परिवार ने विरासत में पाया। पृथ्वीराज कपूर के बेटे हिंदी सिनेमा के बेमिसाल अभिनेता और निर्देशक राज कपूर की फिल्म आवारा में भी उन्होंने सशक्त अभिनय किया।

0: कपूर खानदान की कई पीढ़ियां एक साथ एक फिल्म में नजर आईं। फिल्म थी कल आज और कल। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर।
1: टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक

सुर पहले पर्दे पर अभिनय के कई बारीक पहलुओं को अपने सशक्त अभिनय से साकार करने वाले इस बेमिसाल फनकार को कैंसर जैसे भयंकर मर्ज ने घेर लिया और 29 मई 1972 को इस फानी दुनिया को वे अलविदा कह

0: शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह।

अभी विविध भारती सेवा के कार्यक्रम रिले किए जा रहे थे। सुबह के 10 बजने वाले हैं, ये आकाशवाणी खंडवा है। अब आकाशवाणी भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे जिले की चिट्ठी।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख है नवीन श्रीवास्तव का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। ग्वालियर जिले के लिए यह महीना मिला जुला रहा। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने ग्वालियर प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ग्वालियर में राज्य स्तरीय पशुपालक एवं दुग्ध उत्पादक सम्मेलन का शुभारंभ करने भी पहुंचे। उन्होंने सम्मेलन में मौजूद सभी को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन से जुड़कर प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने में सहयोग देने का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्वालियर में पशुओं के केयर एंड वेलनेस सेंटर खोलने, पशु स्वास्थ्य एवं उपचार केंद्र का उन्नयन करने और डबरा में नया पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के साथ अन्य अतिथिगणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ऋषि गालो विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार भूमि पूजन किया। गौरतलब है कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण मध्य भारत शिक्षा समिति के द्वारा ग्वालियर जिले के बेला गांव के अंतर्गत लगभग 55 बीघा जमीन पर 110 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है। अगले वर्ष गुरु पूर्णिमा से यहां शैक्षणिक सत्र शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। संपूर्ण विश्वविद्यालय 3 वर्ष में बनकर तैयार होगा। ग्वालियर जिले में भी जनगणना कार्य निदेशालय के द्वारा निर्धारित जनगणना कार्यक्रम के तहत जनगणना का प्रथम चरण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी रुचिका चौहान ने शहर में चल रहे जनगणना कार्य का बीते दिनों औचक निरीक्षण किया। उन्होंने न्यू दर्पण कॉलोनी में प्रगणकों द्वारा की जा रही जनगणना की वस्तुस्थिति को जाना। गौरतलब है कि बीते 1 मई से शुरू हुई जनगणना का प्रथम चरण 30 मई तक चलेगा। पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना का कार्य किया जा रहा है। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत हाल ही में सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन जिले में किया गया। इस श्रमदान कार्यक्रम के तहत लक्ष्मीगंज

क्षेत्र ऐतिहासिक मेहराब साहब की तलैया पर सांसद भारत सिंह कुशवाहा की अगुवाई एवं कलेक्टर रुचिका चौहान की प्रेरणादायक मौजूदगी में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजनों ने एक साथ तलैया की सफाई में अपना योगदान दिया। ग्वालियर जिले में भी भूमि नामांतरण प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है। इसके साथ ही इस व्यवस्था से नागरिक सुविधाओं को अधिक सहज और प्रभावी बनाया गया है। साइबर तहसील 2.0 वर्तमान

0: योगदान दिया। ग्वालियर जिले में भी भूमि नामांतरण प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है। इसके साथ ही इस व्यवस्था से नागरिक सुविधाओं को अधिक सहज और प्रभावी बनाया गया है। साइबर तहसील 2.0 वर्तमान में जिले की सभी तहसीलों में प्रभावी रूप से संचालित हो रही है। वहीं जिले के विकास खंड घाटी गांव की ग्राम पंचायत आरोन में जलगंगा संवर्धन अभियान एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास 2.0 के तहत यहां बने कोलीझोरा तालाब ने यहां के 50 हेक्टेयर बंजर नुमा सूखे क्षेत्र के रकबे को उपजाऊ खेतों में बदल दिया है। अब इन खेतों में गेहूं और सरसों की फसलें लहलहाने लगी हैं। ग्वालियर जिले में समर्थन मूल्य पर सुव्यवस्थित ढंग से गेहूं का उपार्जन जारी है। जिले में गेहूं उपार्जन के लिए 40 केंद्र संचालित हैं। 22 मई तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में 7,448 किसानों से 9,97,494 क्विंटल गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। बीते दिनों प्रदेश के जल संसाधन एवं जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पेयजल प्रबंधन के साथ साथ जनहित के अनेक मुद्दों पर विस्तार से समीक्षा की और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पिछले दिनों न्यायमूर्ति गुरुपाल सिंह अहलूवालिया ने संत योगी हुजूर मालिक साहब के जीवन पर आधारित पुस्तक दिव्य चरितामृत का विमोचन किया। आध्यात्म निकेतन में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के भी उपस्थित थे। इसकी अध्यक्षता संत कृपाल सिंह ने की। कलेक्टर रुचिका चौहान की पहल पर हुए शक्ति दीदी नवाचार के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इस नवाचार के तहत जरूरतमंद महिलाओं को पेट्रोल पंपों पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर की नौकरी दिलाई जा रही है। जिले में वर्तमान में शक्ति दीदी के तहत पहले से ही 112 महिलाएं ये भूमिका सफलतापूर्वक निभा रही हैं। पिछले दिनों ग्वालियर में आदर्श गौशाला लाल टिपारा के बायोगैस प्लांट का राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने जायजा लिया। गौरतलब है कि गाय के गोबर से सीएनजी बायोगैस उत्पादन के क्षेत्र में यह प्रदेश के सबसे बड़े प्लांट में से एक है। आदर्श गौशाला लाल टिपारा ने गौवंश के प्रबंधन के साथ साथ गाय के गोबर व कचरे से वायु गैस उत्पादन कर देश प्रदेश के लिए अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। ग्वालियर जिलेवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों तथा प्रशासनिक फैसलों तथा सरकारी और जनहित से जुड़ी हर आधिकारिक जानकारी सीधे आपके मोबाइल फोन पर मिलेगी। कलेक्टर ने हाल ही में इससे संबंधित एक व्हाट्सएप चैनल का शुभारंभ किया है। ग्वालियर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख था नवीन श्रीवास्तव का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया हमारे
2: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: प्रबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
4: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
3: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
4: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
3: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
4: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
3: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
4: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
3: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
4: जी, ये बात तो है।
3: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी

0: साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है
0: जी,
1: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
0: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
1: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
0: जी,
1: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई है और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
0: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
1: काले गुलाब?
0: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
1: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है
0: जी,
1: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है
0: जी।
1: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
0: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
1: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है
0: जी,
1: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
0: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
1: जी वो तो है,
0: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
1: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है
0: जी।
1: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
0: बिल्कुल,
1: आइए बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
0: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का
1: जी,
0: पीला गुलाब मित्रता का और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
1: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते
0: जी,
1: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
0: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
1: जी तो श्रोताओ, ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस पॉडकास्ट के बातें।

0: करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
0: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
0: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये

0: गीतमय कार्यक्रम खेल संध्या और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे की जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोर

0: खा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
1: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
0: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी,
4: हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
5: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
5: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली। आयो गोरखाली। जय महाकाली। आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली। आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
0: मार्ग दुर्गम था। खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद

0: आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
1: आक्रमण हुआ
0: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।

0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
2: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
0: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
1: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
1: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
3: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
0: जिसका अर्थ है, उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
0: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
1: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।
6: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
5: FM बैंड 101.2 MHz पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 10:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी जगत।

नारी जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को आपकी सखी रंजना का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, इस समय हम नौतपा की गर्मी और धूप को बखूबी झेल रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि धूप से बचिए, बाहर जरूरी हो तो ही निकलिए, और जरूरी भी है सखियों। पर क्या करें भाई, अब मुझे ही देख लीजिए, काफी दिन से आपसे बात नहीं हुई थी, तो आपसे मिलने की, बात करने की, ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारी और अच्छे अच्छे गीत सुनवाने की मुझे इतनी ज़्यादा उत्सुकता थी सखियों कि ना मैंने धूप देखी न गर्मी, बस चली आई आपसे मिलने। पर पूरी एहतियात के साथ आई हूँ, अपने आप को पूरी तरह से ढक कर धूप से बचाते हुए और खूब सारा पानी पीकर निकली हूँ और साथ में हेल्दी ड्रिंक भी लाई हूँ ताकि थोड़ी थोड़ी देर में पीती रहूं और अपना काम करती रहूं, क्योंकि हमारा जीवन अनमोल है सखियों। ऐसे ही अस्वस्थ रहकर या अपने आप को कोई कष्ट देकर तो हम नहीं जी सकते ना सखियों। आप मेरा इशारा समझी हो या ना समझी हो, पर मैं बात कर रही हूं उस खास दिवस की और सप्ताह की जो कि 31 मई तक हर साल पूरे विश्व में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक खास थीम के साथ मनाया जा रहा है।

नहीं समझे? तो सखियों, ये सप्ताह 31 मई तक मनाया जा रहा है और ये है विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह। बातें और भी हैं, पहले सुनते हैं ये गीत।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: सखियों, तंबाकू यानी निकोटीन एक ऐसा धीमा और मीठा जहर है जो न केवल हमारी जिंदगी नष्ट कर सकता है बल्कि हमारे परिवार तक को अस्त व्यस्त कर देता है। चाहे पान मसाला या कुछ धूम्रपान के जरिए लिया गया हो, इसके सेवन से फेफड़ों में, लीवर में और मुंह के कैंसर, शुगर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अब सखियों, कुछ महिलाएं भी इसकी इतनी आदि हो चुकी हैं, जब मैं उनको देखती हूँ तो पूरे समय उनके मुंह में तंबाकू या फिर तंबाकू युक्त पान मसाला या सुपारी, जो वो पूरे टाइम चबाती रहती हैं। और बच्चे भी कहाँ पीछे हैं सखियों, उन्हें लगता है आज की लाइफ स्टाइल यही है। 14 से 15 साल तक के बच्चों को भी हम इसका सेवन करते हुए देखते हैं। सखियों, अगर हम

आंकड़ों की माने तो सालाना 80 लाख से अधिक लोगों की जान ले लेता है ये तंबाकू। विश्व तंबाकू निषेध दिवस सिर्फ एक जागरूकता अभियान नहीं है सखियों, ये हमें संदेश देता है कि तंबाकू का सेवन आज भी दुनिया भर में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। सखियों, और इस बार की थीम भी यही है, निकोटीन और तंबाकू की लत का आकर्षण बेनकाब करें। यदि आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तंबाकू के विनाशकारी परिणामों को जानते हैं, तो इसे छोड़ने पर आपको विचार जरूर करना चाहिए। सखियों, आपके परिवार में भी इसका सेवन अगर कोई करता है तो उसे रोकना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू को रोकने के उद्देश्य से पूरे विश्व में जागरूकता और ध्यान केंद्रित करने के लिए 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की स्थापना की, और 2026 में जब हम इस महत्वपूर्ण दिवस को मना रहे हैं तो संदेश स्पष्ट है सखियों, तंबाकू को ना कहिया और जीवन को हाँ कहना। और इसी तारतम्य में आज हम लेकर आए हैं विशेष भेंटवार्ता। हमारी मेहमान सखी समाज सेविका श्रीमती नमिता काले जी से ये बातचीत है, विषय तंबाकू एवं धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभाव और नशा मुक्त हो भारत। तो आइए सुनते हैं।

0: नमस्कार सखियों, आज हमारे कार्यक्रम में चर्चा के लिए उपस्थित हैं समाज सेविका नमिता काले जी। नमिता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
1: धन्यवाद दीदी, नमस्कार।
0: नमिता जी, बहुत सारे कार्य आप कर रही हैं
1: जी,
0: और पूर्व में भी हम अपनी सखियों से आपका परिचय करवा चुके हैं। किस तरह से पर्यावरण के लिए आप खाद बनाती हैं, किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को आप संस्कार शाला के माध्यम से उन्हें अपने संस्कार से, अपने रिवाजों से रूबरू करवाती हैं
1: जी,
0: और पिछले 10 वर्षों से जो आप एक महत्वपूर्ण और बहुत ही नेक कार्य कर रही हैं वो है नशा मुक्ति का कार्य
1: जी।
0: एक अभियान आपने चलाया है और मैंने सुना है कि आपके अभियान में धीरे धीरे कुछ लोग जुड़ने लगे हैं
1: जी,
0: और इस तरफ कार्य भी कर रहे हैं
1: जी।
0: तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वर्तमान में आप क्या कर रही हैं और आपके क्या क्या कार्य हैं।
1: जैसे 10 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं दीदी, और यदि कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें और सीखने को मिलता है, तो निरंतर हमारी गति तेज कर रहे हैं हम लोग कि जन जन तक हमारी बात पहुँचे और जन जन में समाज में सुधार हो। जो आज किसी भी प्रकार का व्यसन है तो उसे दूर करने में हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत तो हमने बच्चों के साथ की थी दीदी, कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि नशे को छुड़ाने से अच्छा है क्यों ना हम बच्चों के पास पहुँचे, टीनेजर्स युवा बालकों के बीच, ताकि हम उन्हें गीली माटी जो कहते हैं उन्हें शुरू से ही उन्हें हम अच्छे मुकाम पर सही राह दिखाएं, ताकि वो इन गलत चीज़ों में पड़े ही नहीं और एक नेक व्यक्तित्व तरुण युवा बन सके। तो यह कोशिश मैं संस्कार शाला के द्वारा कर रही हूँ। तो ये भजन मंडली, गली मोहल्ले, शहर, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बात जन जन तक जाए और मैं खुद भी कोई भी एक भी स्कूल कॉलेज ऐसा ना पहुँचे जहाँ पर यह हमारी बात ना पहुँच पाए और अधिक से अधिक बच्चों को, युवाओं को इसका लाभ मिले।
0: जैसे आपने बात की बच्चों की, युवाओं की, उनको नशा मुक्त कराने की
1: जी, इस ओर भी दीदी हम जागृत है, क्योंकि हम भी कई बच्चियों और बहनों को देख रहे हैं और कई लोग इसमें दिन भर व्यस्त रहते हैं, अपना काम भी बहुत करते हैं, मगर उनके मुंह में कोई ऐसा पदार्थ होता है, तंबाकू वगैरह, जो निरंतर खाते रहते हैं। तो कई लोगों को मैंने पूछा भी कि आप इसे क्यों खा रहे हैं, तो कहते हैं कि नहीं, हमें काम ऐसा करना पड़ता है इसलिए खाना पड़ता है। तो वो इस तरह के तर्क देते हैं, मगर उन महिलाओं को और बच्चियों को हमें समझाना बहुत आवश्यक है कि ये गलत चीज़ है, आप इसे नहीं खाइए, इससे स्वास्थ्य पूरी तरह से खराब होगा। महिलाएं परिवार की रीढ़ होती है, यदि वे ही गुटखा तंबाकू आदि होंगी तो परिवार को कौन संभालेगा। बच्चियां, महिलाएं गुटखे पाउच की लत से दूर रहना चाहिए, उन्हें इनके दुष्परिणामों की जानकारी होना चाहिए, ताकि वे अपने गर्भ में पल रहे बालक शिशु को भी सुरक्षित और स्वस्थ जन्म दे सके। तो महिलाओं और बच्चियों की अच्छी शिक्षा, सामान्य ज्ञान होना उन्हें बहुत आवश्यक है। उनका अच्छा भोजन, अच्छा आचार विचार व्यवहार मिलना चाहिए, ताकि वे

0: अच्छी संगत से उनकी रंगत बदलेगी। तो यह सब प्रयास हम सब मिलकर ही कर सकते हैं और आत्मनिर्भर आत्मविश्वास बेटियों में और महिलाओं में जागेगा तो ही वह इन बुरी चीज़ों से दूर हो पाएंगी।
1: नमिता जी, जैसे कि हमने महिलाओं की बच्चियों की बात की, चूँकि हमारा जो कार्यक्रम है नारी जगत
0: जी,
1: वो महिलाओं के लिए ही है और हम खासकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जब बात करते हैं तो, और जब हम देखते हैं कि उनके मुंह में तंबाकू है, निरंतर चबा रही हैं, पाउच खा रही हैं, मतलब वो निरंतर उनका मुंह जब चलता है तो हमको कहीं ना कहीं चिंता हो जाती है उनके स्वास्थ्य की। तो ऐसे में आप उन महिलाओं को क्या समझाइश देती हैं और क्या कोई आपके अभियान में कोई ऐसा कोई तरीका है जिससे उनका तंबाकू आपने छुड़वाया है या किसी महिला ने आपकी बात मानी है, ऐसा कुछ?
0: कुछ महिलाओं के मुंह में तंबाकू बराबर नजर आती है तो हम उनसे रूबरू होते हैं तो उन्हें अपनी बातों के द्वारा समझाते हैं कि बहना ये चीज़ गलत है, आप इससे दूर रहिए। तो धीरे धीरे दो चार बार बोलने में असर होता है और वो व्यक्ति अपनी बुरी चीज़ को छोड़ने की बराबर कोशिश करता है।
1: जो मतलब स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है
0: जी
1: वो तो मान लेता है
0: जी,
1: लेकिन कुछ लोग जो आदतन जिनको मतलब आदत पड़ी गई है कि मैं ये खाऊंगा या मैं ये खाऊंगी तो ही मेरा काम होगा, तो उस भ्रांति को आप कैसे दूर करते हो?
0: वो उनकी सोच को दीदी उनकी अच्छी संगत से ही दूर किया जा सकता है। तो उन बहनों को महिला संगठनों में अच्छे आचार विचार के लोगों में बैठने उठने से अच्छे कार्य निर्देश में लगकर पारंपरिक तरीके से अजीत ढूंढने से वो अपनी बुरी चीज़ों को बिल्कुल छोड़ सकते हैं।
1: अच्छा, और जैसे गर्भवती महिलाएं हैं तो गर्भवती महिलाओं को तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है,
0: बराबर,
1: तो उसके लिए आप क्या कर रही हैं?
0: उसके लिए दीदी आंगनवाड़ी की भी हम विजिट करते हैं और हमारी जो आंगनवाड़ी की प्रमुख बहनें हैं उनको भी हम समझाइश देते हैं कि आप इस ओर अवेयर रहिए। और जब गोद भराई या कोई रस्म या आंगनवाड़ी में कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो उन बहनों से भी हम संपर्क करते हैं कि हेल्थ के लिए उन्हें बताते हैं कि आपके शिशु के लिए यह चीज़ अच्छी नहीं है, तो आप अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छे आचार विचार में रहो, अच्छा भोजन लो ताकि आप अपने शिशु को स्वस्थ रूप से जन्म दे पाएंगे। और कुछ ऐसे पोस्टर्स कुछ ऐसी चीज़ें हम उन्हें दिखाते हैं कि ये गले के रोग होंगे, आगे चल के आपके बालक को भी बहुत समस्याएं आएंगी। तो बहनें सोचती है समझती है कि हम इस चीज़ से बचें। समाज में देखा है दीदी मैंने कई घरों को शराब या तंबाकू या नशे की प्रवृत्ति से दुखी होकर उनके बीवी बच्चे रोते रहते हैं और कई महिलाएं रोती रहती है पीटती रहती है और कई बच्चों को मैंने शराब के नशे में एक्सीडेंट करते भी देखा है। तो हमारे शराब के शौक से दूसरों को भी नुकसान होता है और उनके बच्चों को भी समाज में अच्छा माहौल नहीं मिलता, उन्हें बहुत उलाने और ताने सहने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी और ऐसी कई तमाम घटनाओं से मेरे मन को झकझोर दिया और मुझे लगा कि इस ओर हम सबको कार्य करना चाहिए क्योंकि व्यक्ति बुरा नहीं है, उसकी लत बुरी है।
1: सही है, बिल्कुल सही कहा आपने
0: जी।
1: और जिस तरह से ये हमारे स्वास्थ्य को मतलब कई बार तो जान तक चली जाती है, सीधे सीधे धूम्रपान हो या तंबाकू हो या
0: कई प्रकार की
1: कोई भी नशा, कोई भी मादक पदार्थ
0: जी,
1: सबसे ज्यादा हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो इस कार्यक्रम के जरिए हम यही, हमारी बहनें अगर किसी तरह का सेवन कर रही हैं या उनके बच्चे या परिवार के कोई दूसरे सदस्य भी अगर इस तरह का कोई सेवन कर रहे हैं तो वे इसको अभी इससे दूर हो जाएं।
0: आजकल बच्चे बड़े सभी गैजेट्स का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं दीदी, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में भी भ्रामक चीज़ें चल रही है। नशा मुक्त भारत में प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होना चाहिए दीदी। हम ये नहीं सोच सकते कि हमारा घर और हम सुरक्षित है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर जब हम बाहर निकलते हैं, हमारे बच्चे बाहर जाते हैं तो कई युवा साथी उन्हें बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई ड्राइवर इस तरह से गाड़ी चलाते हैं जो अच्छे लोग भी उसमें हानि पाते हैं। तो हम प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने घर परिवार का तो अनुशासन रखें ही बल्कि हमारे आसपास समाज परिवार देश में क्या हो रहा है और उसको हम कैसे सुरक्षित रखें, तो ये हम सब की जिम्मेदारी है। प्रत्येक व्यक्ति को इस ओर कार्य करना ही चाहिए। कई बच्चों को मैंने समझाया तो वो मान भी गए और सुधर भी गए और आज अच्छे स्टेज पर पहुँच गए, तो मुझे भी मनोबल बढ़ा कि नहीं मेरे कार्य से कहीं प्रगति हो रही है, कहीं सुधार हो रहा है। और कई लोगों को शुरू में लगा कि ये कोई काम है क्या, पर नहीं, आज उन्हीं लोगों को लगता है कि नहीं समाज के लिए बहुत आवश्यक काम है ये जो कर रहे हैं, इसमें हमें भी साथ देना चाहिए। तो स्कूल कॉलेजेस मोहल्ले का

0: कॉलोनी सब रिस्पेक्ट भी करते हैं और साथ भी देते हैं, और कई परिवर्तन भी आए हैं। कई बच्चियों को शिक्षा दी है तो उन्होंने आगे अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाया है, कई काम करने वाले बच्चों ने अपनी आदतें छोड़ी और आज फिर से हमें मिलते हैं तो वो मुस्कुरा के मिलते हैं और उनमें एक अच्छा सा आत्मविश्वास और परिवर्तन लगता है, तो ये देख कर कहीं ना कहीं खुशी होती है।
1: बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत नेक कार्य आप कर रही
0: जी
1: हैं। और वाकई ये मतलब हमारे देश का एक सच्चा नागरिक
0: जी
1: होने का प्रमाण है। नमिता जी, आप अंत में हमारी बहनों को क्या संदेश देना चाहें?
0: मेरा बहनों से ही निवेदन है कि बहनें ही रीढ़ की हड्डी होती है, कहते हैं ना कि परिवार की रीढ़ होती है, तो यदि हमारी बहनें स्वस्थ रहेगी, खुशहाल रहेगी और जागरूक रहेगी, अपने अच्छे परिवार ही नहीं अभी तो एक अच्छे समाज निर्माण करेंगे, क्योंकि नारी को देवी बोला गया है। तो नारी को पहले तो अपने आप को जानना होगा कि हमें कितनी शक्तियाँ हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें हरा नहीं सकती और इसकी लत हमें पड़ नहीं सकती, और हमारे जो आसपास जो हमारी बहनें हैं उन्हें भी हम सही मार्गदर्शन दें, अच्छे कार्यों में लेके आए, अच्छी एक्टिविटी में लेके आए, एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे को प्रोत्साहन दे। बहनें हैं उन्हें कुछ पता नहीं है, उन्हें भी सही जानकारी दे, उनको भी मार्ग उनका प्रशस्त करे, ताकि हम सब मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। तो मेरी बहनें जरूर मेरी बात को समझेगी, ये मेरी आशा है। जैसे आज सोशल मीडिया का प्रभाव सभी ओर है, बच्चे बड़े युवा हमारी बहनें सभी सोशल मीडिया का उपयोग करती हैं, तो हमने भी कुछ नवाचार किया है, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया के द्वारा जन जन तक अच्छी बातें पहुंचाना चाहते हैं, तो हम कई प्रकार के स्टेटस भी लगाते हैं और यूट्यूब चैनल भी हमने बनाया है, जिसमें हम समाज को क्या बेहतर दे सकते हैं इस ओर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारे समाज को निश्चित ही सोशल मीडिया से फायदा होगा ही होगा। और सभी क्रिएटर्स से भी मैं यह कहना चाहती हूँ कि रील्स में और आप ऐसे क्रिएट कीजिए, ताकि हमारी युवा शक्ति, हमारी बहनें, सभी को अच्छा माहौल मिले और सभी अच्छी चीज़ों की ओर अग्रसर हो।
1: जी, आपके विचार जानकर बहुत अच्छा लगा। आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सखियों, अभी हम सुन रहे थे समाज सेविका नमिता काले जी से बातचीत, तंबाकू एवं धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभाव और नशा मुक्त हो भारत। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। और अब समय है टिप्स का। सखियों, गर्मी और चिपचिपी जो पसीना होता है, उससे हमारे जो कपड़े हैं, हमारे जो जूते हैं, जो हम मोजड़ी पहनते हैं, उनमें स्मेल आना स्वाभाविक है। कपड़े तो हम धोने में डाल देते हैं, लेकिन जब बात जूतों की होती है तो क्या करें? तो यही टिप्स है कि इस्तेमाल करने के बाद जूतों को पैक करके या फिर बंद जगह में ना रखें। इसके बजाय उनके स्टैंप, पैड, इंसर्ट और फीते निकाल कर उन्हें थोड़ी देर के लिए बालकनी में या फिर बाहरी हवा में छोड़ दें, तो उससे बदबू नहीं आएगी। और मोजे जो जूतों के साथ पहनते हैं वो उच्च क्वालिटी के होने चाहिए। फंगल संक्रमण से बचने के लिए मोजों को अधिकतम 2 दिन में ज़रूर धोना चाहिए। और पैरों को स्वच्छ रखें, जब पहन रहे हैं तब भी पैरों को साफ करें, और पहनने के बाद भी आप पैरों को साफ करके पहने तो ये दिक्कत नहीं आएगी। और अब सुनते हैं ये गीत।

और सखियों, इस गीत के साथ ही आज के नारी जगत कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति दें आपकी सखी रंजना को। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

अभी नारी जगत कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा था। ये आकाशवाणी खंडवा है। सुबह के 11 बजे हैं। अब राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: बरसात की रात इस फिल्म से ये कव्वाली अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था, रोशन का संगीत था।
1: कुछ बातें

कहीं कहीं दिल में दबी रह जाती हैं, जो कभी तपिश, कभी खलिश और कभी घुटन बनकर हमेशा सताती हैं। इसीलिए जो कहना है कह दो, वरना ये अनकही यादें बनकर तमाम उम्र तुम्हारा पीछा करेंगी।

0: तो फिल्म से मनाडे की आवाज में साहिल लुधियानवी ने से लिखा और रवि का संगीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। अलीशा की आवाज में ये गीत अलीशा लव नोट्स एल्बम से।

अलीशा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे अलीशाज लव नोट्स एल्बम से। अलीशा और नितिन रायकवार ने इसे लिखा, संदीप चौटा का म्यूजिक। तन्हा दिल एल्बम का नाम है, शान की आवाज में ये गीत।

0: अशोक खोसला की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे जब तेरे शहर से। अशोक खोसला की गजल की एल्बम से ये गीत अभी हमने चुनकर आपको सुनवाया।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हूँ।

0: रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

फिल्म लेकिन से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, गुलजार ने इसे लिखा था। और अब सोनू निगम की आवाज में ये गीत जान एल्बम से। निखिल विनय का संगीत है, फैज अनवर ने इस गीत को लिखा है।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठी की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग

0: द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

फिल्म शोर से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, महेंद्र कपूर, श्यामा और साथियों की आवाजों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और आज यादों की महफिल में वो गीत जो जीवन पर या जिंदगी पर आधारित हैं, और गीतकारों ने अपने अपने तरीके से अपने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जिंदगी के बारे में लिखा है।

मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म से आप किशोर कुमार को सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में जीवन के अलग अलग रंगों को, भावों को खूबसूरती से लिखे गीतों में जिन्होंने पिरोया है, वो गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: भूपिंदर और अनुराधा पौडवाल को आप सुन रहे थे दूरियां फिल्म से। जयदेव का संगीत था और सुदर्शन फाकिर ने इसे लिखा।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म से। नदीम श्रवण का संगीत और समीर ने इसे लिखा था।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

जिंदगी इत्तफाक है, ये गीत अभी आप सुन रहे थे आदमी और इंसान फिल्म से आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि ने संगीत दिया था और साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

फिल्म आंधी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। गुलजार ने इस गीत को लिखा था और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

फिल्म हम दोनों से गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और जयदेव का संगीत था। इसके साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आज के इस प्रोग्राम सुरीला सफर में। मैं हूं अनुराधा और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक टेक्स्ट या इबारत लिखी जाती है, पोस्ट की जाती है। उसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। आपके प्यार भरे संदेश और गानों की लिस्ट मुझ तक पहुंच चुकी है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज इसके प्रोग्राम की और साथ ही ये भी देखते हैं कि आपके गीतों की लिस्ट कितनी मेल खाती है हमारी लिस्ट से। लेकिन जो गीत आप चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं उन शब्दों से, चाहे वो लिस्ट में शामिल हो या ना हो। हो सकता है कि मैसेजेस देखते देखते उनको भी शामिल कर लिया जाए। लेकिन एक बार इबारत जरूर फिर से पढ़ देते हैं, है ना, हमारे उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, उनके लिए इस इबारत को फिर से पढ़ दें और फिर शुरुआत करेंगे आज के इस प्रोग्राम की। इबारत कुछ इस प्रकार है, तुम्हारी जुल्फों की छाओ में ये दिन क्या रात भी ठहर जाए, निगाहों का काजल मेरे दिल में उतर जाए, कजरे की महक जब हवाओं में खो जाए, मेरा प्यार तुम्हारे इशारे पे हर हद से गुजर जाए, बिंदिया की चमक जैसे चांदनी का सफर, पायल की छनक लगे कोई मीठा सा असर, जब तुम्हारी निगाहें मुझे चुपके से पुकारे, दिल की हर धड़कन बस तेरा ही नाम गुनगुनाए,

तुम्हारे ख्यालों का मौसम अब रुकता ही नहीं, ये दिल तुम्हारे बिना कहीं लगता नहीं। वादा किया था तुम्हारे साथ चलने का कभी, पर्वत भी झुक जाते जब होती तुम पास कभी। तुम्हारे इशारों में ऐसा जादू मुझ पर कर दिया, तुम्हारे इशारों ने ऐसा जादू मुझ पर कर दिया, इस प्यार ने मुझे शायर कर दिया। चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ और उसके बाद लेते हैं आपके संदेश।

किस्मत फिल्म से ये गीत आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजों में आप सुन रहे थे। एसएच बिहारी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत था। ये खूबसूरत गीत के डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ और आपके मैसेजेस भी बता रहे हैं कि आपने इस गीत के सभी डिटेल्स, कौन सी फिल्म से है, किसने गाया है, सब कुछ मुझे बताया है। और एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने ये भी बताया है कि हारमोनियम का बेहतरीन इस्तेमाल प्रिलूड में मैंडोलिन के साथ इस गीत में किया गया है और साइड रिदम में खंजरी का प्रयोग भी किया गया है। तो बहुत अच्छा लगता है आपके इस तरह के मैसेजेस देख के कि आप गीतों के साथ जुड़े हैं, संगीत के साथ जुड़े हैं, और संगीत अगर जिंदगी में हो तो जिंदगी खुशहाल हो जाती है। साथ ही सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे से संदेशों का। और हमारे जो साथी है फेसबुक के, वो भी एक दूसरे का स्वागत करते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, विविध भारती के सभी कार्यक्रमों में व्यस्त रहें, यही शुभकामनाएं हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप एक दूसरे का भी अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सब मिल बैठे हैं इस वक्त और बातें कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा ये अनुभव है और बहुत ही प्यारा ये एहसास है। हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रेम में ऐसा ही होता है, सारी दुनिया हसीन नजर आने लगती है, प्रेम से गुंधे गाए कुछ शब्द अपने आप जुबान पर चढ़कर महकने लगते हैं, ये जुल्फ ये काजल कविता बनकर दिल में उतर आते हैं और गीत की शक्ल में कब ढल जाते हैं पता ही नहीं चलता। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज के शब्दों के आधार पर गाने चुनने का मजा ही कुछ और है। विविध भारती को सुनते रहिए और मजे लेते रहिए। हमारे एक और श्रोता ने आंखों का काजल, पायल की खनक, उसकी बिंदिया का आकर्षण, चांदनी आदि आदि इन शब्दों को चुना है और कहा है कि मोहब्बत से पूर्ण शायराना इबारत, इबारती सफर का इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद। सफर का इंतजार खत्म हुआ और हम सफर में हैं। कभी कभी मन इतना उदास होता है कि किसी काम में मन नहीं लगता और न ही संगीत से कोई खुशी मिलती है, तब दिल में उस ईश्वर को याद करना चाहिए, उनके पास बैठकर रोना चाहिए, उन्हें अपनी उलझनें बतानी चाहिए। लेकिन आज जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत से शुक्राने निकले, बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया और फिर हमें ऐसा लगता है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं जिनसे हमें तकलीफ है या जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, खूबसूरत संदेश है आप सभी के लिए कि क्यों ना हम उन चीज़ों का शुक्रिया करें जिंदगी में हर रोज, हर सुबह सबसे पहली चीज। और कहते हैं ना कि जब हम धन्यवाद करते हैं ऐसी चीजों का और गिनते हैं कि हमारी जिंदगी में कितनी अच्छी चीजें हैं, तो भगवान हमें वो ही और देता है, भर भर के देता है। हमारे साथी लिखते हैं कि बहुत बढ़िया और खूब इबारत उकेरा है, किसी शायरा से आप कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ रहकर संगत का सर है ऐसा कहूंगी मैं। और साथ ही हमारे और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि आज का ये जो गद्यांश है श्रृंगार रस में सरोवर है और बहुत सारी शब्द जो इनको नजर आ रहे हैं, जुल्फ, निगाह, काजल, कजरा, महक, बिंदिया, पायल, चांदनी, वादा, इशारा, ख्याल, धड़कन, दिल, इनमें पिरोकर मोहब्बत के एहसास को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, श्रृंगार रस में आज की इबारत जरूर है और गीत भी बहुत ही खूबसूरत होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ, लेकिन लेकिन

ये जो गीत अभी आपने सुना कजरा मोहब्बत वाला, यहाँ पर मीना बाजार की बात की गई थी, है ना। मीना बाजार, जौहरी बाजार, इस तरह के बाजार खूब लगते थे और खूब आज भी पॉपुलर हैं, आज भी उनके नामों से हम पहचान जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जब से ये मॉल या सुपरमार्केट्स या ऑनलाइन सामान हम घर पे मंगवा लेते हैं, चाहे हमें एक चीज़ की ज़रूरत हो चाहे 100 चीज़ों की ज़रूरत हो, तो कहीं ना कहीं ये बाज़ारों का जो चलन है या बाज़ारों की परंपरा कहीं खो गई है। आप मुझे लिख भेजिए ना कि आपने ऐसे कौन कौन से बाजार घूमे हैं और क्या क्या शॉपिंग की है, कौन कौन से ऐसे बाजार हैं जो हम भूलते चले जा रहे हैं। मुझे आपके संदेशों का इंतजार है। आप मैसेजेस भेजिए तब तक ये गीत।

प्रेम पर्वत इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, और जान निसार अख्तर ने इस गीत को लिखा था, जयदेव का संगीत था, और इस गीत के लिए बहुत से संदेश मुझ तक पहुंचे। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी में ये ठंडी छांव की तरह आया है ये गीत, है ना। मैं भी इससे इत्तफाक रखूंगी बिल्कुल। साथ ही साथ हमारी एक साथी लिखती है कि ये मेरा पहला संदेश है मगर सुनती हमेशा ही हूँ, देर से आने के लिए माफी चाहूंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल देर से नहीं आए, आप इस प्रोग्राम में और बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ जब हम बात कर रहे थे बाजारों की, तो दिल्ली का लाल किला, मीना बाजार घूमा है इन्होंने, एक साथ ही लिखते हैं, और बार बार यही नाम फिर से आ रहा है, लाल किला, मीना बाजार, दिल्ली का पहाड़गंज, पालिका बाजार घूमे हैं, और बड़े मॉल में भी मीना बाजार नाम की दुकान दिखी जाती है। बिल्कुल बाजारों की अगर बात की जाए तो कुछ और बाजारों के नाम अगर आ जाएं तो मजा आ जाएगा। और वहां पर आप क्या क्या शॉपिंग करना पसंद करते हैं, या फिर आपको यही आरामदायक लगता है कि चलो ऑनलाइन हम लोग करवा लेते हैं ऑर्डर और सामान घर पर आ जाएगा। मॉल में घूमने का मजा कुछ और है, और सुपरमार्केट्स में एक ही जगह से हर तरह की चीजें खरीदने का भी मजा कुछ और है। तो आपकी राय इसमें क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। साथ ही ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम पर्वत से, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये किन पर फिल्माया गया है, आप इसका जवाब भी मुझे दें, मुझे इंतजार रहेगा। चलिए बढ़ते हमारे अगले गीत की तरफ, और आपके इन दो जवाबों का इंतजार, यानी कि प्रेम पर्वत किस पर फिल्माया गया है, और साथ ही साथ बाजारों के नाम और वहां पर क्या शॉपिंग कर सकते हैं, मुझे लिख भेजिए। चलिए

आ गले लग जा इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज। और बाजारों की बात हुई थी और खूब सारे संदेश मुझ तक पहुंच गए हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे शहर जयपुर का जौहरी बाजार खरीदारी शौकीनों के लिए स्वर्ग समान है, खरीदारी के शौकीनों के लिए। जी हाँ, और यहाँ आभूषण और कपड़ों की दुकानों से भरे पड़े हैं, आभूषण और कपड़ों की दुकान भरी पड़ी है। यहाँ साड़ियों, लहंगों और पारंपरिक जूते चप्पल का अद्भुत संग्रह मौजूद है, और साथ ही रेस्टोरेंट भी है वहाँ पर, LMB। जी हाँ, बिल्कुल घूमा हुआ है मैंने जौहरी बाजार भी। और एक और हमारे साथी लिखते हैं कि साप्ताहिक बाजार लगते हैं वहाँ जहाँ वो रहते हैं, जहाँ घूमने का आनंद ही कुछ और है। साथ ही हमारे एक साथी है जो ओडिशा से लिखते हैं कि वहाँ भी मेला लगता है।

बाली यात्रा कहा जाता है उसे, और ये मेला महानदी के किनारे लगभग 4 किलोमीटर लंबे इलाके में लगता है, और लाखों दुकानें इसमें लगती है, करोड़ों की भीड़ जुड़ती है, और बहुत सी बातें इन्होंने लिखी है कि बहुत बड़ा ये मेला लगता है, बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारा ये बड़ा घर ही तो है विविध भारती, और सभी श्रोता आपस में सखा मित्र भाई बहन हैं, फेसबुक पर हमारा पोस्टकार्ड समझ लीजिए, जिसके माध्यम से हम सुख दुख की चर्चा आपस में हालचाल पता कर लेते हैं। हमारे एक साथी ने मीना बाजार दिल्ली के बारे में चर्चा की है और काफी कुछ लिखा है कि यहाँ पर पारंपरिक कपड़े, हस्तशिल्प और काफी लजीज स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है, और ऐतिहासिक छत्ता बाजार भी लगता है यहाँ पर लाल किले के अंदर। जी हाँ, और वहाँ पहुँचने के लिए भी कैसे पहुँचा जाए, बहुत खूबसूरती से उन्होंने पूरा गाइडेंस दिया है, पूरा रास्ता समझाया है कि कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सूरत से हमारे साथी लिखते हैं कि चौरा बाजार है वहाँ पर, जहाँ पर ना घूमे तो बेचैनी सी लगती है, तो वो काफ़ी घुमक्कड़ है और घूम के आते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि शिमला का माल रोड घूमे हैं और वहां से दुपट्टे खरीदे हैं, और वहां पर लकड़ी के भी काफी सामान मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के पर्स मिलते हैं। जी हाँ, मैं काफी पहले घूमी हूँ तो काफी कुछ लिया है वहां से, की चेन वगैरह तो है ही, लेकिन साथ में पर्स भी मिलते हैं लकड़ी के, और बहुत सी दूसरी चीजें मिलती हैं माल रोड शिमला में। लखनऊ में अमीनाबाद का गड़बड़ झाला यहाँ भी घूमा हूँ, शॉपिंग भी की है, रेवड़ी और गच्चक भी खाई है। अरे वाह, सर्दियों में इसका मजा ही कुछ और होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का नाइट बाजार जो कि रात भर खुला रहता है, और वहां पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की दुकानें रहती है, एक बार जाने का मौका मिला था। और इसके अलावा दिल्ली के पास पंचकुला में भी हाट बाजार लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंचाते रहिए, और हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

लेकिन वो बात कहा मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और ओपी नैयर का संगीत। साथ ही इन गीतों को सुनते हुए हमारे एक श्रोता कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इतनी भरी चिलचिलाती धूप में ठंडे गानों की बौछार हो रही है और विविध भारती को सुनते हुए मन प्रसन्न हो रहा है और सुखद प्राप्ति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इन प्यारे संदेशों के लिए, जिस तरह से हम गीतों की बौछार कर रहे हैं ठंडक दिलाने के लिए और आपके जो संदेश है वो हम तक पहुँच कर हमें ठंडक दिला रहे हैं। बिल्कुल। और बाजारों की बात अगर हम करते हैं तो हमारे निमाड़ का एक प्रसिद्ध हाट है जो भगोरिया हाट कहलाता है, जो होली के 7 दिन पहले से लगता है। भगोरिया हाट का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये आदिवासी समाज को अपनी जड़ों से जोड़ता है। और यहाँ पर क्या क्या मिलता है, यहाँ पर पान खिलाना और गुलाल एक दूसरे पर रंग डालना सामाजिक भाईचारे को प्रगाढ़ करता है। जी हाँ, देखिए आज कितना कुछ पता चल रहा है हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं ज़्यादातर अपने लोकल मार्केट या मॉल से ही शॉपिंग करती हूँ। शॉप पर जाकर चीज़ों को हाथों से चुनना, परखना और चीज़ों को खरीदने का एहसास कुछ अलग होता है, संतुष्टि भी मिलती है इससे। और ऑनलाइन मंगाते हैं तो बहुत सारी फालतू की चीज़ें भी आ जाती है जिसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है, और नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर लेते हैं वहाँ जाकर ज़रूरत पड़ने पर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी साथी ने बहुत ही सटीक सा जवाब दिया है। साथ ही एक और बाजार के बारे में बात हो रही है। हमारे साथी लिखते हैं कि मेरा शहर वडोदरा, यहाँ गुजरात का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है और यहाँ के बाजार और मेले इस शहर की जीवंत परंपराओं और समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स भी मिलता है, कपड़े भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं और बेहतरीन डाइनिंग विकल्प मिलेंगे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और काफ़ी लंबा मैसेज दिया है इन्होंने और ज़रूर आप पढ़ें और ज़रूर यहाँ पर घूमने जाएं। साथ ही साथ एक और साथी लिखते हैं कि प्रसिद्ध बाज़ार अजमेर के डिगी बाज़ार, नाला बाज़ार, दरगाह बाज़ार, नया बाज़ार और भीलवाड़ा के भी प्रसिद्ध बाज़ार है सांगानेर बाज़ार, पवन बाज़ार, आज़ाद बाज़ार। जी हाँ बिल्कुल, मैं वाकिफ़ हूँ इससे भी क्योंकि यहाँ पर भी मैं घूमी ज़रूर हूँ। तो कितना अच्छा लगता ना, अलग अलग जगह की जानकारियाँ मिल रही हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि साप्ताहिक घाट तो हर जिला गांव में लगते हैं, बिहार के बांका जिले में एक जगह कपड़ों की हाट लगती है जहां हाथ के बने हुए कपड़े मिलते हैं। महाराणा हाट बुनकरों द्वारा बनाए हुए सिल्क और सूती कपड़े गमछे वो ले लेती हैं। भोपाल हाट भोपाल में एक प्रमुख बाजार है जहां विभिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं। यहां जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा और जूट उत्पादों जैसे स्थानीय रूप से बने सामान मिलते हैं। और यहां पर काफी सारे हस्तशिल्प और वैकल्पिक चिकित्सा विकल्पों का पता लगाने के लिए एक शानदार जगह बताता है। जी हाँ, यहां पर जाकर

आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो बहुत ज्ञानवर्धक मैसेज मुझ तक पहुँच रहे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ और आपके मैसेजेस पर मैं आती हूँ।

फिल्म मोहरा से गीत अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और पंकज उदास की आवाजों में। इंदिवर ने इसे लिखा था और विजू शाह का संगीत था। आपके संदेशों तक पहुंची हूं मैं, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहती हूं कि कौन कौन से शब्द और कितने गीत आपके लिस्ट के हमारे साथ मैच किए, ये भी तो हमें जो बताइए। बाजारों की बातें तो चलती है, चलती रहेगी। चलिए बाजारों की बात चलिए तो कुछ उस बारे में बताया जाए कि एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर इंदौर में सराफा बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ये राजबाड़ा के नजदीक है, जिसमें ज्वेलरी, फैशन के सामान के साथ कचौड़ी, समोसे, मिठाई सभी कुछ मिलता है। बहुत ही स्वादिष्ट, और खरीदारी का मजा तो बाजार में ही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसा बाजार लगता है जहां मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है। जी हाँ, ये भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि बाजार तो अब गांवों तक पहुंच रहे हैं, फिर शहरों की बात ही क्या। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि अमृतसर में गुरुद्वारे में दर्शन किए उन्होंने, गोल्डन टेंपल में, और उसके आसपास काफी घूमे हैं। वहां पर अमृतसरी नान और लस्सी भी पी है, वहां का पापड़ बढ़िया भी, क्या बात है, स्वाद आ जाता है। बिल्कुल, अमृतसरी नान वहां का बहुत ही स्वादिष्ट है। राजस्थान के उदयपुर जिले में बड़ा बाजार है, जहां हस्तशिल्प, अच्छी डिजाइन की मोजड़ियां, सांगानेरी प्रिंट के कपड़े, लकड़ी से निर्मित वस्तुएं भी मिलती है। हमारे एक और साथी हमें लिखते हैं कि हमारे शहर कटक में चांदी की महीन कारीगरी की जाती है, तारकशी इसे कहते हैं शायद, और लोग दूर से चांदी के कोणार्क, चक्र आदि महीन वस्तुएं खरीदते हैं। दूर से आते हैं और ये वस्तुएं यहां से खरीद के जाते हैं। साथ ही हमारे एक और साथी ने लिखा है कि कुछ समय पहले वे नैनीताल गए थे और वहां के मशहूर मार्केट माल रोड, बड़ा बाजार, भोटिया मार्केट से गरम स्वेटर, बैग्स, बैंगल्स और शोपीस खरीदे थे। बहुत भीड़ वाला मार्केट था वो। इटारसी में भी एक मार्केट है, बाजार है, जिसे पटवा बाजार कहा जाता है, शायद अगर मैं सही से इसे बता पा रही हूं तो। और यहाँ पर शादी के काफी सारे सामान मिलते हैं, शादी की शॉपिंग की जाती है और श्रृंगार का भी काफी कुछ सामान मिलता है। ऐसे ही भोपाल में गौहर महल है, जहां पर लगभग पूरे साल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित क्राफ्ट्समैन को प्रोत्साहन देने के लिए मेला लगाया जाता है, और ये जगह तालाब के पास होने से बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही पीपली गांव, जो कि पूरी जिले में है, वहां पर भी काफी प्रसिद्ध रंगीन छतरियां, गृह सज्जा का सामान और कैनोपी से बने जो चीजें हैं वो मिलती है। कैनोपी खरीद कर लेकर जाते हैं लोग बाग, लैंप कवर आदि। जी हाँ, बाजारों की बात की जाए तो भिंडी बाजार बॉम्बे, इसका भी जिक्र आया है। हमारे श्रोता लिखे हैं कि बहुत पहले यहाँ पर आए थे और घूमे थे, लेकिन इसका नाम क्यों पड़ा है वो कुछ समझ नहीं आया। काफी सारे एंटीक्स यहाँ पर मिलते हैं, और काफी लंबा मैसेज है तो मैं बहुत लंबा ये पूरा मैसेज नहीं पढ़ूंगी, लेकिन हाँ, भिंडी बाजार को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का बेगम बाजार बहुत मशहूर है, यहाँ छोटी से छोटी चीज यानी कि सुई से लेकर बड़े से बड़ा सामान भी मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे बाजारों के बारे में आज पता चला मुझे। और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

एक अली इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में, और आप सबने इस गाने की डिटेल्स तो लिखी दी है मुझे। बाजारों की बातें तो हो ही रही है, तो ऐसे में एक हमारे साथी लिखते हैं कि लखनऊ का अमीनाबाद एक अच्छा बाजार है, सस्ता महंगा हर कैटेगरी की दुकानें हैं यहाँ पर, कपड़े बर्तन जूते सोने चांदी, अच्छे रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर और हर तरह के सामान मिलते हैं। स्कूल की ड्रेसेस आदि भी बहुत मिलती है यहाँ पर, उसका भी बड़ा बाजार है। और साथ ही साथ बाजारों की बात की जाए, जी हाँ, कहने को गोरखपुर में हिंदी बाजार माया बाजार है, लेकिन सिंगार के सामान कपड़े और आभूषण हिंदी बाजार में और इलेक्ट्रॉनिक के सामान माया बाजार में मिलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं दिल्ली की करीब करीब सभी मार्केट में घूमी हूँ, चांदनी चौक की गलियों में बहुत घूमी हूँ मैं।

गानों की बात की जाए तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अभी तक मेरे बताए कोई भी गीत नहीं आए हैं और उन्हें इस चीज़ का दुख हो रहा है। लेकिन देखिए ना, एक से बढ़कर एक गीत आ रहे हैं और साथ ही साथ कितनी सारी बातें हो रही है, ये क्या काम है। आप हमारे साथ बने हैं और हम आपके साथ बने हैं। विक्टोरिया मार्केट की बात भी हुई है यहाँ पर, जिसमें पहले चाट की दुकानें थी लेकिन अब किताबों का मार्केट है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गानों की कोई लिस्ट उन्होंने जारी नहीं की है, बस वो हमारे साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं और जो भी गीत बज रहे हैं वो बस बड़े अच्छे मन से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कश्मीर की कली का शानदार गीत, इसकी प्रशंसा की है और ये भी लिखा है कि शम्मी कपूर का अनोखा अंदाज देखने को मिलता है इस खासकर इस गीत में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गीत तो हम एक से बढ़कर लेकर आए हैं आपके लिए और अब इसी फहरिस्त में ये अगला गीत।

फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। और साथ ही आपके बहुत खूबसूरत प्यारे मैसेजेस मुझ तक पहुँचे हैं, वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

सुरीला सफर का वक्त अब खत्म होने को है, लेकिन आपके प्यारे प्यारे संदेश अब तक है मेरे पास। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज पूरे 1,000 कमेंट तक पहुंचने वाले थे, लेकिन थोड़े से रह गए, लेकिन किसी दिन इतने सारे कमेंट्स के साथ जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गोरखपुर में गोलघर भी है, नौका विहार भी है, भारत का सबसे लंबा स्टेशन रामगढ़ ताल भी घूमकर आए हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, SH बिहारी के लिखे बोल बहुत ही सीधे और दिल में उतरने वाले होते हैं, और ये जो गीत अभी इन्होंने सुना ये बहुत ही अच्छा लगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने प्यारे और मीठे संदेशों के लिए। और मैं अनुराधा इजाजत चाहती हूँ आज इस प्रोग्राम से, जिसका नाम है सुरीला सफर। आप बने रहें विविध भारती के संग। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 30वीं कड़ी।

0: राष्ट्रीय सभा का 21वां अधिवेशन 27 दिसंबर 1905 को बनारस में हुआ। नरमपंथियों के नेता, नामदार और प्रखर देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगस्त महीने से बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन भड़का हुआ था। उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। कुछ रियासतों के साथ ब्रिटिश समर्थक प्रतिष्ठित लोगों ने खुशी जताते हुए उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, इस वाराणसी अधिवेशन में उनके भारत आगमन पर आनंद व्यक्त करते हुए इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रविंद्रनाथ को कांग्रेस की यह राजभक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे लिखते हैं,
1: राजपुत्र आए, मुल्क के सभी पात्रों के पुत्रों ने उन्हें घेर लिया। अन्य कोई भी वहां प्रवेश न पा सका। इस घेरे पर कोतवाल पुत्रों का पहरा लग गया, इसलिए उन्हें शिरोपा प्राप्त हुआ। इसके बाद ढेर सारे पटाखे छूटे और राजपुत्र जहाज पर चढ़कर वापस चले गए।
2: फिर भी इस अधिवेशन से राजसत्ता के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली नेताओं की नरम भाषा धीरे धीरे बदलने लगी। बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत में ही अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों की खबरें देश भर में पहुंच चुकी थीं। इस आंदोलन में बंगाली जनता के पीछे देश की संपूर्ण भारतीय जनता खड़ी है, इसका एहसास इस अधिवेशन से हुआ। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर बंगाल के विभाजन को रद्द करने का आह्वान ब्रिटिश राजसत्ता से किया गया।

वंदे मातरम की दृष्टि से यह अधिवेशन स्मरणीय रहा। रविंद्रनाथ की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी की बेटी सरला देवी चौधरानी और उनके पति रामभुज दत्त इस अधिवेशन में उपस्थित थे। सरला देवी का हाल ही में विवाह हुआ था। भगिनी निवेदिता और उनकी सहकर्मी अबला बसु भी अधिवेशन में उपस्थित थीं। अधिवेशन शुरू हुआ और दर्शकों में से आग्रह होने लगा कि सरला देवी चौधरानी वंदे मातरम गीत गाएं। सरला देवी चौधरानी एक उत्तम कवियत्री और गायिका भी थीं। श्रोताओं के इस आग्रह से अध्यक्ष नामदार गोखले चिंतित हो गए। बंग भंग विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि के कारण वंदे मातरम शब्दों के उच्चारण पर भी जिलाधीश ने प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे समय में मंच से ही वंदे मातरम का गायन होना नरमपंथी गोखले जी को खतरनाक लगने लगा। अंततः श्रोताओं

भंग विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि के कारण वंदे मातरम शब्दों के उच्चारण पर भी जिलाधीश ने प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे समय में मंच से ही वंदे मातरम का गायन होना नरमपंथी गोखले जी को खतरनाक लगने लगा। अंततः श्रोताओं के आग्रह के कारण उन्होंने सरला देवी से कहा कि वंदे मातरम की शुरुआती कुछ पंक्तियां ही गाएं, परंतु सरला देवी ने अपने मधुर स्वर में वंदे मातरम गाना शुरू किया और पूरा गाकर ही समाप्त किया।

0: वंदे मातरम की घोषणाओं से सारा अधिवेशन गूंज उठा। इसी समय सरला देवी ने ये गीत गाते हुए सप्तकोटि कंठ इन शब्दों की जगह त्रिशतकोटि कंठ शब्द बदल दिए। वंदे मातरम के शब्दों में किया गया ये पहला बदलाव था। इस अधिवेशन में एक और ऐतिहासिक घटना घटी, वो ये कि भारत के पहले राष्ट्रध्वज का प्रदर्शन इसी अधिवेशन में पहली बार हुआ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राजसत्ता से जूझते समय अपनी स्वतंत्र पहचान वाला भारत का राष्ट्रध्वज होना चाहिए, ये विचार सन 1900 के बाद सामने आया। 1905 में बनारस में हुए इस कांग्रेस अधिवेशन में पास के एक अलग मंडप में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी के बीचों बीच भारत का कहा जाने वाला पहला ध्वज जानबूझकर प्रदर्शित किया गया था। विशेष बात ये कि पूरी तरह भारतीय संकल्पना वाले इस ध्वज की मूल परिकल्पना जन्म से विदेशी और मन से पूरी तरह भारतीय बन चुकी मार्गरेट नोबल यानी भगिनी निवेदिता की थी।
1: लाल रंग के इस वर्गाकार ध्वज पर बीच में इंद्र के वज्र का पीले रंग का चित्र था। इस चिन्ह के एक ओर वंदे और दूसरी ओर मातरम ये बांग्ला लिपि के शब्द थे। ध्वज के किनारों पर 108 पीली ज्योतियां थी। यह ध्वज उस प्रदर्शनी में केवल प्रदर्शित हुआ, उसे कहीं भी फहराया नहीं गया, इसलिए इसे पहले ध्वज का दर्जा नहीं मिल सकता। फिर भी तैयार किया गया यह आद्य राष्ट्र ध्वज ही माना जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन रहे वंदे मातरम शब्दों का इस पहले ध्वज पर उपयोग किया जाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। वंदे मातरम शब्दों का महत्व और सामर्थ्य जैसे जैसे सामान्य जनता के ध्यान में आने लगा, वैसे वैसे अंग्रेज सरकार को उसका उपद्रव महसूस होने लगा। सरकार ने वंदे मातरम गाने या शब्द उच्चारने पर

0: प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के कारण वंदे मातरम का प्रभाव और बढ़ने लगा। भंग भंग विरोधी आंदोलन को वंदे मातरम, स्वदेशी का समर्थन, विदेशी माल का बहिष्कार, इन बातों ने और अधिक बल दिया।
1: अगस्त को टाउन हॉल में हुई सभा के कारण बंगाल के विभाजन का आम जनता में जो विरोध था, उस सभा में उसकी हुई तीव्र निंदा और स्वदेशी का आग्रह, ये बातें पूरे देश में फैल गईं। उसमें से पहली बड़ी चिंगारी महाराष्ट्र के पुणे में गिरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में बंगाल के विभाजन पर और कर्जन पर अत्यंत कठोर शब्दों में टीका की थी। स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर उस समय पुणे में फर्ग्यूसन महाविद्यालय में पढ़ रहे थे। 1 अक्टूबर को एक सभा बुलाकर युवा सावरकर ने पुणे के लोगों से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने का आह्वान किया।
0: इस सभा में समाचार पत्र काल के संपादक शिवराम महादेव परांजपे और नची केड़कर उपस्थित थे। इस सभा के बाद बाहर गांव से लौटे लोकमान्य तिलक तक ये बात पहुंची तो उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली और बड़े पैमाने पर करने का सुझाव दिया। 7 अक्टूबर 1905 के दिन लकड़ी पुल के पास मुठा नदी के किनारे पूरे पुणे में घूमकर इकट्ठा किए गए और जुलूस के साथ
2: नंबर एक पर है।
3: मध्यप्रदेश ने अपने सभी प्रकार के किसानों के साथ बीते समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,04,31,000 मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन अर्थात खरीदी की गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये गेहूं खरीदने के किसानों की संख्या में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक लंबे समय तक किसी राज्य ने गेहूं खरीदी की व्यवस्था जारी रखी तो वो भी मध्य प्रदेश। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इतने आश्वस्त करना चाहूंगा, किसान कल्याण के सारे काम सरकार लगातार करती रहेगी।
2: विशय शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ को आज कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों की 5-5 दिन की रिमांड मांगी, जिसे जज ने मंजूर कर लिया। गिरिबाला सिंह पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। कल 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें भोपाल स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में ट्विशा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। भोपाल में एसटीएफ ने कल रात गांधीनगर के एक मकान में छापा मारकर अवैध कफ सिरप फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और 10 लोगों को हिरासत में लिया। मौके से ऑफ कप ब्रांड की करीब 1.5 करोड़ रुपए की नशीली सिरप, 700 से ज्यादा पेटियां और पैकेजिंग मशीनें जब्त की गईं। मकान मालिक फरार है और एसटीएफ पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि फैसला सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाया जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि देरी से याचिकाकर्ताओं को गंभीर नुकसान हो सकता है। जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाकर अपलोड करना जरूरी होगा। रीवा में आज जल जीवन मिशन के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए। सिरमौर चौराहा स्थित कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद जनार्दन मिश्रा ने की। कार्यशाला का मकसद ग्राम पंचायतों को नल जल योजनाओं का संचालन सौंपना और सरपंचों तथा सचिवों के साथ अनुबंध प्रक्रिया पूरी करना था। भारत के लिए पेट्रोलियम लेकर आ रहा तेल टैंकर निसोस कैरोस हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है और उसके 3 जून तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। ये जहाज 21 मई को शारजाह से रवाना हुआ था और आज सुबह उत्तरी अरब सागर में देखा गया। ईरान ने इस महीने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क वसूलने की घोषणा की है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने अवैध बताया है। प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का शेड्यूल राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 24 जून से शुरू होकर 28 जून तक चलेंगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 12:30 बजे तक आयोजित होंगी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में नौतपा के बीच मौसम का अजब रंग देखने को मिल रहा है। एक तरफ खजुराहो में 46.5 डिग्री तापमान के साथ भीषण गर्मी का कहर है तो दूसरी तरफ ग्वालियर और मुरैना में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर समेत 6 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट और 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि कल से राहत मिलने के आसार है। वहीं 30 मई से 1 जून के बीच प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आंधी

बारिश और ओले गिरने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले के आष्टा में आगामी जून माह में 2 से 8 जून तक राष्ट्रीय स्तर का संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बैतूल में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।

0: दोपहर समाचार के साथ। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रूपये से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
1: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी।

0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। PM सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान

0: कई राज्यों में लू की संभावना और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो।
1: फिल्म चोरी चोरी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

0: झनक झनक पायल बाजे, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में। हसरत जयपुरी ने से लिखा, वसंत देसाई का संगीत था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

गीत गाया पत्थरों ने, ये था फिल्म का नाम। किशोरी अमोनकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे विविध भारती से।

0: लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे मेरे महबूब इस फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद ने संगीत दिया इस गीत का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

फिल्म प्यासा से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन का संगीत था।

0: फिल्म बंदिनी से आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा था और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: आप सभी सुनने वालों को आपकी सखी चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, जिसे हम एक बार गवा दें तो फिर वापस कभी नहीं पा सकते? सखियों, वो अनमोल पूंजी है समय। दुनिया भर की दौलत लुटाकर भी हम गुजरा वक्त नहीं खरीद सकते। बीता हुआ एक भी पल कभी वापस नहीं आता। सखियों, हम भी आपके समय की कीमत को समझते हैं। आप सब लगातार प्रयास करती हैं हमारे साथ फोन पर जुड़ने के लिए। आप अपना सारा काम छोड़कर लगातार अपना समय हमें देती हैं। और देखिए ना, स्टूडियो के फोन की घंटी लगातार बज रही है, तो देखें पहला कॉल कहाँ से आया है और किस सखी ने हमें ये कॉल किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं संगीता फुलमाली बात कर रही हूँ, इंदौर से, न्यू चित्रा नगर वेलोसिटी के पीछे से।
0: संगीता जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मेरा बुटीक है, मैं ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कटिंग मास्टर है, जो रेडीमेड फ्रॉक उनकी कटिंग करते हैं, फैंसी।
0: तो आप दोनों का काम अलग अलग रहता है या एक साथ मिलकर काम करते हैं आप?
1: जी, वो मतलब मार्केट भी जाते हैं तो वहीं पे दुकान पे मतलब कटिंग वगैरह करते हैं, कारीगर उन बनाते हैं माल।
0: अच्छा।
1: और मैं घर पे ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ।
0: तो आप ऑर्डर्स किस तरह लेती हैं, किस तरह से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगी हमें?
1: जी, मेरा तो गिराकी काम है मैम, मैं मतलब ब्लाउज वगैरह लेडीज होनी आती है बनवाने के लिए। हाँ, सूट सलवार राजस्थानी पोशाक सब बना लेती हूँ मैम।
0: आपने कहीं से सीखा था या?
1: जी, सीखा था मैम, और मेरे पति भी सीखे हुए पहले से, तो उन्होंने और मुझे ज्यादा ट्रेन कर दिया।
0: और पिछले कितने सालों से आप इस काम को कर रही हैं?
1: मैं कम से कम 6-7 सालों से कर रही हूँ।
0: अच्छा, इसके अलावा हाँ। जिस तरह से आजकल बैग बनाने का काम भी बहुत चल रहा है, ऐसे काम भी करती हैं सिर्फ जो महिलाओं की पोशाकें हैं वही बनाती हैं आप?
1: सिर्फ पोशाक होने ना, वही बनाती हूँ ब्लाउज सब।
0: अच्छा, आपके अलावा घर में और कौन कौन है आपके?
1: मेरे पति है और मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है 10 साल का पूरा कंप्लीट।
0: अच्छा, और काम करते करते आप रेडियो भी सुनती रहती हैं?
1: जी मैम, रेडियो तो मैं कई सालों से सुन रही हूँ, कम से कम 10-15 साल से ज्यादा ही हो गए, और मेरा पहली बार कॉल लगा है इसमें।
0: आपको बहुत बहुत बधाई, आपका कॉल लग गया। अब ये बताइए कि आप आज गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: जी, थानेदार फिल्म का, और भला क्या मांगू मैं रब से, मुझे तेरा प्यार मिला।
0: आपकी
1: मैं
0: पसंद
1: का नाम लेना चाहूंगी मैम।
0: हाँ जी मैम, ले लीजिए
1: उनका।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: आप कौन बात कर रही हैं?
1: हम प्रेरणा प्रलखन लरे नांदेड़ से बात कर रहे थे।
0: नांदेड़ से प्रेरणा बात कर रही हैं?
1: हाँ हाँ हाँ।
0: प्रेरणा जी कैसी हैं आप?
1: हाँ बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेरणा जी मुझे बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं घर पे हूँ, मेरे बीए तक पढ़ाई हुई है
0: जी,
1: और मुझे अभी अंधत्व आया है। मैं 100% अब अंधी हो गई हूँ। उसके बाद मैंने एक्यूप्रेशर एंड मसाज का कोर्स किया। अभी मैं हजारों पेशेंट अच्छे करती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: घर का सारा काम भी करती हूँ।
0: देखिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि कई बार हमारे अंदर ऐसी कोई कमी आ जाती है चाहे अनचाहे, लेकिन उससे उबर कर हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाते हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खुद को भी संभाल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं और कितने अन्य लोग हैं जिन्हें आप अपनी सेवाएं दे रही हैं।
1: हाँ बहुत सारे लोग गए, उनकी बहुत पीड़ा मैंने बहुत अच्छी तरह से ठीक किया उनको।
0: तो किस तरह का काम होता है आपका बताएंगी?
1: कौन से भी पेशेंट आए, मैं लेडीज को ही देखती हूँ और स्पर्श किया तो किस नाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ में आता स्पर्श करने के बाद ही।
0: सिर्फ नाड़ी देखकर तो आप सिर्फ नाड़ी देखकर आप रोग का पता लगा लेती हैं?
1: हाँ हाँ, नाड़ी देखकर सिर्फ मैं स्पर्श कर सकती हूँ। उसके बाद का कोई मुंह टेढ़ा होना, अर्धांग वायु, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, ऐसे सब मैंने ठीक किए हैं।
0: और जो रोगी होते हैं ना, ठीक होने में कितना समय लग जाता है?
1: ज्यादा दिन से रोगी है तो ज्यादा दिन लगेंगे, कम है तो कम लगेंगे। एक लड़का मेरे पास आया था, 6.5 साल का बच्चा था, वो जन्म से ही कभी चलता ही नहीं था, लेकिन मैंने उसको 1.5 महीने में अपने पैरों पे खड़ा किया और 3 महीनों में वो काठी के सहारे चलना सिखाया।
0: ये तो

0: बहुत अच्छी बात है। उन माता पिता को कितना अच्छा लगा होगा आपके उपचार के बाद में कि जो बच्चा चल नहीं सकता था उसे आपने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया।
1: बहुत उनको अच्छा लगा, उन दोनों ने बहुत दुआई दी।
0: उपचार के लिए आप कोई दवाइयाँ देती हैं या
1: नहीं? दवाइयाँ नहीं, मैं सिर्फ अपने स्पर्श से नाड़ी देखती हूँ और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाती हूँ और मसाज करती हूँ।
0: आप रेडियो किस वक्त सुनती हैं फिर, क्योंकि मरीजों को देखने के बाद में आपको कब समय मिलता है रेडियो सुनने के लिए?
1: वो चालू ही रहता है रेडियो, क्योंकि मैं घर पे ही मरीज को देखती हूँ, दिखाई नहीं देता इसलिए मैं कभी नहीं जाती बाहर।
0: अच्छा।
1: घर का खाना बनाना, बच्ची को स्कूल भेजना, पेशेंट देखना, काम करते करते ये सुनती भी हूँ और काम भी करती हूँ।
0: आपकी बच्ची कितनी बड़ी है?
1: मेरी बच्ची अभी 8 साल की है।
0: तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको उसे भी संभालने के लिए?
1: नहीं, मुझे कुछ मुश्किल नहीं होती, अंदर से मुझे बहुत सारी निसर्ग ने शक्ति दी है। बीच में ही ऐसे अंदर तो आने के बाद कोई भी ऐसे ही हो जाता, लेकिन मैं अपने हिम्मत से खड़ी हुई और मैंने 2 साल की बच्ची अडॉप्ट की वाली है।
0: प्रेरणा जी, आपका जो नाम है आप इसे सार्थक कर रही हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपकी कहानी सुनकर। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं?
1: मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है यादों की बारात का, चुरा लिया है मैंने ये दिल को।
0: आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

0: अंतरा बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली जी, बताइए कौन बोल रही हैं और कहां से आप बात कर रही हैं?
1: मैं उत्तराखंड से पुष्पा डोबरियाल बोल रही मैम।
0: पुष्पा डोबरियाल
1: जी,
0: उत्तराखंड से बात कर रही हैं?
1: जी मैम।
0: उत्तराखंड के कौन से शहर से बात कर रही हैं?
1: देहरादून शहर से बोल रही मैम।
0: अरे बहुत खूबसूरत शहर है आपका।
1: जी मैम, थैंक यू। और मैम तो आपके प्रोग्राम सारे सुनते हैं मैम।
0: मैडम हमें देहरादून के बारे में कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है और ये ऐसा शहर है इस समय पर खास तौर पर वहाँ चहल पहल रहती होगी क्योंकि जब गर्मी से लोगों को
1: आजकल तो बहुत ट्रैफिक इतना है मैम कि बहुत मतलब यात्री कई कई टूरिस्ट आते रहते हैं। मसूरी है यहाँ से और ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला और हरिद्वार, यहाँ से सारे आते रहते हैं यहाँ पे।
0: आपने जितनी भी जगहों के अभी नाम लिए ना, ये सब वो जगह हैं मध्य भारत में और उत्तर भारत में गर्मी बहुत तेज हो जाती है ना, तो उस गर्मी से राहत के लिए ऐसी जगह पर ही जाना लोग पसंद करते हैं। और वहाँ का जो वातावरण है ना,
1: मसूरी हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया और हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रखे मैम आजकल।
0: अच्छा आप बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं तो घर पे ही रहती मैम।
0: पुष्पा जी, घर पर समय काटने के लिए आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है?
1: मेरे को तो साफ सफाई अच्छी लगती है मैम और रेडियो सुनना।
0: अच्छा, रेडियो के कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सखी सहेली, हेलो फरमाइश।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: पतंग फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: तो आपको सुनाते हैं पतंग फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैडम।
0: हाँ बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: हम आरती वर्मा बोल रहे हैं कानपुर से।
0: कानपुर से आरती जी बात कर रही हैं। आरती जी,
1: हाँ
0: कानपुर में तो बहुत गर्मी होगी ना इस समय?
1: हाँ मैडम, गर्मी तो पड़ रही बहुत।
0: और अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही होंगी बच्चों की?
1: हाँ छुट्टी चल रही है।
0: तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना पड़ता होगा ताकि वो धूप में जाकर परेशान ना हो जाएं।
1: हाँ मैडम जी, घर ही में रखते हैं, निकलने नहीं देते, बाहर बहुत धूप रहती है, इसी वजह से अंदर रखते हैं बच्चों को।
0: आरती, आप क्या करती हैं बताइए?
1: हम घर ही में रहते हैं मैडम, घर ही के काम काज करते हैं।
0: अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: हम नगीना का सुनेंगे, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा।
0: नगीना फिल्म का ये गीत आपको सुना रहे हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं त्रिपुरा से, मैं बुल्टी दास बोल रही हूँ।
0: बुल्टी दास त्रिपुरा से बात कर रही हैं।
1: जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ।
0: जी, मुझे बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं?
1: जी जी मैम, सुनती है। हेलो सहेली, हेलो फरमाइश।
0: इसके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: एक बेटा, दो बेटी।
0: एक बेटा और दो बेटियां हैं आपकी?
1: हस्बैंड।
0: अच्छा, मुझे बताइए त्रिपुरा जो शहर है, इसका मौसम कैसा रहता है? यहाँ सर्दी गर्मी ज्यादा होती है या बारिश ज्यादा होती है?
1: बारिश बारिश बारिश होती है मैम, ज्यादा बारिश।
0: तो अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर वहाँ बहुत बारिश होंगी।
1: जी मैम, बहुत बारिश चलते हैं।
0: सखी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम अंधा कानून, गाने का बोल है रोते रोते हंसना।
0: रोते रोते हंसना सीखो, ये अंधा कानून फिल्म का गाना है जो आज आप सुनना चाहती हैं।
1: जी
0: आपको सुनवाते हैं बुल्टी दास जी, आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: सहेली अपना नाम बताइए, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से आपने कॉल किया है हमें?
1: मेरा नाम मोनिका साहू है, मैं बोरिया खुर्द रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: मोनिका साहू जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैं बीएससी फोर्थ सेम में हूँ अभी और मेरे अभी फोर्थ सेम के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं।
0: अच्छा, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं और आपको रेडियो सुनने के लिए समय मिल जाता है अपनी पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज वगैरह सबसे?
1: हाँ, कभी कभी नहीं मिल पाता तो फिर मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ, और जब मिलता है फोन तो मतलब या फिर नहीं मिलता घर में सुनती हूँ। हमारे घर में हम लोग सभी रेडियो में सुनते हैं विविध भारती।
0: और मोबाइल पर जब आप सुनती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुनती हैं?
1: नहीं, मैं ज्यादातर तो यूट्यूब पे ही सुनती हूँ क्योंकि उसमें लाइव और सारे वीडियोस मिल जाते हैं मुझे मेरे सुनने वाले पे, जैसे सखी सहेली, हेलो फरमाइश, ये सब मैं सुनती हूँ।
0: तो जो पुराने प्रोग्राम है उन्हें सुनती हैं या लाइव सुनती हैं यूट्यूब पर आप?
1: लाइव भी सुनती हूँ और पुराने प्रोग्राम भी सुनती हूँ मैं।
0: आप लाइव सुनना चाहती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए आप सभी प्रोग्राम सुन सकती हैं, विविध भारती के भी और प्रसार भारती के सभी कार्यक्रम आप सुन सकती हैं।
1: हाँ।
0: और आप बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी?
1: अभी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी सिर्फ दो ही एग्जाम हुए हैं और बाकी के अभी बच्चे हैं।
0: अच्छा, और इसके बाद में आपके जो भविष्य की योजनाएं हैं वो क्या हैं? इसके बाद आप और आगे पढ़ना चाहती हैं या कोई नौकरी वगैरह करना चाहती हैं?
1: मैं वैसे तो टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अभी भी मेरे भाई को और मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ।
0: तो ये आप ट्यूशन्स लेती हैं या इसी तरह बस यूं ही मदद करने के लिए आप पढ़ाती हैं?
1: नहीं, मैं ट्यूशन्स नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही कभी किसी को डाउट हो जाता है तो उन्हें क्लियर करती हूँ, और अपने लिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को किसी चीज़ के बारे में अच्छे से बताना और समझाना।
0: बहुत अच्छा काम होता है एक शिक्षक का, और आप इस काम को चुनना चाहती हैं, बहुत सारे लोगों को राह दिखाएंगी, और शिक्षक वो काम है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक खुद जलकर रोशनी फैलाता है। और आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे मासूम पिक्चर का लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा सॉन्ग सुना।
0: क्या बात है, आपकी उम्र के हिसाब से जो छोटे बच्चों वाली सोच है और जैसी पसंद है आपकी, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है मासूम फिल्म से।
2: ला।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: नमस्ते, मुझे बताइए आप कौन सखी बात कर रही
1: जी।
0: हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
0: इंदौर से जीनत परवीन बात कर रही हैं।
1: जी
0: जीनत जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: हाउस वाइफ मैम।
0: तो घर पे करने के लिए काम बहुत सारे होते हैं, जो शायद बाहर महिलाएं जाती हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा काम एक घर में काम करने वाली महिला को होते हैं। और आपके घर में कौन कौन है जीनत जी?
1: जी हस्बैंड है, मैं हूँ और बच्चे हैं, तीन लड़के। सबसे छोटे वाला 13 साल का है बस, और एक 15 साल के और एक 21 साल का।
0: तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तीनों?
1: जी दो पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े वाले उनके पापा के साथ जाते हैं ड्यूटी।
0: तो अपने पिताजी के काम है उसमें वो हाथ बटाते हैं।
1: जी
0: आपके पति क्या काम करते हैं?
1: वो आरओ का प्लांट पे ये बनाते हैं, जो उस पर फैक्ट्रियों में लगते हैं ना बड़े बड़े।
0: जी
1: तो बाहर का काम है सब, अमेरिका और यहाँ जाते हैं तो बड़े प्लांट बनते हैं।
0: और आप बताइए, आप घर में समय काटने के लिए क्या क्या करती हैं?
1: अपना काम निपटा लेती हूँ 1 बजे तक।
0: हाँ
1: और रेडियो सुनती रहती हूँ, सुबह से चालू जाता है रेडियो 7 बजे से, तो रात के 11 बजे तक चलता है। और फिर अपने काम निपटा के 3 में रेस्ट करती हूँ, तो अपने लिए समय निकालती हूँ थोड़ा।
0: जब आप अपने लिए समय निकालती हैं तब आपका पसंदीदा काम क्या होता है?
1: नहीं बस यही रेडियो सुनती रहती हूँ, और उसमें कभी नींद आ जाती है थोड़ी देर लेट जाती हूँ बस।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: शान पिक्चर का सुनूंगी, यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा।
0: सुनवाते हैं आपको शान फिल्म का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं और कहां से आपने हमें कॉल किया है?
1: हाँ, मैं सोनू बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: भोपाल मध्य प्रदेश से सोनू बात कर रही हैं।
1: जी
0: सोनू जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में ही रहती हूँ मैं, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ और एक ब्यूटिशियन भी हूँ।
0: अच्छा, ब्यूटिशियन का काम भी करती हैं और आपको खाली समय में रेडियो सुनना पसंद है?
1: हाँ, रेडियो तो पूरे ही टाइम सुनती हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक।
0: आप ये बताइए, आपका जो ब्यूटी पार्लर है वो आपने घर में ही किसी हिस्से में बनाया है या कहीं अलग से आपका ब्यूटी पार्लर है?
1: घर में ही है,
0: अच्छा,
1: साइड में बनाया है शॉप जैसा।
0: अच्छा, और कितने समय से आप अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं?
1: हाँ, पार्लर चलाते हुए तो 22 साल हो गए मेरे को।
0: तो फिर तो आपका बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ होगा।
1: जी, सारे काम कर लेती हूँ, इस टाइम के भी, पुराने टाइम के भी, सभी आता है मुझे।
0: अपने काम में अपनी एक पहचान बनाना ये बहुत जरूरी होता है और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को सजा संवार रही हैं, खूबसूरत बनाती हैं।
1: जी,
0: और गीत किस तरह के सुनती हैं, संगीत किस तरह का पसंद है आपको? जैसे विविध भारती के सारे ही प्रोग्राम सुनती हैं, तो कौन से?
1: विविध भारती के तो सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पुराने गाने पसंद है मुझे।
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम
1: सहेली फेवरेट है मेरा, हेलो फरमाइश फेवरेट है।
0: ये बताइए कि गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: 20 साल बाद पिक्चर का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। अनुराधा जी और मोहम्मद अजीज की आवाज में है ये, और मिथुन वाली 20 साल बाद पिक्चर है ये।
0: ठीक है, आपको सुनवाते हैं ये गीत, हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं खुशी कौशल बात कर रही हूँ इंदौर से।
0: इंदौर से खुशी कौशल बात कर रही हैं?
1: जी हाँ।
0: आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है और खास तौर पर इंदौर जाना जाता है अपनी साफ सफाई के लिए।
1: जी, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंदौर शहर में रहती हूँ। मतलब प्राउड होता है इंदौर का नाम लेके।
0: इंदौर का जब हम नाम सुनते हैं तो एक बहुत साफ सुथरी जगह की छवि हमारे जहन में आती है, और आप जैसे जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं, इसका बहुत बड़ा सहयोग है कि ये शहर इतना सुंदर है और साफ भी है।
1: जी।
0: खुशी, आप क्या करती हैं?
1: मैं स्टूडेंट हूँ अभी 10th क्लास में।
0: 10वीं में जाएंगी, मतलब 9वीं की आपने परीक्षा दी है अभी।
1: हाँ।
0: तो अब 10वीं के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी।
1: जी मैम।
0: क्योंकि 10वीं वो पहला पड़ाव होता है जहाँ से आपकी पढ़ाई की नींव डलती है।
1: जी।
0: और फिर इसके बाद में ही आपको अपना करियर चुनने के लिए आगे और क्या पढ़ना है इसमें बहुत मदद मिलती है।
1: जी मैम।
0: खुशी, आप क्या करना चाहती हैं आगे चलकर, क्या बनना चाहती हैं?
1: मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी।
0: बहुत अच्छा सपना आपकी मम्मी ने देखा है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर एक दिन बहुत बड़ी कामयाब डॉक्टर बने। और मुझे बताइए कि पढ़ाई आप करती हैं, फिर आप रेडियो सुनती हैं, तो ये आपकी पढ़ाई में बाधा तो नहीं बनता या आपको?
1: नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मैं जब बचपन से छोटी थी, मेरे पापा मम्मी दोनों रेडियो सुनते, तो मुझे इतना अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मतलब ऐसा लगता है कि तो मेरी फैमिली है रेडियो। मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। मैंने पापा मम्मी को आज तक मैंने वैसे सामने से नहीं बोला, पर मैं रेडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी। पापा मम्मी, आप वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो। मुझे आप दोनों पे गर्व है कि आप मुझे इतना प्यार करते हो।
0: बहुत अच्छी बात है खुशी की, आप जैसी प्यारी बिटिया उनकी है। और खुशी को बहुत खुशी हो रही है कि आज इसका कॉल लग गया, और खुशी से बात करके हमें भी खुशी हो रही है। तो अब बताइए खुशी की, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मेरे मम्मी पापा के लिए अलग गीत सुनना चाहूंगी, मुझे माफ करना, ओम साई राम।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।
2: मा, मा,

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही है इस समय?
1: जी, मैं हर्षिता गुजराती बात करूं।
0: हर्षिता जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं हरपन मौला कलाकार किशोर कुमार की नगरी खंडवा मध्य प्रदेश से बात कर रही हूं।
0: क्या बात है, आपने जो अपने शहर का परिचय दिया है ये बड़ा अच्छा था।
1: जी, मैं बहुत दिनों से हेलो सहेली में फोन ट्राई कर रही थी, आज सफलता मिल ही गई।
0: अच्छा, आप किशोर कुमार की नगरी में रहती हैं, तो क्या आपने
1: जी
0: कभी किशोर कुमार का जो वहाँ पर निवास स्थान है वो देखा है जाकर?
1: जी, मैं स्थान पर गई हूँ
0: जी।
1: और जो किशोर कुमार की नगरी है वहाँ पे समाधि है, मैं वहाँ भी गई हूँ। वहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं, मेरे पापा के साथ में जाती हूँ, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है।
0: और आपको भी किशोर कुमार के गाने पसंद हैं?
1: जी
0: और आपके पिताजी को भी किशोर कुमार के ही गाने पसंद होंगे ज्यादा?
1: जी पापा तो पहले से ही किशोर कुमार, रफी साहब, इन सभी के गीत सुनते थे, और धीरे धीरे फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं पापा से जुड़ गई इस चीज के लिए।
0: हर्षिता, आप क्या करती हैं?
1: मैंने एमकॉम की डिग्री प्राप्त करी है देवी
0: जी
1: अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से,
0: जी
1: और अभी मैं संस्कार भारती की स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा, अपनी डिग्री लेने के बाद में अभी आपने पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है?
1: जी जी
0: बहुत अच्छी बात है, एक शिक्षक के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसे आप निभा
1: जी
0: रही हैं।
1: बिल्कुल जी।
0: और आपके फ्यूचर के क्या, भविष्य के क्या योजनाएं हैं?
1: मेरी भविष्य की यही योजना है कि मैं संस्कार भारती से जो जुड़ी हुई हूँ, विद्या भारती से,
0: जी
1: वहाँ जितना मुझसे हो सके मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। वहाँ से मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ।
0: और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं हर्षिता?
1: मैं आज नाइट इन लंदन फिल्म से बाहोशो हवाज दीवाना,
0: रफी साहब का गाया हुआ।
1: जी जी जी
0: हर्षिता, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का नाइट इन लंदन फिल्म का ये गाना।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद। आप सभी सखियों से अनुरोध है कि जिनके कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए, अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें, ताकि हमारी अन्य सखियों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको करना होगा अगले मंगलवार तक का इंतजार। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर 022-400-2462, 022-28-670-288। नंबर आपको फिर से बता देते हैं 022-400-2462। एक अन्य नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 022-28-670-288। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं मंगेश सांगले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं विधि जैन की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। वाचन स्वर विधि जैन का।
2: वक्त की मार, रिश्तों का सार। रिश्ते जीवन का आधार होते हैं। जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्यता की पहचान रिश्ते ही तो है। ये रिश्ते कभी रक्त के बंधन होते हैं तो कभी प्रेम के। ऐसे ही रिश्तों को सहेजना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि मन का सुकून और शांति इससे ही है। आज की कहानी इन्हीं रिश्तों के सम्मान और आवश्यकता की है। चलते हैं गांव की ओर, जिस गांव का नाम है शिवपुर।

शिवपुर गांव की सुबह हमेशा शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता। प्रेम है एक दूसरे का, सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां, रहट की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबके आदर का पात्र हैं। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं।

गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं उनके बच्चे भी ऐसे ही हो जाएं।

विक्रम बड़ा भाई है तो स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है, और अमित छोटा है तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा, पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेलते, पढ़ते और खेतों में पिता के साथ काम करते। माँ के हाथ का बना भोजन बिना नानुकुर के बड़े प्रेम से करते, और शाम को मित्रों के साथ कभी कभी गांव के मेले में भी घूमाते। दोनों की हंसी सुनकर लगता जैसे घर में कभी कोई तूफान आ ही नहीं सकता। प्रेम देखकर लगा कि कोई शक्ति इन्हें अलग कर ही नहीं सकती। जीवन का सारा पाठ बचपन में ही सीख लिया है इन्होंने, और यह सब देखकर राम नारायण जी और कमला जी ईश्वर को धन्यवाद देते। और राम नारायण जी अक्सर कहा करते, मेरी असली कमाई असली धन ये दोनों हैं।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था। हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए, परंतु दुर्भाग्य यह था इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थ परता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था, और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी, और जहां कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विषवेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमाने लगे थे, और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर दिख रहा था।

घर की बड़ी बहू विक्रम की पत्नी सीमा अक्सर कहती, इतनी बड़ी जमीन है लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए। हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वहीं छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा यह सोचकर दुखी होती, जमीन तो रहती ही है पर रिश्ते टूट गए तो घर कैसे रहेगा। हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम अमित दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही नहीं चला। कहां क्या अंधकार पनप रहा है जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए। धीरे धीरे उनके दिलों में दूरियां और बढ़ने लगी। रामनारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए, दोनों बेटों को समझा रहे थे, परंतु उनकी सुनता कौन था। शायद उनके पास सब कुछ संभालने के लिए समय भी बहुत कम बचा था।

कमला यानी दोनों की माँ रात को अक्सर आंगन में बैठकर दीपक की लौ देखते हुए कहती, नारायण जी हमसे कहाँ गलती हो गई। जो लड़के एक रोटी में साथ खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता पिता जागती आंखों में ही रातें बिता दिया करते।

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा में चिल्लाया, भैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब सब मैं अकेले कर रहा हूँ। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथ ही सीमा और राधा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ती जा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता की अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया, यूं कहें कि सारे हथकंडे अपना लिए। पर दोनों भाइयों की आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दब गईं और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या लेने वाली बात को गलत साबित कर सके। और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने रोते रोते कहा, नारायण जी अब इस घर की दीवारों में भी हमें अपनापन नहीं लगता, प्रभु ही कोई राह दिखाएं।

शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली, और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश मां की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाते।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था, कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं, और यहां भी यही हो रहा था। कल तक जो एक उंगली उठी थी, आज उन तीन अंगुलियों को भी देख पा रहे थे जो उनकी ओर थी।

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था, और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया, उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली।

और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित, माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया, दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले। दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी। उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे।

0: गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।
1: बहुत

0: अब आए कदम चूम लूं।
1: संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, गांव में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गांव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सब के साथ गांव को देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मान भी मिला।

कई सालों बाद विक्रम ने संगठन की सभा में कहा, माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए, जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आई। गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।

रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। दर्द दिल का चिराग गोया बड़ी मुश्किल से जलाया है, आज फिर बेताबियों में खुद को घिरा पाया है। मोहब्बत के नशे मन में उनके कदमों के निशान ढूंढते हैं, फूलों में ओस की नाजुकी नगमों में तराना ढूंढते हैं। दिल के आंगन में मेरे चुपके से आता है कौन, मेरा सब्र हर घड़ी यूं आजमाता है कौन।

ये इंतज़ार भी अजीब शय है, हर पल दिल उनके हुजूर ही रहता है। खास कुछ बेताबियों के निशान देखे कहीं कहीं हमने, है चांदनी के शरारों सा शफाक हुस्न उनका। कलियों की सादगी कांधों पे करवटें लेती जुल्फें, लबों पे मुस्कुराहट, तो भला फिर ऐसी तस्वीर कहाँ।

जब जब पुकारा है, बात क्या चाहिए, सब कुछ मोहब्बत पे वारा है। ये ख्वाब नहीं अफसानाए हकीकत है, दो घड़ी मिल बैठें, चांद से आंखें मिलाएं, चलो कुछ देर के लिए दुनिया से जुदा हो जाएं।

भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। ये खुशबू ए नसीम, ये सितारों की रोशनी, ये शबनम के कतरे, ये फूलों की बहारें हैं फिजाओं में, ये नज़ारे जैसे चनार के पत्तों पे लिखी मोहब्बत की कोई इबारत हो। क्या जानिए क्या दिल का हाल होता है, बूंद जब लरसती है बादलों की घटाओं से।

ये कश्मकश, ये उलझने बहुत मुश्किल है, ये दुनिया की रवायतें बहुत मुश्किल है, दिल का मामला है हरफों में कब बयां होता है, ये जिगर का तीर है मुश्किल से निकलेगा, जहां भी साथ निकलेगी अगर ये दिल से निकलेगा।

की मुस्कुराहट की कसम खा के ये हवाएं चलती हैं, शबनम ने इन्हीं होठों से जरूर ताजगी चुराई होगी, गुलों ने हवा की लाली आपसे ही पाई होगी, रात फूलों में भंवरों का कैद हो जाना, चुपके से चांद का तकना, मोहब्बत शय ही कुछ ऐसी है, तेरा मगरूर हो जाना, मेरा मशहूर हो जाना।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम लेके हम हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओ, हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। आपको सुनवाते हैं पारंपरिक निमाड़ी लोकगीत कलाकार हैं लखनलाल हिरवे और उनके साथी।

0: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
1: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
0: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
1: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
2: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

आप सुन रहे थे श्रोताओं लखनलाल हिरवे और साथियों से पारंपरिक निमाड़ी लोकगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी खंडवा से, आइए सुने युववाणी कार्यक्रम।

0: सादर नमस्कार दोस्तों, इस चिलचिलाती सी गर्मी में शाम की ठंडक लेकर आ गए हैं हम आपके साथ माह के पांचवें शुक्रवार का खास क्रम युगल फिल्मी गीत लेकर। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत रोजाना की तरह सामान्य ज्ञान के दो प्रश्नों के साथ। तो साथियों, नोट कीजिएगा आज का पहला प्रश्न। तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? और साथियों, आज का दूसरा प्रश्न है, फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस धावक ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ को 10.09 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों, इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे कार्यक्रम के अंत में। तब तक बने रहिएगा युववाणी में।
1: दोस्तों, हर रविवार युववाणी में प्रसारित किया जाता है आपकी फरमाइशी गीतों का क्रम
2: हेलो फ्रेंड्स,
1: जिसमें हम करते हैं आपसे आपके दिल की बातें और सुनवाते हैं आप ही के पसंद के फिल्मी गीत।
3: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना।
1: तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से कॉल कीजिए और सुनिए अपने पसंदीदा फिल्मी गीत। साथियों, हेलो फ्रेंड्स की रिकॉर्डिंग की जाती है हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे के बीच। आकाशवाणी खंडवा का टेलीफोन नंबर है 2226063 और खंडवा का STD कोड है 0733। तो फोन करना ना भूलें। कार्यक्रम है हेलो फ्रेंड्स।
0: रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दोस्तों, दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों का उदाहरण है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, जिन्होंने 8849 मीटर की ऊंचाई वाले माउंट एवरेस्ट को फतह करके उसका दम्भ चूर कर दिया। ये दोनों ही एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले पर्वतारोही बने। इससे पहले एवरेस्ट पर पहुंचने के अनेक प्रयास असफल रहे। इसके साथ एडमंड हिलेरी ने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर भी इतिहास रचा था और सम्मान स्वरूप न्यूजीलैंड के $5 के नोट पर अंकित है सर हिलेरी का चित्र। दोस्तों, वहीं तेंजिंग नॉर्गे एक नेपाली पर्वतारोही थे, जिन्हें एवरेस्ट और केदारनाथ की प्रथम चढ़ाई के लिए जाना जाता है। दोस्तों, साल 2008 में एडमंड हिलेरी का निधन हुआ, जिसके बाद से नेपाल सरकार ने उनके सम्मान में आज ही के दिन को यानी 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाने की शुरुआत की। और दोस्तों, यहाँ बैठे बैठे मैं आपको पहाड़ों पर तो नहीं ले जा सकती, लेकिन पहाड़ों पर फिल्माया गया हुआ गाना ज़रूर आपको सुनवा सकती हूँ।

दोस्तों, युगल फिल्मी गीतों के खजाने से हम आपके लिए चुनकर लाए हैं ऐसे गीत जो आपकी शाम को अगले कुछ पलों में प्यार, मुलाकात और एहसासों से भर देंगे। आइए शुरुआत करते हैं उस गीत से जो हर धड़कन को प्यार का नाम देता है। फिल्म है पल पल दिल के पास, गायक अरिजीत सिंह और परंपरा ठाकुर, गीत है सिद्धार्थ और गरिमा का, संगीत साचेत परंपरा।

दोस्तों, अगले गाने की शुरुआत बशीर बद्र साहब की चंद पंक्तियों से और उन्हें हमारा श्रद्धा सुमन कि खामोशियां बोल देती हैं जिनकी बातें नहीं होती, खामोशियां बोल देती हैं जिनकी बातें नहीं होती, इश्क वो भी करते हैं जिनकी मुलाकातें नहीं होती।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

दोस्तों मोहब्बत हुई है तो आवारगी भी आएगी, और मुलाकात उनसे हुई है तो दिल की बात जुबां पर भी आएगी। फिल्म शमशेरा का ये गाना नीति मोहन की आवाज़ के साथ एक बार फिर से अरिजीत सिंह हैं।

दोस्तों युगल फिल्मी गीतों में लगाते हैं अब तड़का थोड़ा रेट्रो का और सुनते हैं फिल्म चश्मे बद्दूर से ये गाना अली जफर और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीत लिखा है निलेश मिश्रा ने, संगीत दिया साजिद वाजिद ने।

दोस्तों, इसी गीत के साथ हमारा आज का क्रम युगल फिल्मी गीत यहीं संपन्न होता है। आज के क्रम में आपको कौन से युगल गीत सबसे ज़्यादा पसंद आए, हमें पत्र और ईमेल के ज़रिए लिखकर ज़रूर भेजिएगा। दोस्तों, अब चलने से पहले आपको बता देते हैं आज के सामान्य ज्ञान के दोनों प्रश्नों के उत्तर, जिसमें आज का पहला प्रश्न था, तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है चोमो लुंगमा। और दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न था, फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस धावक ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ को 10.09 सेकेंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? जिसका उत्तर है गुरिंदर वीर सिंह ने। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए दे इजाजत विभूति को। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।

0: श्रोताओ, आपने सुना युववाणी कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से।
1: फोन करें, गीत सुने।
2: सर फोन लगा लगा के सर्दी में पसीने में तर बतर हो गया हूँ, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है भीषण। आकाशवाणी खंडवा की आवाज जा रही वहाँ तक ये बताऊंगा कि भीषण गर्मी में धूप से बचे, 11 बजे से 4 बजे के बीच बाहर न निकले।
1: अपने श्रोताओं के संग दिलचस्प बातें, मधुर गीत, सुनिएगा जरूर इस रविवार प्रातः 10:05 पर। फोन करें, गीत सुने।
3: मुझे कहना कहना तुझसे है कहना।
0: श्रोताओ, यह है आकाशवाणी खंडवा और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सभी को विद्याधर मूल्य का नमस्कार। पहला गीत हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम अखियों के झरोखों से।

0: और अब गुलजार का गीत। फिल्म घरौंदा के लिए इसे गाया है भूपेंद्र और रूना लैला ने, संगीत जयदेव का।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में।
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

विद्याधर मुले के साथ आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी खंडवा से। और अब साहिल लुधियानवी का गीत सुनते हैं, संगीत खय्याम का है, आवाज लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की।

0: फोन करें, गीत सुनें।
1: सर फोन लगा लगा के सर्दी में पसीने में तर बतर हो गया हूँ, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है भीषण। आकाशवाणी खंडवा की आवाज जा रही, वहाँ तक ये बताऊंगा कि भीषण गर्मी में धूप से बचे, 11 बजे से 4 बजे के बीच बाहर न निकले।
0: अपने श्रोताओं के संग दिलचस्प बातें, मधुर गीत, सुनिएगा जरूर इस रविवार प्रातः 10:05 पर। फोन करें, गीत सुने। मुझे

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: हंसते जख्म फिल्म का गीत हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत के साथ ही विद्याधर मुले को फिल्म संगीत ये कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दें। नमस्कार श्रोताओं, FM 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। शाम के 7 बजने वाले हैं। समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक

0: के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने कांग खाई शिंग और आरुण ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी खंडवा है, एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज पर।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: एफएमएंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रोग्राम्स का खजाना। तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: फोन करें, गीत सुने।
2: सर फोन लगा लगा के सर जी मैं पसीने में तर बतर हो गया हूँ, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है भीषण। आकाशवाणी खंडवा की आवाज जा रही, वहाँ तक ये बताऊंगा कि भीषण गर्मी में धूप से बचे,

0: निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: फोन करें, गीत सुने।
2: सर फोन लगा लगा के सर्दी में पसीने में तर बतर हो गया हूँ, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। विशाल।

0: के बीच बाहर न निकले।
1: अपने श्रोताओं के संग दिलचस्प बातें, मधुर गीत। सुनिएगा जरूर इस रविवार प्रातः 10:05 पर। फोन करें, गीत सुने।
2: मुझे कहना कहना तुझसे है कहना।
3: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
4: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
3: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
4: क्यों?
3: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
4: वो कैसे?
3: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
4: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
3: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
4: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
3: आप कब आ रहे हैं?
4: आकाशवाणी खंडवा पर।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
7: FM 101.2 MHz पर श्रोताओ, ये आकाशवाणी खंडवा है। शाम के 7:10 होने को हैं। आइए सुने भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
8: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
9: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा। सोलर पैनल लग चुके हैं, आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 5 राष्ट्रीय पहलों की शुरुआत की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पेपर लीक दुर्भाग्यपूर्ण, सीबीआई करेगी जांच और दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। केंद्र सरकार ने कहा, देश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं, रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चालू। और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने जम्मू पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल पूरे होने पर 5 राष्ट्रीय पहलों की शुरुआत की और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग आज 182 देशों में मौजूद है और पूरी मानवता को जोड़ने का काम कर रहा है। वहीं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने कहा कि आज की दुनिया में ध्यान विलासिता नहीं बल्कि जरूरत बन गया है और जीवन में ज्ञान, ध्यान और संगीत हमेशा साथ रहने चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण

0: बताते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती कि किसी भी योग्य छात्र का भविष्य परीक्षा माफियाओं की वजह से बर्बाद हो। उन्होंने कहा कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करेगी और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। श्री प्रधान ने कहा,
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में कहा है कि इस चूक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई की, जिसमें एनटीए को हटाकर उसकी जगह एक मजबूत और स्वायत्त संस्था बनाने भी शामिल को कहा है और अब अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। केंद्र सरकार ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चल रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में अभी रोजाना 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि किसी भी एलपीजी वितरक से गैस की कमी की कोई शिकायत नहीं आई है।
2: मैं आप सभी के द्वारा सभी लोगों से अपील करना चाहूंगी कि सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने महज 4 दिनों में पाकिस्तान को युद्ध विराम की अपील करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने इस अभियान को भारत के सैन्य इतिहास की अभूतपूर्व सफलता बताते हुए कहा कि तीनों सेनाओं के उत्कृष्ट तालमेल और आधुनिक सैन्य क्षमता का जीवंत उदाहरण था। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक विशेष स्मारक प्रकाशन का भी विमोचन किया। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित रहे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज माता वैष्णो देवी धाम में दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि राज्य सरकार का एक दल यहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने आया है। डॉ. यादव ने कहा कि महाकाल मंदिर, ओमकारेश्वर और भूशाला जैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए देश के बड़े तीर्थस्थलों से सीख ली जा रही है। त्रिशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सास गिरिवाला सिंह और पति समर सिंह को 5-5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। गिरिवाला सिंह पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। कल 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें भोपाल स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्रिशा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। भोपाल में एसटीएफ ने कल रात गांधीनगर इलाके में एक मकान पर छापा मारकर अवैध कफ सिरप बनाने के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। यहां ऑफ कफ नाम की नशीली सिरप बनाकर बाजार में सप्लाई की जा रही थी। पूरे सेटअप की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रात 12 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई सुबह 3 बजे तक चली, जिसमें 700 से ज्यादा पेटियां, बोतलें और पैकेजिंग मशीनें जब्त की गई हैं। 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। प्रदेश ने इस साल गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है। 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 104 लाख 22 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया और 13 लाख से अधिक किसानों को। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं खरीदने के मामले में प्रदेश देश भर में नंबर 1 पर है।

मंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश भर में 40 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर लग चुके हैं, जिनमें प्रदेश के 1,21,000 से अधिक घर शामिल हैं। प्रदेश में इन संयंत्रों से 456 मेगावाट से ज्यादा स्वच्छ सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में शक्ति बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जबलपुर शहर के लोगों को जल्द ही ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि एनएच करीब मीटर लंबी आउटर रिंग रोड बना रहा है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि वाहनों को शहर के बाहर से राहत से उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छिंदवाड़ा के खोखरा वाटरफॉल पर कल बुधवार को हुए हादसे में डूबे दोनों किशोरों के शव बरामद कर लिए गए। हादसे में एक शव गुरुवार को और दूसरा शव 36 घंटे बाद आज फॉल के पास सेल्फी लेते वक्त संतुलन बिगड़ने से गहरे पानी में चले गए थे। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से अपनी सेहत का ख्याल रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से खूब पानी पीने, बच्चों को हाइड्रेट रखने और घर से बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शासकीय महाविद्यालय में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अशोकनगर में गर्मी में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया गया। दतिया में जल संरक्षण और मनरेगा में लापरवाही पर 11 सरपंचों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। धार में वन विभाग ने छापा मारकर निजी कंपनी के गोदाम से विभिन्न प्रजातियों की छाल और बीजों का अवैध भंडारण जब्त किया। झाबुआ में आईटीआई में प्रवेश के इच्छुक छात्र 30 जून तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। देवास में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कुओं, तालाबों और नदियों की सफाई और गहरीकरण का काम जारी है। नर्मदापुरम में पवारखेड़ा में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगर मालवा के नलखेड़ा में विधायक भैरव सिंह परिहार ने 11 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। गुना में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। निवाड़ी में भाजपा जिला कार्यालय में मोदी जी के 12 साल बेमिसाल विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। शिवपुरी में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 35 दिवसीय निःशुल्क ब्यूटिशियन प्रशिक्षण में 31 महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे के केंद्रीय चिकित्सालय में अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन पर सेमिनार और मॉकड्रिल आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीछे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। इस समय शाम के 7:21 हुए हैं। किसान श्रोता सुने अपना कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

कार्यक्रम सुनने वाला सभी भाई बहनों को आपकी बहन निरुपमा मिश्रा की राम राम। भाई बहन होनी गर्मी का दिन लगातार कामकाज से सुस्तावना का दिन छे, क्योंकि इना समय हमारा बच्चा न कि स्कूल की छुट्टी रह और खेत में भी अधिकतर किसान भाई न को काम पूरो हो चुके रज, न खेत खाली रज, मतलब कि किसान भाई न को इना समय खेती खिरसाने से फुर्सत मिली जाए। इनका साथ साथ कई ऐसा विभाग छे जहाँ गर्मी का दिन में कामकाज नहीं रहे तो या बहुत कम कामकाज रह, तो हमारा कई भाई बहन इना गर्मी का समय में लंबा सफ़र की योजना बनावज, पर ज़्यादा या तेज गर्मी का कारण कई बार कई मुश्किल न को सामनो इन यात्रा का दौरान उनका करना पड़ज। भाई बहन उन्होंने सफ़र चाहे कोई हिल स्टेशन को होए या कोई ऐतिहासिक जगहों को होए या फिर एक जरूरी बिजनेस ट्रिप होए या अरु कहीं भी जाने की बात होए, यात्रा अपना आप में एक अनूठो रोमांच कही सकान। ये यात्रा हमारा मन में एक उत्साह लेकर आवज। भाई बहनोनी गर्मी में कहीं सफर पर जाणू एक योजनाबद्ध कार्य छे। इना मौसम में एक छोटी सी गलती हमारा सुहाना सफर को एक मुश्किल सफर में बदली सकज। दूसरी ओर यदि हमारा पास सही योजना, अच्छी तकनीक और सूझबूझ छे तो इन्हीं तेज गर्मियों में भी हम बहुत आरामदायक और यादगार सफर को आनंद ले सकें। भाई बहनों ने गर्मी का मौसम में सफल यात्रा करनू इन्हीं बात पर निर्भर करज कि आप अपनों घर से निकलना और वापस घर पहुँचने को समय कसो तय करोज, क्योंकि इना समय में बिना समय की योजना बनाई कर निकलनू सीधा तौर पर मुश्किल खड़ी कर सकज। भाई बहनोनी यदि यात्रा कुछ घंटा की छे तो सुबह 4 से 9 का बीच को समय सबसे अच्छो रज। इना समय वातावरण में इतनी गर्मी नहीं रहती, सड़क या स्टेशन पर भीड़ भी कम हो न, यदि लंबी दूरी की यात्रा छे तो रात को सफर एकालेन सबसे अच्छो रज। ट्रेन या चार पहिया वाहन से रात में सफर करने पर शरीर में तापमान को दबाव कम रह और हम सोते हुए भी रास्तों पार कर सकें। भाई बहनों ने गर्मी नमा यात्रा का दौरान भारी भरकम सामान लेकर चलनू अपना आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य छे। रेलवे स्टेशन की सीढ़ी चढ़नू होए या बस स्टैंड पर इंतजार करनू, अपनो सामान जितरो कम और हल्को होएगा हमारी आधी ऊर्जा महज बची जाएगा। अपना साथ कुछ जरूरी सामान जैसे कि मेडिकल किट, थर्मल वाटर बाटल जो कि पानी का लंबा समय तक ठंडो राखज, घर को बने सूखो नाश्तो न, यदि छोटा बच्चा साथ में छे तो उनका लेन अतिरिक्त आरामदायक कपड़ा और कुछ खिलौना भी रखनू जरूरी छे ताकि लंबा रास्ता में उनका बोरियत नहीं होए। भाई बहनों यदि घर का वाहन से यात्रा पर जा रहा हो तो निकलने से पहले उनका टायर और ब्रेक जरूर से चेक कर लेवा। भाई बहनों ने यात्रा हमारा जीवन का कई तरह का अनुभव और खुशनुमा याद न देज, न ये हमका रोज रोज की थकान भरी जिंदगी से दूर ले जाकर एक नई ऊर्जा से भरी देज। गर्मी का मौसम की यात्रा की चुनौती तो जरूर छे पर वो इतनी बड़ी भी नहीं है कि आपका घूमना का इरादा का हरे सक। तो देर की नहीं बात की, अभी भी समय छे अपना घूमना को शौक को पूरा करने को। तैयार करो अपनो बैग और शुरू करो अपनो रोमांचक सफर एक नया अनुभव का साथ। न भाई बहनी बातचीत तो हम आगे अरु भी करांगा, पहले आनंद ले लेवा इना लोकगीत को जेख गायज हेमलता उपाध्याय न अरु साथी ने ना।

भाई बन्होनी, अभी हमने आनंद लियो हेमलता उपाध्याय और उस साथी ने को गायो इना निमाड़ी भजन को। न भाई बन्होनी, अपना कार्यक्रम का आगा हम बढ़ावा ओका से पहले अब पूछी ले बा आज को हमारो प्रश्न। आज को हमारो प्रश्न छे कि मुर्गी न म पैर का पंजा को लकवो किना कारण से होज। प्रश्न एक बार फिर से सुनी लो, मुर्गी न म पैर का पंजा को लकवो किना कारण से होज। इना प्रश्न को उत्तर बतावांगा हमेशा की तरह कार्यक्रम का आखिर में, तब तक बने रहो हमारा साथ। भाई बहन होनी, कृषि व्यवसाय से जुड़ेल हमारा किसान भाई न को तब सबसे ज़्यादा खुशी होज जब उनका खेत की फसल पकी कर बिकना का लेन तैयार हुई जाए। पर मुश्किल तब होज जब फसल की उपज बेचना का लेन मंडी न घंटों इंतजार करनु पड़ज, फिर उपज की गुणवत्ता का हिसाब से बोली लगज, फिर तौल न असी कई प्रक्रिया का बाद भुगतान, न कभी कभी तो ये भी पूरो नहीं मिल पाओतो। भाई बहनोनी, किसान भाई न की अपनी फसल उपज का बेचने की प्रक्रिया का सरल और पारदर्शी बनेल रहे एका लेन शासन न 14 अप्रैल 2016 का राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नम की शुरुआत की थी, जेका की 2026 में 10 वर्ष पूर्ण हो चुके आज। ये योजना एक राष्ट्र एक बाजार का उद्देश्य पर आधारित छे, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी का माध्यम से देश भर की कृषि उपज मंडी को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ज। भाई बहनोनी, यदि हम एक बहुत सरल शब्द में समझा तो ई नम कृषि उत्पाद का लेन एक ऑनलाइन दुकान छे। अंतर केवल ये छे कि यहाँ अपनी उपज बेचने वाला हमारा देश का किसान भाई या उनका समूह होज और खरीदने वाला देश भर का बड़ा व्यापारी, प्रोसेसर या निर्यातक। एक माध्यम से एक राज्य का किसान भाई कि ना दूसरा राज्य का व्यापारी को अपनी फसल ऑनलाइन नीलामी का जरिए सीधा तौर पर बेची सकज। भाई बहनोनी, ई नम पोर्टल यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल पर व्यापार की प्रक्रिया बहुत सरल और चरणबद्ध छे, और एक कोई भी सामान्य किसान भाई या व्यापारी आसानी से समझी सकज। जब किसान भाई अपना वाहन से फसल लेकर ई नम से जुड़ेल कोई मंडी गेट पर पहुँचज, तो वहाँ उसकी फसल को डिजिटल पंजीकरण की हो जाज, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का माध्यम से उन्हें फसल का एक विशेष लाट आईडी दी जाज। ये आईडी पूरी प्रक्रिया का दौरान उना उत्पाद की पहचान होज। भाई बहनोनी, उपज की गुणवत्ता की जांच ई नम को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों छे। पारंपरिक व्यवस्था में व्यापारी अनाज का हाथ में लेकर न देखी कनों को दाम तय करता था, जो कि सही नहीं है। ई नम मंडी में स्थापित आधुनिक प्रयोगशाला में फसल का नमूना की जाँच की जाज। एका में नमी की मात्रा, कचरो, दाना को आकार और शुद्धता जैसा मापदंड की जांच करी कर एक डिजिटल गुणवत्ता रिपोर्ट तैयार की जाए। इन प्रकार से लाट की जानकारी और वो की गुणवत्ता रिपोर्ट इंटरनेट पर दिखने लगी जाए। अब देश का किना भी कोना में बैठेल व्यापारी जो उना श्रेणी को अनाज खरीदनु चाहिरा होए, वो कंप्यूटर या मोबाइल ऐप के जरिए उना लाट पर अपनी बोली लगाई सकज। अब चूंकि कई व्यापारी लाट की बोली लगावज, तो किसान भाई एक लेन अधिक कीमत वाली बोली को चुनाव कर सकज। भाई बहनोनी, बोली की समय सीमा खत्म होने पर सॉफ्टवेयर सबसे ऊंची बोली लगाने वाला व्यापारी का नाम की घोषणा अपना आप करी देज। मतलब यदि किसान भाई चुनाव करने में चूकी जाए तो सॉफ्टवेयर ऊंची बोली या सबसे ज़्यादा बोली को अपना आप लॉक कर देज, और यदि किसान भाई उन्हीं कीमत से संतुष्ट छे तो फिर बिक्री करी का मंजूरी दे देज। एक बाद मंडी में इलेक्ट्रॉनिक तोल काटा का माध्यम से फसल उपज की सटीक तोल की जांच की जाए।

0: फिरी वजन का आधार पर कुल राशि को बिल डिजिटल रूप से बनज। खरीदार व्यापारी इंटरनेट बैंकिंग UPI या RTGS या NEFT का जरिए भुगतान करज और ये पैसों सीधो किसान भाई का बैंक खाता में आई जाए। जेकी जानकारी किसान भाई न का मोबाइल पर मैसेज का माध्यम से होज। इन प्रकार से भुगतान होने पर किसान भाई अपनी उपज बेची कर निश्चिंत हो सकज। भाई बहनोणी, पिछला 10 साल में राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल अब अरु भी हो चुक्यो। कई किसान भाई अरु समूह एको सफलतापूर्वक लाभ उठाई राज। अब अपनो देश एक राष्ट्र एक बाजार का सपना की ओर आगे बढ़ी रोज। अरु राष्ट्रीय कृषि बाजार जैसी तकनीक किसान भाई न का जीवन में समृद्धि का द्वार भी खोली रही। भाई बहनोणी, ये तो थी अपनी आज की बात। न अब सुनाज जल संरक्षण में जन भागीदारी की आवश्यकता विषय पर ये पुनः प्रसारित वार्ता। वार्ताकार छे श्री लव जोशी।
1: आकाशवाणी के श्रोताओं को लव जोशी का नमस्कार। आज का विषय है जल संरक्षण में जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। इस महत्वपूर्ण विषय पर पूरी दुनिया में चिंतन हो रहा है। पूरी दुनिया में अनेकों कार्य योजना निर्धारित कर सभी देश इस पर काम कर रहे हैं। भारतवर्ष में भी जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है और अनेकों योजनाओं के माध्यम से जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। पृथ्वी पर लगभग 71% जल की उपस्थिति है और मात्र 3% जल जो है वो पेयजल के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। शेष जल जो है वो समुद्री खारे पानी के रूप में है, जिसका उपयोग हम नहीं कर सकते। सरकारी योजनाएं और सरकार तो जल संरक्षण के लिए अनेकों तरीके से कार्य कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सरकार के काम करने से जल संरक्षण करना संभव नहीं है। इसलिए इसमें जन भागीदारी का होना भी अत्यंत आवश्यक है। जल संरक्षण आवश्यक क्यों है? क्योंकि इसमें अगर हम मानव मात्र के लिए देखें तो मनुष्य को प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है, पेयजल के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए। इस तरीके के अनेकों कार्य हैं जिसमें जल की व्यवस्था होना और जल का बचाव होना और संरक्षित होना जरूरी है। दूसरा है पर्यावरण के लिए, तो हमारे वन संरक्षित रहें, पौधे, पशु पक्षी, वन्य जीव, अन्य प्राणियों के लिए भी और पर्यावरण के बचाव के लिए भी जल का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उद्योगों के दृष्टिकोण से देखें तो अनेकों उद्योगों में जल के बिना काम नहीं किया जा सकता, इसलिए उद्योगों को भी विकसित करने के लिए जल की आवश्यकता और जल का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। बिजली उत्पादन के लिए अनेकों योजनाओं के माध्यम से बिजली का उत्पादन भी जल के द्वारा ही किया जा रहा है। अनेक नदियों पर डैम बनाकर बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, इसलिए बिजली को बनाए रखने के लिए जल का संरक्षण होना अत्यंत आवश्यक है, जो कि हमारी आवश्यकता है। इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण कार्य जो है, जो भारत देश में कृषि प्रधान देश है, इसमें खेती के लिए, सिंचाई के लिए पानी की हमको अत्यंत आवश्यकता होती है, तो उसके लिए भी हमारा जल संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हमें किस तरीके के उपाय करना चाहिए जिससे जन भागीदारी के साथ में जल संरक्षण किया जा सके? सरकारी योजनाएं तो अपना काम कर रही है, लेकिन जन भागीदारी का भी आवश्यक है। मनुष्यों के द्वारा प्रतिदिन जो जल की व्यवस्था के लिए काम करने की ज़रूरत है, तो उसमें हमें कृत्रिम जल स्रोत बनाने की आवश्यकता है, जो पूर्वजों ने भी बनाए हैं और उनको संजोने की, रखरखाव की आवश्यकता है। जैसे हमारे घर के आसपास, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में सभी दूर हम देखेंगे कि कुएं हैं, बावड़ी है, तालाब है, नदियाँ हैं, तो इन सब के लिए हमको इसकी साफ सफाई की व्यवस्था रखनी पड़ेगी। प्रतिवर्ष इसकी मरम्मत कार्य और साफ सफाई जन भागीदारी के माध्यम से हम सबको, जनता को मिलकर, क्षेत्रवासियों को मिलकर करने की आवश्यकता है, क्योंकि कुओं को संरक्षित करने से हमारे आसपास जो भी हमको जल की आवश्यकता लगती है उसका उपयोग किया जा सकता है। तालाबों के माध्यम से पशु पक्षी के पेयजल की व्यवस्था हो सकती है। इसी तरीके से आवश्यकता है खेती के लिए भी, हमें खेतों के आसपास अगर पानी कम हो रहा है तो खेत के पास में जो उतार वाला क्षेत्र है जहाँ पर पानी

बहकर जाता है तो वर्षा जल का संरक्षण किया जा सकता है। उसके लिए हमें खेत के पास में गड्ढा खोदकर उस पर आज की व्यवस्था के हिसाब से प्लास्टिक बिछाकर जल का संरक्षण कर सकते हैं, जो हमें 6 महीने 8 महीने सिंचाई के लिए काम आ सकता है। तो जल संसाधनों का स्रोत उनकी उपलब्धता के आधार पर जल प्रबंधन की प्रणाली को बनाया जाए और विकसित किया जाए, यह अत्यंत आवश्यक है। परंपरागत जल संचय, वर्षा जल का संचय, इन कृत्रिम जो हमारे बनाए हुए कुएं, तालाब, बावड़ी, कुंड हैं, इसमें हम कर सकते हैं। उसके लिए हमको जो भी क्षेत्रवासी है, जहाँ अगर हमारे घर के आसपास कुआ है, बोरिंग है, तालाब है या कोई बावड़ी है, तो हमारे जो छतों का पानी है वर्षा जल का, वो उस बावड़ी के आसपास, कुएं के आसपास या बोरिंग के आसपास हम लगभग 8-10 फीट का गड्ढा करें। उसमें हम नीचे ईंट के टुकड़े, फिर छोटे ईंट के टुकड़े, बड़ी गिट्टी, छोटी गिट्टी, काली रेत, ऊपर बालू रेत डालकर हमारे पाइप के माध्यम से जो छतों का पानी हमारा आता है वो उस बोरिंग के पास या कुएं के पास या तालाब के पास छोड़ दें, तो वर्षा जल जो ज़मीन में जाएगा तो बोरिंग का रिचार्जिंग कर सकता है, कुएं में वो जल बाजू से जाएगा तो कुएं की झीर को वापस मजबूती से हमारा पानी का जो ज़मीन में अत्यंत गहराई पर जल जाते जा रहा है, वापस जल स्रोत रिचार्ज होंगे। तालाबों में संरक्षण होने से हमें 8-10 माह के लिए वो पानी उपलब्ध हो सकेगा। खेत तलाई योजना के रूप में काम किया जाना चाहिए। तो खेतों के पास में जैसा मैंने बताया कि गड्ढे खोदकर प्लास्टिक बिछाकर पानी का संरक्षण किया जाए। पहाड़ी क्षेत्र पर जहाँ से पानी बहकर आता है उसमें हमें ऊपर से लेकर नीचे तक थोड़ा सा दूरी पर, लगभग 5-5 फीट की दूरी पर गड्ढे खोद देना चाहिए। तो पानी जो बहते हुए आए उन गड्ढों में, पहाड़ी के ऊपर रुकता हुआ आए, तो उसमें वो पहाड़ के क्षेत्र में नमी के रूप में निश्चित रूप से संरक्षित होगा और उससे प्लांटेशन को डेवलप करके हम वनों को वापस उन पहाड़ी क्षेत्र में डेवलप कर सकते हैं, वन का क्षेत्र हम बढ़ा सकते हैं। तो वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है जल संरक्षण के लिए और वनों का घना होना, वृक्षों का होना अत्यंत आवश्यक है जल संरक्षण के लिए। इसी तरीके से कि जहाँ हमारा कुआ है, तालाब है, बावड़ी है, कुंड है, उसके आसपास स्थापत्य कला के माध्यम से उस क्षेत्र को अत्यंत सुंदर स्थान के रूप में बनाया जाए, उसके आसपास उद्यान वगैरह बनाए जाएँ, जिससे लोगों का एक रुझान जल संरक्षण के साथ में स्थापत्य कला को भी बनाएं और लोगों का वहाँ पर रुझान बढ़े और उनके प्रति जन भागीदारी के माध्यम से उस क्षेत्र में हम साफ सफाई रख सकें, उनकी मरम्मत कर सकें और जल को शुद्ध जल के रूप में रख सकें। इसके लिए हमें अन्य प्रदेशों में भी कार्य करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में जल संकट पूरी दुनिया का एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, इस पर सभी देश काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ी को स्कूल में और कॉलेज में जल संरक्षण के विषय को विशेष रूप से रखा जाए, जिससे हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो इस पर अध्ययन करें, उनका इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो और आने वाले समय में हमारी आगामी पीढ़ी भी जल संरक्षण पर मजबूती से काम कर सके। इसके लिए सरकारी योजनाओं के माध्यम से जल संरक्षण विषय को स्कूल और कॉलेज में जोड़ा जाना चाहिए, जिससे जन भागीदारी बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी और आने वाली पीढ़ी उस पर काम करेगी। अनेक तरीके के जन जागृति अभियान भी चलाए जा सकते हैं, जिसमें जनता इस बात को अलग अलग क्षेत्रों में जाकर रखे, जिस पर कार्य हो रहा है लेकिन और भी होने की आवश्यकता है। तो हम इसे जन जागृति अभियान के रूप में निरंतर चलाएं, जंगलों को काटने से रोकें, क्योंकि जंगल रहेंगे तो ज़मीन में नमी रहेगी, वृक्षारोपण जितना ज़्यादा होगा उतना पर्यावरण हमारा अच्छा होगा। इसी के साथ आवश्यकता है कि हम, जल ही जीवन है, जीवन ही पर्यावरण है, पर्यावरण है तो धरती है और धरती है तो धरती से ही हमारा सबका जीवन है। इस सब चीज़ के लिए हमें अत्यंत जागरूकता और जन जागृति की आवश्यकता है। हमारे देश में लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा लोग जल संकट से प्रतिवर्ष जूझ रहे हैं और लगभग 2 लाख लोगों की मौत जल संकट के कारणों की वजह से हो रही है। तो इन सब पर हमें जल संरक्षण के विषय को स्कूल कॉलेजों में विशेष रूप से संचालित किया जावे, जल के लिए महत्वपूर्ण बातों को जन जागृति के रूप में प्रचारित प्रसारित किया जावे। जल ही जीवन है, जल बचाएं, कल बचाएं, जीवन पर्यावरण है, पर्यावरण है तो धरती है और धरती है तो हमारा जीवन है।

0: रहीम का एक महत्वपूर्ण दुआ है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो जल बचाएं, कल बचाएं, इसकी अत्यंत आवश्यकता है। हमारे देश में सर्वे के माध्यम से जो आंकड़े निकले हैं, लगभग 60 करोड़ लोग जल संकट की वजह से ग्रीष्मकाल में अत्यंत जूझ रहे हैं और प्रतिवर्ष 2 लाख लोगों की मौत जल संकट के कारण हो रही है। तो इस विषय पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है और जल संरक्षण पर जन भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास करने की आवश्यकता है। नगर निगम और पंचायतों के माध्यम से जो भी नई कॉलोनी और नए मकान बन रहे हैं, उसमें परमिशन के साथ में वर्षा जल को संचय करने के लिए विशेष रूप से एक योजना को सरकार के माध्यम से आवश्यक कर देना चाहिए कि आपके घर से जो भी वर्षा का जल ऊपर छत पर आएगा, उसका संचय करने के लिए आप जो व्यवस्थित सुचारू उसका कार्य योजना होना चाहिए पानी को संचय करने के लिए, उसको भी मकान के साथ में बनाने का निश्चित रूप से कार्य करें। इससे भी एक जन जागृति आएगी और चाहूँगा कि जन भागीदारी निरंतर बढ़े और जनता इसमें आगे आकर जल संरक्षण के लिए काम करे। हमें कुएं, तालाब, बावड़ी, कुंड, इनकी साफ सफाई के लिए जनता को आगे आना होगा, वर्षा जल के संचय के लिए काम करना होगा और वृक्षारोपण के लिए जनता को प्रेरित करना होगा, वनों को बचाने के लिए आगे आना होगा और आगामी पीढ़ी को जल संरक्षण के लिए जागरूक करने की, समझाने की, पढ़ाने की और जानकारी देने की अत्यंत आवश्यकता है। इस तरह की योजनाओं पर काम किया जाएगा तो जन भागीदारी बढ़ेगी और सरकार के साथ जनता का सहयोग होने से आगामी समय में जो जल संकट के कारण परेशानी आ रही है, उससे हम लोग निजात पाने के लिए कार्य करेंगे। अभी भी हम देख रहे हैं कि अनेकों प्रदेशों में जल संकट को लेकर एक दूसरे के बीच में ग्रीष्मकाल में खिंचाव और तनाव का माहौल बन जाता है। एक राज्य दूसरे राज्य को पानी देने के लिए सोचने लगा है तो आने वाले भविष्य में यह संकट और बढ़ेगा। इस पर कार्य करने की आवश्यकता है, जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है, जन भागीदारी को बढ़ाने की आवश्यकता है। आप सभी ने इस महत्वपूर्ण विषय को सुना और निश्चित रूप से हमारे देश की जनता इसमें जन भागीदारी करेगी और जल संरक्षण पर काम करेगी, क्योंकि आने वाला समय जल संकट के लिए बहुत चिंता का विषय है। इस पर हम आगे आएं, जल बचाएं और कल बचाएं। धन्यवाद।
1: भाई बहनोनी, अभी हम सुनी रहा था ये पुनः प्रसारित वार्ता, विषय थो जल संरक्षण में जन भागीदारी की आवश्यकता। न वार्ताकार था श्री लव जोशी। न भाई बहनोनी, अब जानी लेव आज का कृषि समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन में कहो कि खरीफ 2026 का लेन देश में जरूरत सी 11% तक ज़्यादा बीज उपलब्ध छे। देश में लगभग 1,73,00,000 क्विंटल बीज की आवश्यकता छे, जबकि वर्तमान में 1,92,00,000 क्विंटल गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध छे। सभी राज्य नक उनकी मांग का अनुसार बीज आवंटित कर दिया गया ज, ताकि बुआई से पहले किसान भाई न तक ये बीज पहुँची जाए। एक अलावा सरकार कृषि ऋण, फसल बीमा, प्राकृतिक खेती अरु खेत बचाव अभियान पर विशेष ध्यान दे रही। ये था आज का कृषि समाचार। न अब जानकारी मौसम अरु मंडी भाव की। सबसे पहले खंडवा अनाज मंडी से प्राप्त उपज न का भाव की जानकारी इना प्रकार सी छे। सोयाबीन न्यूनतम भाव रहो 4,800 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहा 7,800 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं को न्यूनतम भाव रहो 2,000 रुपया प्रति क्विंटल, न गेहूं का अधिकतम भाव रहा 2,464 रुपया प्रति क्विंटल। तुअर को न्यूनतम भाव रहो 4,500 रुपया प्रति क्विंटल, न तुअर का अधिकतम भाव रहा 7,150 रुपया प्रति क्विंटल। चना को न्यूनतम भाव रहो 5,200 रुपया प्रति क्विंटल, न चना का अधिकतम भाव रहा 5,993 रुपया प्रति क्विंटल। डालर चना को न्यूनतम भाव रहो 6,020 रुपया प्रति क्विंटल।

6,500 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव रहा 7,241 रुपया प्रति क्विंटल। ज्वार का न्यूनतम भाव रहा अधिकतम भाव रहा 2,128 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग को न्यूनतम भाव रहो 5,100 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव रहा 7,360 रुपया प्रति क्विंटल। सरसों को न्यूनतम भाव रहो 5,100 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव रहा 6,651 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का को न्यूनतम भाव रहो 1,870 रुपया प्रति क्विंटल, न मक्का का अधिकतम भाव रहा 1,975 रुपया प्रति क्विंटल। ये थी खंडवा अनाज मंडी से प्राप्त उपज न का भाव की जानकारी। न अब हाल मौसम को, आज सूर्योदय सुबह 5:42 पर हुयो, न सूर्यास्त शाम 7:02 पर हुयो। न आज का दिन को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहो, न रात को तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। न भाई बहनोनी, मौसम की जानकारी का बाद आनंद ली लेवांज एक अरु निमाड़ी लोकगीत को, जेख गायज कांता जोशी ना।

भाई बहनों ने अभी हमने आनंद लियो कांता जोशी को गायो इना भजन को। न भाई बहनों ने कार्यक्रम को समय भी अब पूरा होना मछे न हम आपसे विदा लेवा ओकासे पहले बते दे आज पूछा गया प्रश्न को उत्तर। न आज को हमारो प्रश्न थो कि मुर्गी नम पैर का पंजा को लकवो किना कारण से होज। तो एक उत्तर छे मुर्गी नम ये लकवो आयरन तत्व की कमी से होज। भाई बहनोणी इना प्रश्न का उत्तर का साथ ज हमारो आज को खेती गृहस्थी कार्यक्रम यहाँ पूरा होज। आज्ञा देव आपकी बहन निरुपमा मिश्रा का राम राम।

0: अभी खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। लीजिए अब सुनिए राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।
1: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

0: लीजिए सासू जी आ रही हैं। सास और बहू का टकराव किस घर में नहीं होता, लेकिन हमारा घर, हे भगवान, दोनों को समझाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई, अब तो ये बोतल ही है।
1: हे भगवान, तुमने ये कौन से जन्म की सजा दी है जो ये मुसीबत हमारे खानदान में आ गई।
0: अरे कौन सी मुसीबत?
1: हाय, अब मैं तुम्हें स्टैंप पेपर पर एफिडेविट में लिख के दूं कि कौन सी मुसीबत? अजी वही मुसीबत जिसे बड़े चाव से बहू बनाकर टोली में डालकर इस घर में लाए थे।
0: क्यों, अब क्या हुआ?
1: अजी वही जो रोज होता है, मैंने जरा सा डांट डपट दिया तो आगे से पूछती है, क्या हुआ माता जी, क्यों नाराज हो रही है, मैंने क्या किया है?
0: अगर तुम नाराज हो रही थी तो बताने में क्या अर्ज है?
1: अजी तुम्ही ने तो उसे सर पे चढ़ा रखा है। अजी हमारा भी जमाना था, तुम्हारी माँ मेरे बाल नोच कर मेरे हाथ में पकड़ा देती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी पूछने की कि सासू जी क्यों बाल नोचे आपने, याद है ना तुम्हें?
0: हाँ याद है। अरे तुम्हारे हाथों में बालों का गुच्छा होता था, और ये भी याद है कि मैंने एक दो बार वो बाल देखे तो पता चला कि वो बाल तुम्हारे नहीं, मेरी माता जी के थे।
1: अरे वो तो मेरी शादी के एक हफ्ते बाद ही मैं और तुम्हारी माता जी आपस में इतनी घुल मिल गई थी कि सासू जी के बाल मेरे हाथ में और मेरे बाल सासू जी के हाथ में।

0: पहचानना मुश्किल हो जाता था।
1: यानी कि तू ना रहे, मैं ना रहा।
2: अरे मां कितना भाग्यशाली हूँ जिसे तुम्हारी जैसी पत्नी मिल गई। लेकिन अब ये तो बताओ कि बहू ने जो पूछा था कि क्यों डांट रही हो, तो तुमने क्या जवाब दिया?
0: जी मैं पूछती हूँ, सास को क्या हर बार बताना पड़ेगा कि उसने बहू को क्यों डांटा? अरे ये तो सास का मूड है, मन किया तो डांट दिया, लेकिन बहू कौन होती है सास से पूछने वाली? है हाय हाय, 6 महीने हो गए इस बहू को हमारे घर आए हुए, इसने तो सवाल जवाब कर करके मेरा नाक में दम कर दिया। हे भगवान, अब तो तू मुझे उठा ले भगवान।
2: अरे इस बहू को ठीक करना है तो सास वाला वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपनाओ और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा।
0: कि क्या, यानी कि मैं बहू को जला दूं?
2: अरे धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। यही तो एक तरीका है जो इस देश की कई सासें अपना रही है और बहू से छुटकारा पा रही है।
0: हाय हरीश के डैडी, मैं सदके जाऊं तुम पर, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी।
2: अरे तो फिर सोच क्या रही है, नेक काम में देर किस बात की? अरे उठ, मट्टी के तेल की बोतल यानी कि सास का आजमाया हुआ हथियार उठाओ और बहू पर हल्ला बोल दो, पका।
0: नहीं नहीं नहीं, मुझे तो डर लग रहा है, हिम्मत नहीं पड़ रही, पुलिस केस बन जाएगा जी, पकड़ी जाऊंगी, फांसी हो जाएगी।
2: अरे इसका मतलब है हरीश की मम्मी तुम्हें उस नए केरोसिन के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता जो मार्केट में आया है। ये देखो
0: क्या है, बहुओं को जलाने के लिए स्पेशल केरोसिन ऑयल। क्या मतलब?
2: अरे यही वो केरोसिन है जो सास छुपकर पीछे से बहू पर उस वक्त छिड़क देती है जब बहू अपने ध्यान में कोई काम कर रही होती है। अच्छा। उस वक्त बहू को ये नहीं पता चलता कि उस पर किसी ने कुछ छिड़का है।
0: अच्छा। हाँ। तो फिर ये बताओ माचिस कब जलानी पड़ेगी?
2: माचिस जलाने की कोई जरूरत नहीं, यही तो खूबी है इस केरोसिन में, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक। केरोसिन छिड़कने के कुछ घंटे के बाद पहले बहू को चक्कर आएंगे और फिर 24 घंटे के बाद वो अपने आप जल जाएगी।
0: अपने आप जल जाएगी? अरे हरीश के डैडी, फिर तो मैं 1-2 घंटे पहले ही भागकर मंदिर चली जाऊंगी। मैं उधर मंदिर में आरती उतार रही होंगी और मेरी बहू घर में चल रही होगी।
2: अरे ठहरो तो सही, हरीश की मम्मी।
0: हां बोलो,
2: बात तो सुनती जाओ। हां हर एक को पता है कि तुम दोनों सास और बहू एक दूसरे से नफरत करती हो।
0: हां ये तो सभी को पता है।
2: जब बहू जलेगी तो पुलिस को सबसे पहले तुम पर ही शक हो जाएगा।
0: तो फिर?
2: अरे इसीलिए ये केरोसिन छिड़कने के बाद तुम बहू से प्यार करना शुरू कर दो। अच्छा। दिन में प्यार, दोपहर को प्यार, रात को प्यार, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि तुम बहू से नफरत नहीं उससे प्यार करती हो। जब बहू जलेगी किसी का तुम पर शक ही नहीं जाएगा।
0: क्या तरकीब है।
2: अरे लो अब बहू जी आ रही है।
3: हाय पिताजी।
2: क्यों बहू, अब क्या हुआ?
3: क्या नहीं हुआ, जो इस घर में हर रोज होता है आपको नहीं मालूम?
2: अरे बेटी रोती ही जाएगी या कुछ बताएगी भी?
3: आज फिर माताजी ने मुझे बिना बात के डांटना फटकारना शुरू कर दिया। और जब मैंने पूछा कि क्या बात है माताजी, क्यों नाराज हो रही हो, तो कहने लगी सत्यानाश हो तेरा, बहू होकर तुम्हारी ये मजाल मुझसे पूछती है क्या बात है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, आप भी तो कुछ नहीं करते।
2: अरे मैं क्या करूं बेटा, तुम तो उससे 6 महीने में ही परेशान हो गई हो। मेरी हालत देख, 25 साल से उसे झेल रहा हूं, ये ढोल ऐसा गले में पड़ा है कि उतरता ही नहीं, और मैं तो ठहरा एक बेबस और बदकिस्मत पति। लेकिन तुम एक बहू होकर सास को ठिकाने नहीं लगा सकती।
3: लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूं?
2: अरे बेटी तुम ही तो हो जो इस घर में कुछ कर सकती हो।
3: आपका मतलब?
2: अरे ठीक समझ रही हो, बिल्कुल ठीक समझ रही हो।
3: नहीं ये कैसे हो सकता है पिताजी, एक सास तो बहू को जला सकती है लेकिन बहू सास को कैसे जला सकती?
2: क्यों नहीं जला सकती, वक्त बदल रहा है, जमाना बदल रहा है।
3: पिताजी जैसे घोड़ी पर बैठकर दूल्हा आता है दुल्हन नहीं आती, जैसे दुल्हन डोली में बैठकर ससुराल जाती है दूल्हा नहीं, उसी तरह एक सास तो बहू को जला सकती है लेकिन बहू सास को नहीं जला सकती।
2: लेकिन ये रिवाज बदलना होगा।
3: नहीं पिताजी मैं नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है, मैं पकड़ी जाऊंगी, मुझे फांसी हो जाएगी।
2: अरे इसका मतलब है बहू तुम्हें उस केरोसिन के बारे में अभी तक नहीं पता चला जो मार्केट में आ गया। ये देखो
3: सास को चलाने के लिए स्पेशल केरोसिन ऑयल, क्या मतलब?
2: ये वो केरोसिन है जो बहू छुपकर पीछे से सास पर उस वक्त छिड़कती है जब सास अपने ध्यान में कोई काम कर रही होती है।
3: अच्छा?
2: उस वक्त सास को ये नहीं पता चलेगा कि किसी ने कुछ छिड़का है।
3: अच्छा। तो फिर माचिस कब जलानी पड़ेगी?
2: माचिस जलाने की कोई जरूरत नहीं, यही तो खूबी है इस केरोसिन में, सारा काम ऑटोमेटिक। पहले कुछ घंटे बाद सास के घुटने कांपने

0: लगेंगे। हाँ, उसके बाद जब केरोसिन छिड़के हुए 24 घंटे हो जाएंगे तो सांस अपने आप जल जाएगी।
1: अच्छा, ओह माय गॉड, फिर तो मैं अपनी फ्रेंड्स के घर किटी पार्टी रखा देती हूँ। मैं एक घंटा पहले ही भागकर फ्रेंड्स के घर चली जाऊंगी और जिस वक्त मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी अटेंड कर रही होंगी उस वक्त पूजनीय सासू जी घर में जल रही होंगी।
0: अरे ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो,
1: क्या हुआ पिताजी?
0: हर एक को पता है कि इस घर में सास और बहू एक दूसरे से नफरत करती हैं।
1: हाँ, ये तो सभी को पता है।
0: जिस वक्त तुम्हारी सास जलेगी पुलिस को सबसे पहले शक तुम पर जाएगा।
1: हाँ पिताजी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
0: इसलिए केरोसिन छिड़कने के बाद जब तक तुम्हारी सास जल नहीं जाती उससे प्यार करना शुरू कर दो।
1: प्यार?
0: हाँ, सवेरे प्यार, दोपहर को प्यार, शाम को प्यार।
1: प्यार और सास से? कभी नहीं। और फिर लोग क्या कहेंगे कि एक बहू होकर सास से प्यार करती है?
0: समझा भी करो बहू, असली प्यार नहीं, ऊपर ऊपर का प्यार, दिखावे का प्यार, अरे सिर्फ एक दिन का प्यार।
1: अच्छा।

0: अरे ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो,
1: क्या हुआ पिताजी?
2: हर एक को पता है कि इस घर में सास और बहू एक दूसरे से नफरत करती हैं।
1: हाँ, ये तो सभी को पता है।
2: जिस वक्त तुम्हारी सास जलेगी, पुलिस को सबसे पहले शक तुम पर जाएगा।
1: हाँ पिताजी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
2: इसलिए केरोसिन छिड़कने के बाद जब तक तुम्हारी सास जल नहीं जाती, उससे प्यार करना शुरू कर दो।
1: प्यार?
2: हाँ, सवेरे प्यार, दोपहर को प्यार, शाम को प्यार।
1: प्यार और सास से? कभी नहीं। और फिर लोग क्या कहेंगे कि एक बहू होकर सास से प्यार करती है?
2: समझा भी करो बहू, असली प्यार नहीं, ऊपर ऊपर का प्यार, दिखावे का प्यार, अरे सिर्फ एक दिन का प्यार।
1: अच्छा ठीक है पिताजी।
3: राधे श्याम राधे श्याम सीताराम।
1: तो यहाँ बैठी है सासू जी, जी चाहता है इसे मलाई में संख्या मिलाकर खिला दूँ।
3: राधे श्याम। बहू, ओ मेरी प्यारी बहू रानी, आई माता जी।
1: जी माता जी।
3: बहू कहाँ थी तू?
1: मैं यहीं तो थी माता जी।
3: बेटी, तुम्हें थोड़ी देर भी नहीं देखती हूँ तो दिल घबराने लगता है।
1: अब यही हाल मेरा भी है माता जी, जी चाहता है आप हर वक्त मेरे सामने ही खड़ी रहे और मैं आपको निहारती रहूं।
3: बहू, तू ठीक तो है ना?
1: जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माता जी।
4: वो अभी इसको केरोसिन का असर नहीं हुआ क्या? इसे अभी चक्कर नहीं आया
1: क्या? क्या कहा माता जी? चक्कर?
4: कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं, बैठ जा बैठ जा। चक्कर तो नहीं आ रहे ना?
1: चक्कर? मुझे चक्कर क्यों आएंगे?
4: आएंगे बेटी, आएंगे, जरूर आएंगे। मेरी बहू को चक्कर जरूर आएंगे, मेरी बहू को नहीं आएंगे तो और किसे आएंगे? 6 महीने हो गए शादी को।
1: 6 महीने शादी को हो गए? तो क्या हुआ माता जी? वो अच्छा चलिए छोड़िए माता जी, अब आप बताइए ना, आप तो ठीक है ना?
4: मैं? मुझे क्या हुआ?
1: आपके घुटने तो नहीं कांप रहे?
4: मेरे घुटने क्यों कांपेंगे?
1: कांपेंगे माता जी, जरूर कांपेंगे। अब वो आपकी उम्र हो गई है ना? लाइए माता जी, मैं आपके घुटने दबा दूं।
4: नहीं नहीं नहीं बहू, रहने दो रहने दो।
1: लाइए ना माता जी, लाइए।
3: अच्छा हां बहू रानी, तुमने आज पहली बार मेरे घुटने दबाए हैं, बहुत आराम मिल रहा है बहू।
1: मेरा बस चले तो घुटनों की बजाय इसकी गर्दन दबा दो।
4: क्या कहा बेटी?
1: कुछ नहीं माता जी, मैं टांगे दबा रही हूँ।
3: भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे,
4: मैं इसे जीने दूंगी तब ना।
1: माता जी आपने कुछ कहा?
3: नहीं नहीं बेटी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। बहू आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ।
1: कथा?
3: जब कोई प्राणी इस संसार से जाने लगता है तो उसके कानों में कथा की आवाज सुनाई देनी चाहिए।
1: ये आप क्या कह रही हैं माता जी? अरे इस बुढ़िया को कहीं पता तो नहीं चल गया किसकी घंटी बजने वाली है?
3: क्या कहा बहू तुमने? कुछ
1: मैं कह रही थी माता जी, चाहे आप बूढ़ी हो गई हैं फिर भी आप अच्छी बनी हैं, हट्टी कट्टी। आखिरी वक्त आए आपके दुश्मनों का।
3: तुमने बिल्कुल ठीक कहा बहू, आखिरी वक्त आए मेरे दुश्मनों का।
4: बहू
1: जी
4: एक बात बताओ
1: जी,
4: तुम तो फिल्में देखती हो ना?
1: जी हाँ।
4: अच्छा ये बताओ, हीरो और हीरोइन को कैसे पता चलता है कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो रहा है?
1: जब उनका दिल धक धक करने लगता है तो उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें प्यार हो गया है।
4: अच्छा?
1: वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती
4: हाथ है। पकड़ लेती है? हाय मेरा दिल भी तो धक धक कर रहा है।
1: माता जी मेरा भी।
4: बहू मुझे क्या हो रहा है, ये मुझे क्या हो रहा है? ठहरो जरा बहू, न जाने क्यों मुझे ये सोने का हार तुम्हें देने को मेरा मन उतावला हो रहा है।
1: माता जी
4: ये लो बहू, पहनो इसे। हाय कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू।
1: ये क्या किया आपने माता जी?
4: क्यों?
1: ये हार आपने मुझे दे दिया? इतना कीमती हार बहू को दे दिया?
4: मुझे खुद पता नहीं बेटी मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है, लगता है शायद
1: शायद क्या माता जी,
4: शायद शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ बहू।
1: ये क्या हो गया है आपको, एक सास होकर बहू से प्यार करने लगी है?
4: हाँ बहू, ना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे।
1: माता जी मुझे भी होता जा रहा है।
4: क्या हो रहा है बेटी?
1: लगता है शायद मैं भी आपसे प्यार करने लगी।
4: अच्छा आओ बेटी मेरे गले।

0: बताइए बताइए क्या बात हुई, क्या कौन बीमार है?
1: अम्मा ये मेरे घुटने कांप रहे हैं, मुझे क्या हो रहा है बेटी? आपके घुटने कांप रहे हैं यानी आपको केरोसिन का असर हो रहा है?
2: मैं जा रही हूँ बहू, मैं जा रही हूँ, आप बने नहीं सकते।
1: नहीं आपको कुछ नहीं होगा माता जी, माता जी मुझे भी चक्कर आ रहे हैं, मैं भी आपके पीछे पीछे आ रही हूँ।
2: नहीं बहू नहीं, डॉक्टर साहब मेरी बहू को बचाइए,
0: बचाता हूँ
2: मेरी सासू जी को बचाइए।
0: सासू जी को बताइए आपको क्या तकलीफ है?
2: मेरी बहू को बचाइए,
0: बहू को
2: मेरी सासू जी को बचाइए।
3: ये क्या हो रहा है, कितना किसको दलाया ये बताइए?
2: इंस्पेक्टर साहब मेरा बयान लीजिए, मैं जुर्म का इकबाल करना चाहती हूँ।
1: इंस्पेक्टर साहब माता जी का कोई दोष नहीं, सारा दोष मेरा है, मैंने इन्हें जलाने की कोशिश की है,
2: धोखा दिया, इसे जलाने की कोशिश की है।
4: इंस्पेक्टर साहब किसी ने किसी को नहीं जलाया, हाँ इन बोतलों में केरोसिन नहीं गुलाब जल है, गुलाब जल।
2: क्या?
4: सारे घर में प्यार की वर्षा हो रही है, सास और बहू के प्यार की वर्षा।
2: माता जी।

तो ये थी झलकी एक दिन का प्यार। इसके लेखक वी एम आनंद, निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे।

चित्रलोक कार्यक्रम में मैं प्रीति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं के गाए इस गाने के साथ। इसे हमने लिया है फिल्म राज 2 से। गीत संजय मासूम का है, संगीत जीत गांगुली का।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।

0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: आइए अब सुनते हैं MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म का गाना पलक मुछाल की आवाज में। गीत मनोज मुंतशिर ने लिखा है, संगीत अमाल मलिक का है।

ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में लाल सिंह चड्ढा फिल्म का गाना। गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, संगीत दिया है प्रीतम ने।

आइए अब सुनते हैं फिल्म ब्रेक के बाद का ये गाना, मोनिका डोगरा विशाल दादलानी की आवाज़ में, गीत प्रसून जोशी ने लिखा है, संगीत विशाल शेखर का।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित

0: आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
1: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
2: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय

0: कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की

संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट पीटीएम के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग हई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं स्वामी फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है किशोर कुमार ने। गीत खन्ना का है, संगीत राजेश रॉय।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में है। फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

दोस्तों, ये गाना फिल्म जलवा का है, जिसमें पंकज कपूर ने अल्बर्ट पिंटो की भूमिका निभाई थी। याद होगा आपको 1987 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, पंकज कपूर हैं आज के फनकार।

0: आइए पंकज कपूर की अभिनय यात्रा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: देखिए मैंने प्री इंजीनियरिंग किया है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने से पहले का मकाम होता है। हाँ उसमें मैंने कॉलेज को टॉप जरूर किया था लेकिन काफ़ी मेहनत और काफ़ी अरसे के बाद। और शौक लेकिन हमेशा से मुझे एक्टिंग का रहा था, तो मेरे पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरा साथ दिया और कहा कि तुम जो करना चाहते हो ज़िंदगी में करो। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में उन्होंने ही पता किया था, फिल्म इंस्टीट्यूट वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने सिलेक्ट कर लिया था। और इस तरह से मेरी तालीम वहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शुरू हुई और 3 साल की तालीम हासिल करने के बाद मैं एक प्रोफेशनल एक्टर बन गया और उसके बाद का मेरा सफ़र थिएटर और टेलीविज़न और सिनेमा का शुरू हुआ।

एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सन 1976 में पंकज कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद वो रंगमंच की गंभीर दुनिया में समा गए। दरअसल फिल्मों से पहले उनकी पहली प्राथमिकता रंगमंच। 1982 में रिचर्ड एटनबरो

की फिल्म गांधी में काम करने का मौका उन्हें मिला। भूमिका छोटी थी, लेकिन इस फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए गांधी की यानी बेन किंग्सले की आवाज बने थे पंकज कपूर।

राष्ट्र नाट्य विद्यालय की एक रेपर्टरी कंपनी है, वहाँ पे बतौर अभिनेता एम्प्लॉयड था। जिस वक्त गांधी फिल्म के बनने का सिलसिला हिंदुस्तान में शुरू हुआ, तो रिचर्ड एटनबरा जो उसके डायरेक्टर थे, वो हमारे रेपर्टरी कंपनी के नाटक देखने के लिए आए, और उन्होंने नाटक देखने के बाद एक रोल के लिए मुझे चुना अपनी फिल्म में। रोल तो बहुत छोटा सा था, गांधी जी के दूसरे सेक्रेटरी प्यारेलाल। फिल्म में प्रेजेंस थी ज़्यादा, परफॉर्मेंस को बहुत खास नहीं था, लेकिन उस फिल्म के जरिए जो मौका मुझे मिला, वो मौका था गांधी के रोल की डबिंग करने का। हिंदी में जो गांधी की डबिंग की गई है बेन किंग्सले के रोल की, वो मैंने की थी उस वक्त। तो वो बड़ा चैलेंजिंग काम था, क्योंकि अंग्रेजी जबान से हिंदी जबान में आप डब करेंगे उसको, और सिंक भी परफेक्ट होना चाहिए। और 22-1 साल की उम्र से लेकर करीबन 78-77 साल की उम्र तक के गांधी जी को आवाज़ के ज़रिए दर्शाना सिनेमा में, वो एक चैलेंजिंग काम ज़रूर था जो मुझे मिला। तो ये मेरा पहला मौका था, या पहला चांस था फिल्मों के अंदर दाखिल होने का। हालांकि इस काम को करने की वजह से मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया।

पंकज कपूर ने तमाम नाटकों में विभिन्न भूमिकाएं अदा की। फिल्म मकबूल में काम करने के लिए पंकज को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला था। 2003 में रिलीज फिल्म मकबूल में पंकज कपूर ने जहांगीर खान अब्बाजी का मकबूल किरदार अदा किया था। फिल्म थी विशाल भारद्वाज की, याद होगा आपको।

0: छोटे पर्दे के लिए भी कुछ यादगार भूमिकाएं पंकज ने निभाई हैं। 1985 से टीवी पर करमचंद की शीर्षक भूमिका में वो बेहद लोकप्रिय हुए थे। उनका मैनरिज्म इस कदर प्रसिद्ध हुआ था कि बच्चे बच्चे की जुबान पर करमचंद का नाम था और उनके कैरेक्टर की नकल वो खेल कूद में भी किया करते थे।
1: अभिनय में ये बात बड़ी जरूरी है कि आप कितना भी डूब गए हों अपने किरदार में, एक धागा या एक थ्रेड जिसको कहते हैं, ऐसा हमेशा रहना चाहिए जिसमें आपको इस बात का एहसास रहे कि आप वो किरदार नहीं हैं। आप हैं तो पंकज कपूर ही, लेकिन आप उस किरदार को निभा रहे हैं। निभाते हुए जब आप उसको निभा रहे हैं, उस वक्त लोगों को ये ना लगे कि आप पंकज कपूर हैं, तो वो एक हल्का सा

धागा जो है आपके और आपके कैरेक्टर के दरमियान बना रहता है, और वो बनाए रखना ज़रूरी है। अगर ना रहे तो या तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, या फिर आप इतने उसमें डूब जाएंगे कि उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और वो भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि कर तो आप अभिनय ही रहे हैं ना।

0: जो गाने हम आपको पंकज कपूर अभिनीत फिल्मों से सुनवा रहे हैं, वो गाने उन पर फिल्माए तो नहीं गए हैं, लेकिन इनके जरिए हम पंकज कपूर के बेहतरीन अभिनय की याद तो ताजा कर ही सकते हैं। सुधांशु सुधीर मिश्रा के धारावाहिक कब तक पुकारू में पंकज कपूर ने मुख्य भूमिका अदा की थी। ये धारावाहिक रांगे राघव के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था। सुखराम की जटिल भूमिका को पंकज कपूर ने बड़ी और बड़ी सरलता से निभाया था। इसी तरह डॉक्टर राही मासूम रजा की कृति नीम का पेड़ पर आधारित टीवी सीरियल में बेहद चुनौतीपूर्ण भूमिका अदा की थी पंकज कपूर ने। इन दोनों किरदारों को पंकज बेहद चैलेंजिंग मानते हैं।
1: बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक तो अवधि मुझे बोलनी नहीं आती है और अवधि में वो काम करना था, और दूसरा एक ऐसे आदमी का किरदार था जो बेगार है, और ये आज भी जिसको बॉन्डेड लेबर कहेंगे हम आज के ज़माने में, आज भी लोग हैं, लेकिन वो कहानी चूँकि 40s की थी तो उस ज़माने के दौर के अंदर उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी समझ, उसका अपना बिहेवियर, उसकी अपनी एम्बिशंस और ये सब चीज़ें दर्शाने में बड़ा ही एक अलग किस्म का लुत्फ महसूस हुआ। और एक और टेलीफिल्म मैंने की थी जो भी बहुत कम लोगों ने देखी है, उसको केतन मेहता साहब ने डायरेक्ट किया था, किसी एक फूल का नाम लो। उसमें पाठक नाम का एक राइटर है, वो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टराइजेशन है और एक इंटरेस्टिंग स्टडी है किसी एक इंसान की। तो ये कुछ रोल हैं जिनको करने में बड़े मजा आए।
0: 1991 में तपन सिन्हा की फिल्म एक डॉक्टर की मौत में भी कमाल किया था पंकज कपूर ने। भूमिका थी डॉक्टर दीपांकर रॉय की।
1: तपन सिन्हा साहब जो डायरेक्टर थे डॉक्टर की मौत के, उन्होंने राख फिल्म ही देखी थी और उसी को देखने के बाद उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए रोल ऑफर किया। अब तपन सिन्हा साहब तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े जाने माने, बहुत सी फिल्में, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बंगाल में, बंगाली में बना चुके हैं, और लेकिन मेरा इसरार हमेशा से जैसे कि स्क्रिप्ट पे रहता है, तो स्क्रिप्ट मुझे उन्होंने मुहैया करवाया, मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे रोल बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे कहा कि मैं करना चाहूँगा, तो ऐसे उस फिल्म में दाखिला हुआ मेरा। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि शबाना इसमें दूसरा रोल कर रही हैं, फीमेल कैरेक्टर कर रही हैं, और करीबन 40-45 दिन की शूटिंग थी हमारी बंगाल में, ज़्यादातर काम कलकत्ते में था और कुछ चांदीपुर में कुछ दिनों का आउटडोर था। तो शबाना बहुत प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं और उनके साथ बड़ी ही अच्छी

0: प्रोफेशनल रिलेशनशिप हमारी रही, और तपंदा बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ऐसे निर्देशक हैं जो अपने अभिनेता को बहुत सी छूट देते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं उसके लिए जिसमें वो अच्छा अभिनय कर सके। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें भी इस फिल्म के अंदर थी जिसको लेकर के कुछ डॉक्टर्स थे वहाँ कलकत्ते के लोकल, जिन्होंने हमारी बड़ी मदद की और हमें उसके बारे में पूरा नॉलेज वगैरह दिया गया जो कि इस किरदार को निभाने के लिए हासिल करना बहुत ज़रूरी था।
1: थिएटर के दौरान पंकज ने नाटक एक रुका हुआ फैसला में बेहतरीन काम किया था। आगे चलकर इसी नाटक पर आधारित एक फिल्म भी बनी थी।
0: उससे पहले हमने एक नाटक किया था एक रुका हुआ फैसला नाम से, तो उसके जो डायरेक्टर थे वो मेरे मित्र भी थे जिनके साथ मैंने सबसे ज्यादा काम थिएटर में किया है, रंजीत कपूर साहब, वही इस फिल्म को लिख रहे थे। तो जब कास्टिंग की बात आई तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया और दरअसल मैं फिल्म में ओरिजिनली जो रोल ओमपुरी साहब ने किया है आहूजा का वो करने वाला था, लेकिन बाद में तनेजा का रोल जो कर रहे थे उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया या तो इन लोगों ने बतौर दोस्त मुझसे कहा कि भाई इसकी बजाय अगर तुम ये रोल ले लो तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि मुझे तो अभिनय करना था। तो इस तरह से ये फिल्म मेरे हाथ लगी। उस फिल्म का एक किस्सा ज़रूर मैं आप बताना चाहूँगा। उसमें एक सीन है जिसमें बिल्डर और कमिश्नर और ये सब लोग एक खुली लिफ्ट में ऊपर बिल्डिंग में जा रहे हैं और उस वो बड़ी खतरनाक किस्म की लिफ्ट थी क्योंकि एक सिर्फ एक तार से टंगी हुई थी। तो शूटिंग खत्म हो जाने के बाद अगली शूटिंग हमारी कुछ 20वें माले पे थी, तो वहीं जो बिल्डर साहब के बेटे थे उन्होंने कहा कि इसी लिफ्ट में लद के ऊपर चले चलते हैं और ये लिफ्ट ऊपर लैंड कर जाएगी लैंडिंग पे, वहां से आप उतर के फिर नीचे उतर के चले जाइएगा। तो करीबन 20 लोग उस लिफ्ट के अंदर चढ़ गए मेरे मना करने के बावजूद, लेकिन उसने कहा कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना वेट तो चली जाता है। और फिर जब लिफ्ट 5वें 6वें माले तक ऊपर गई तो जाके वहाँ हवा में अटक गई और हम सब लोग 20 के 20 लोग हवा में लटक रहे थे और ये बिल्डर साहब का बेटा भी हमारे साथ था। और जब वो लिफ्ट वाले से कहता था कि भाई इसको ऊपर लो तो लिफ्ट वाला बाएं देखने लगता था, जब उससे कहता था नीचे लो तो दाएं देखने लगता था। फिर कुछ देर वहाँ लटकने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इसको किसी तरह से बिल्डिंग के पास ले लो, तो जब बिल्डिंग के पास लिया गया तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि भाई कोई भगदड़ ना मचाए और एक एक करके आराम आराम से उतरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सबने भगदड़ मचाई। और ये ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या कोई मरा नहीं, क्योंकि बिल्डिंग और उस लिफ्ट के दरमियान करीबन 1 फुट का फासला था। जब हम उतर के ऊपर लिफ्ट वाले के पास पहुंचे और पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि तार कट रहा था, आधे से ज्यादा तार कट चुका था, अगर वो ऊपर की तरफ खींचता तो भी टूट जाती लिफ्ट, अगर वो नीचे की तरफ फेंक जाने देता हमें तब भी लिफ्ट टूट जाती और हम सब लोग मर जाते। तो ये एक हादसा उस फिल्म का जरूर मुझे याद है जो जिंदगी भर याद रहे।
1: 1989 में फिल्म राख में काम करने के लिए भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था पंकज कपूर को। याद होगा इस फिल्म में पंकज के साथ आमिर खान ने भी काम किया था। उनके कुछ चर्चित धारावाहिक हैं ऑफिस ऑफिस, जबान संभाल के, दुनिया वगैरह वगैरह। इससे पहले उन्होंने फटीचर, मोहनदास BALLB, वाह भाई वाह, साहब जी, बीवी जी और गुलाम जी में अभिनय किया था और काफी कामयाबी हासिल की थी। गुलजार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के टीवी रूपांतरण में होरी की एक यादगार भूमिका भी पंकज कपूर ने टीवी पर अदा की थी, आपने जरूर देखा होगा।

सन 2005 में रिलीज हुई थी फिल्म 10, आपने जरूर देखी होगी और आपको याद होगा शानदार किरदार पंकज कपूर का फिल्म 10 में। दोस्तों सन 2007 में पंकज कपूर की 3 फिल्में आपने जरूर देखी होंगी, धर्म, डब्लू अम्ब्रेला और हल्ला बोल में भी पंकज नजर आए थे। एक फिल्म बनी थी सन 2011 में जो ऑफिस ऑफिस सीरियल का ही एक प्रतिरूप थी और इसका नाम था चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस। ये तो आप जानते हैं कि जाने माने स्टार शाहिद कपूर के पिता हैं अभिनेता पंकज कपूर, जो निर्देशन में भी अपना कदम जमा चुके हैं। शाहिद को उन्होंने निर्देशित किया फिल्म मौसम।

दोस्तों, फिल्मकार विशाल भारद्वाज की मशहूर फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला में भी आपने पंकज कपूर के अभिनय का जलवा जरूर देखा होगा।

0: तो ये था प्रोग्राम आज के फनकार, केंद्रित था जाने माने एक्टर पंकज कपूर पर। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से सफर छाया गीत का कुछ ही पलों के इंतजार के बाद

छाया गीत के सफर में आज बातें अफसानों की। ये वो मोहब्बत के अफसाने हैं जिनमें कभी सुकून मिलता है तो कभी मिलती है तड़प, कभी मिलन है तो कभी जुदाई। कभी ये अफसाने खुशी के गीत बनकर झूमने लगते हैं तो कभी देते हैं दर्द की पुकार। पर जो भी है, हर दिल का एक अफसाना होता है, या यूं कहें कि हर दिल एक अफसाना लिखता है अपनी मोहब्बत का, अपनी चाहत का, जिसे कभी दिल खुद तो कभी पूरी की पूरी दुनिया गुनगुनाती है।

हम चल रहे थे राह जिंदगी पर अकेले और खामोश। तुम क्या मिले राह बनकर कि जिंदगी को एक नया अफसाना मिल गया। इस अफसाने में है दीवानगी, इसमें है दरिया की रवानगी। कोरे कागज जैसी जिंदगी पर जो अफसाना तूने लिख डाला, अब उसे ही तो ताउम्र पढ़ते जाना है हमें।

हमारे सामने आते ही शब्द खो से जाते हैं, जुबा रुक सी जाते हैं कहीं। जब तुम्हें बसे हो इन निगाहों में, तो क्यों ना इन नजरों से ही

मोहब्बत का अफसाना लिखा जाए। चाहत की ये दास्तां आखिर क्यों सुने कोई और, ये राज़े मोहब्बत तो बस दो दिलों के दरमियां ही महफूज रहे।

सामने आते ही शब्द खो सी जाते हैं, जुबा रुक सी जाते हैं कहीं। जब तुम ही बसे हो इन निगाहों में, तो क्यों ना इन नजरों से ही मोहब्बत का अफसाना लिखा जाए। चाहत की ये दास्तां आखिर क्यों सुने कोई और, ये राज़े मोहब्बत तो बस दो दिलों के दरमियां ही महफूज रहे।

जिंदगी की राहों पर साथ चलते हुए बढ़ता जाता है मोहब्बत का अफसाना। इस अफसाने में कभी मौसम और कभी महकती रातों की बातें, तो कभी बिखरी जुल्फों और काली घटाओं की बातें होती है। यही अफसाना कभी गलियों का दिल बनकर धड़कता है, तो कभी क्षमा पर परवाने की प्रीत झूमने लगती है, गाने लगती है।

मोहब्बत के अफसाने में बस प्यार की ही बातें हो, ऐसा तो नहीं होता। इन अफसानों में तो झगड़े भी होते ही रहते हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि हर बार नायिका ही रूठे और नायक उसे मनाए। कई अफसाने तो ऐसे भी बने हैं जिसमें नायिका ही अपने नायक को मनाने में लगी है। पर जो भी हो, हर अफसाने के अंजाम में सारी शिकायतें दूर हो ही जाती है, और तब दिल गा उठता है कोई प्यार भरा गीत।

ये अफसाना आज का नहीं है दोस्तों, ये अफसाना बहुत पुराना है। इस अफसाने में है बचपन की शरारतें, इसमें है बचपन की दोस्ती जिस पर आगे चलकर मोहब्बत का रंग चढ़ा। बिना बात के वो रोटना, वो मनाना, वो साथ साथ कविताएं पढ़ना, सावन के वो झूले, गर्मी की वो रातें, और हम अपनी छत से करते थे एक दूसरे को इशारे। इन हसीन यादों से ही तो बनता है हमारा ये छोटा सा प्यार भरा अफसाना।

ये दिल लिखता तो चला जा है जिंदगी के अफसाने, पर ये काम इतना आसान कहाँ। अफसाने के किरदार ही इसे रातों को जगाते हैं। इन तमाम अफसानों में एक है मोहब्बत का अफसाना, जिसके होते हुए जमाने का कोई भी अफसाना भला कौन पढ़ना चाहेगा। और इन किरदारों में है एक ऐसा चेहरा जो हम सफर है इस अफसाने का। जब साथ हो इसका तो भला दुनिया से क्यों डरा जाए। जिंदगी की टेढ़ी मेढ़ी राहों से गुजर कर अपनी मंजिल पा ही लेता है मोहब्बत का ये प्यारा सा अफसाना, जो धड़कता है हर दिल में।

अफसानों की ये बातें आप सुन रहे थे छाया गीत के सफर में, अपनी हम सफर ज्योति के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
4: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
3: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
5: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
3: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
5: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
3: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD News को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से

आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि एआई की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।